मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026। इस समय 5:58 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक

0: प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाड़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए विचार मंथन। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और लीजिए अब सुनिए एक देशगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख श्री सी वी श्रीवास्तव का है और वाचक हैं मनीष तिर्की।
1: भारतीय सभ्यता विश्व की अति प्राचीन और उत्कृष्ट सभ्यता के रूप में जानी जाती है। आज से 5000 वर्षों से भी अधिक समय पहले मानव जीवन की बहुमुखी विवेचना करते हुए उसने मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ

0: निर्धारित किए थे। पुरुषार्थ का आशय है मानव जीवन को सुखी व्यवस्थित बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय। ये चार हैं धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। सभी का संबंध व्यक्ति से तथा उसके सामाजिक सरोकारों से है। समाज में रहते हर व्यक्ति का सरोकार जन्म से मृत्यु और कभी तो उसके बाद भी समाज से बना रहता है। इसलिए उसे अपने मन की शांति और सामाजिक उन्नति के लिए समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए समझाया गया है। धर्म के द्वारा क्या कर्तव्य है इसकी व्याख्या है। अर्थ जीवन यापन के लिए नितांत आवश्यक तत्व है। काम अर्थात मन की इच्छाएं समय समय पर वे कैसे पूरी की जाएं, और मोक्ष अर्थात सारे जीवन दर्शन को समझकर अर्जित वस्तुएं और धन से मोह का त्याग कर आध्यात्मिक चिंतन कर जीवन में शांति और आनंद लाभ के लिए क्या किया जाना उचित है इसकी शिक्षा। वास्तव में यदि वैज्ञानिक रूप में देखें तो इनमें भारतीय जीवन दर्शन से संबंध और पारस्परिक निर्भरता की दृष्टि भी स्पष्ट दिखाई देती है। बचपन से धर्म का बोध होने से व्यक्ति का आचरण नियमित और नैतिक राह पर चलते हुए यौवन अवस्था में अर्थोपार्जन और उसके उपयोग से जीवन को सुखी बनाने का निरूपण है। अर्थोपार्जन की विधि नैतिक हो या अपने सिवा अन्य के सुख दुखों का ध्यान भी रखा जाए, इसके लिए दयालुता का भाव, सेवा भाव, दान किए जाने का विधान और अहिंसा का बर्ताव आवश्यक है, जिससे स्वतः की आवश्यकताओं की पूर्ति कर मनोकामनाओं को पूरा कर स्वतः व परिवार का उदारता पूर्वक पालन हो सके। सामाजिक और धार्मिक आयोजनों का विधान भी किया जा सके, जिससे समस्त समाज और देश का हित हो सके, किसी से कोई टकराव ना हो और जीवन आनंद पूर्वक जिया जा सके, यह समझाया गया है। इसके उपरांत अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष बताया है। इसका सामान्य आशय तो मृत्यु के उपरांत ईश्वर प्राप्ति बताया गया है। मोक्ष का आशय जीवन में उपार्जित संबंधों और वस्तुओं के प्रति जो लगाव या मोह हो गया है, वार्धक्य में उस मोह का विसर्जन कर मन को ईश्वर प्राप्ति के लिए चिंतन, स्मरण, भजन, पूजन की आवश्यकता से भी है, जो जीवन की सफलता, सरसता और सरलता के लिए अनिवार्य है। परंतु आज की नई सभ्यता मात्र धन अर्जन की ओर उन्मुख हो गई है, अतः उसे ना धर्म की बातें अच्छी लगती हैं, ना ईश्वर भक्ति के चिंतन और आध्यात्म की। इसी का परिणाम है कि आज समाज में अनुशासनहीनता, दुराचार, स्वार्थपूर्ण व्यवहार की घटनाओं की भरमार है। हर क्षेत्र में विकृतियां ज्यादा दिखाई देती हैं और भौतिक प्रगति के उपरांत भी लोग सुख से कोसों दूर हैं। हमारे गलत व्यवहार नित नए दुखों को बढ़ा रहे हैं। आपसी प्रेम घटता जाता है। उपलब्ध सुविधाएं दुख का कारण है। अर्जित और संग्रहित धन सुखदायी कम, दुखदायी ज्यादा हो गया है, जो परिवार में आपसी बंटवारे की कलह का कारण हो गया है। मनुष्य के मन में संतोष का स्रोत सूख गया है। पुरुषार्थों की सही व्याख्या और आशय न समझने के कारण आज पूरा समाज अनैतिक आचरण की राह पर दिखाई देता है। धार्मिक विचारों और परिपाटी को सही अर्थों में समझा जाना और उनका आडंबर रहित पालन आज के युग की बड़ी जरूरत है। ऊपरी दिखावों को छोड़कर सही अर्थ में चारों पुरुषार्थों के द्वारा उपलब्धियां प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब प्रत्येक व्यक्ति सदाचारी होगा तभी समाज या देश सुखी हो सकेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख श्री बी श्रीवास्तव का था और वाचक थे मनीष तिर्की। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता के गंगा तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचने का समाचार सुनकर निषाद राजगुहू के हर्ष की सीमा न रही। अपने प्रियजनों तथा भाई बंधुओं को एकत्रित कर भेंट देने के लिए

फल मूल आदि बहंगियों में भर भर कर वो सदल बल श्री राम से मिलने चला। राम ने उसे आत्मीय की भांति पास बिठाकर उसकी कुशल क्षेम पूछी। निषाद राज गदगद होकर बोला, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। यहां की धरती, धन संपत्ति और घर सभी आपके हैं। मैं तो परिवार के साथ आपका सेवक मात्र हूं। अब कृपा कर हमारे पूर्वे में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। श्री राम ने उत्तर दिया, हे सुजान सखा, तुमने जो कहा वो तुम्हारे स्नेह का द्योतक है, किंतु पिता ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। मुझे 14 वर्षों तक मुनिवेश और व्रत धारण करके उन्हीं सरीखा भोजन करते हुए वन में ही निवास करना है। एक तापस का गांव में रहना उचित नहीं है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता का तापस वेश देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम विह्वल हो रहे हैं। वो उन माता पिता की कठोरता से क्षुब्ध हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमारों को वनवास दिया है।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस गान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कृषि सामिकी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है गर्मी के दुष्प्रभाव से गौ पशुओं को बचाएं।
1: जो भी किसान बहन भाई पशुपालन कर रहे हैं, मुख्य रूप से तीन कारणों से तनाव के कारण होते हैं। तापमान बढ़ रहा है इसके कारण, नमी और हवा में गति अधिक होती इसके कारण। इन सभी कारणों में पर्यावरण दबाव का प्रमुख कारण तापमान है। दुधारू गाय की आरामदायक तापमान की सीमा 5 से 20 सेंटीग्रेड है, जो कि गाय की नस्ल, वातावरण में ढलान, उत्पादन, आहार ग्रहण करने की क्षमता, इस पर निर्भर करती है। तापमान जैसे जैसे बढ़ता है, पशु की पानी की आवश्यकताएं 120 से 200 प्रतिशत तक बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा गर्मी जब बढ़ जाती है तो पशु अधिक पानी पीकर अपने शारीरिक तापमान को श्वास और पसीने के द्वारा कम करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः एक बार बता दें आपको कि गाय 3 लीटर पानी प्रति किलोग्राम शुष्क आहार ग्रहण करती है, जबकि वातावरण का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने लगता है। परंतु जब वातावरण का तापमान अधिक होता है तो पशु 7 लीटर पानी प्रति किलोग्राम शुष्क आहार तक पी लेता है। इसलिए पशुओं को स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में जल 24 घंटे उपलब्ध कराना चाहिए। गर्मियों में गौ पशुओं पर दबाव पड़ता है, इनकी गतिशीलता और पचे हुए आहार की आंत में गति कम हो जाती है, तो गर्मी के कारण आहार के शुष्क तत्वों की पाचनशीलता भी कम हो जाती है। इसलिए अत्यधिक वातावरण के तापमान के कारण पशुओं की भूख कम होने के साथ साथ चारे की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। एक बात और कि गर्मी के कारण तनाव से थायराइड ग्रंथि की गतिशीलता कम हो जाती है, जिससे आंतों की गतिशीलता और पचे हुए आहार की आंतरिक अंगों में खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे पोषकों का अवशोषण आंतों में घट जाता है। और इसी कारण ये देखा गया है कि खासकर जिन किसान बहन भाइयों ने होल्स्टीन नस्ल की गायों को रखा हुआ है, जब तापमान 25 से 26 सेंटीग्रेड तक होता है तो कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ता, परंतु जैसे ही तापमान 25 डिग्री से बढ़ता है उन पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। यदि तापमान 29 डिग्री हो जाए और नमी 40% हो जाए तो उत्पादन तो ठीक रहता है, परंतु जैसे ही नमी और बढ़ जाती है तो उत्पादन सीधा सीधा 20 से 40% कम हो जाता है। मुख्य रूप से पशु के रखरखाव और प्रबंधन और पोषण व्यवस्था में कई प्रकार से आपको ध्यान देना होगा। भौतिक साधनों का उपयोग करके वातावरण और तापक्रम के कुप्रभाव को कम करें, जैसे कूलर का उपयोग, स्प्रिंकलर का उपयोग और इस तरह से गीले बोरों का या पर्दों का उपयोग करके आप तापमान को नियंत्रित रख सकते हैं। ऐसी नस्ल तैयार करें जो कि गर्मी सहन कर सके, क्योंकि हमारे क्षेत्र में गर्मी बहुत पड़ती है। पौष्टिक हरा चारा युक्त संतुलित आहार प्रदान करें तो सबसे अच्छा होगा। इससे जहां एक और आहार की गुणवत्ता बढ़ेगी, वहीं पशु भी इसे चाव से खाएगा और यह उनको पोषक तत्व प्रदान करेगा। प्रचलित पोषण व्यवस्था के अनुसार सुधार करके गर्मियों में पशुओं को आप सही रख सकते हैं, जैसे कि पशु के आहार में अधिक से अधिक रेशे युक्त चारा जैसे गेहूं या अन्य भूसा, इसकी मात्रा को कम करके सांद्र पदार्थ, दाना, बाटे, अनाज की मात्रा को बढ़ा दें, परंतु दाने की मात्रा इतनी भी ना बढ़ाएं कि पाचन प्रक्रिया प्रभावित हो। दुधारू जो गायें होती हैं उनको अच्छी गुणवत्ता वाला हरा चारा खिलाएं, यह पशु के शरीर के तापक्रम को कम करता है और आवश्यक मात्रा में रेशा भी देता है। पशु के आहार में सोयाबीन का छिलका, खमीरीकृत पदार्थ, शराब फैक्ट्री से प्राप्त अनाज का सह उत्पाद चुकंदर पल्प की पैलेट्स का उपयोग भी आप कर सकते हैं। पशु आहार में वसा की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। साधारणतः दुधारू पशुओं के आहार में 4% वसा दी जाने की अनुशंसा की जाती है। गर्मी के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए वसा का स्तर 6 से 7% तक बढ़ा दें। यह पशु के आहार में कुछ मात्रा में तेल युक्त दाने जैसे कि सोयाबीन, बिनोले, इन सबको मिलाकर कर सकते हैं। पशु के आहार में प्रोटीन की मात्रा और गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रदाय करना चाहिए, क्योंकि तापमान के दबाव से भूख की कमी से पशु शरीर में प्रोटीन का स्तर घट जाता है। प्रोटीन मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की खलियों से प्राप्त होता है।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामिकी कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। स्पॉटलाइट कार्यक्रम सुनिए रात्रि 9:15 पर और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम और संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग।

सवेरे 7:20 पर सुनिए गुड मॉर्निंग जबलपुर। लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधारा आप सुनेंगे सवेरे 9 बजे और शाम को 6:30 पर सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। सवेरे 9:30 पर आप सुनेंगे नाटक, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

सवेरे 10:05 पर आप सुनेंगे वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं। 10:10 पर सुनिए विश्व दर्पण कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सवेरे 10:20 पर सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा।

शाम 6:45 पर सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। शाम 7:21 पर किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत। इसमें आप आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर चर्चा सुनेंगे। इसके साथ ही आप श्री दीनदयाल तिवारी का बुंदेली काव्य पाठ सुनेंगे। शाम 6:00 सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए शाम 5:33 पर और रात्रि 8:15 पर।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे धारावाहिक हंसना मना है। आलेख हेमंत कुलकर्णी का है, परिकल्पना विमलकांत येंडे और प्रस्तुत करता है डॉक्टर वैद्यनाथ गौतम।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आप सुभाष दीक्षित का वॉयलिन पर बजाया राग केदार सुनेंगे और तबले पर संगत है इफ्तिकार हुसैन खान की। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिकविनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीनसभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च 2000 सप्तविंशतितमं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिककूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतरसम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिकसम्बन्धैः अपि तु जनानां समाजानाञ्च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्रमोदिने इटली देशस्य रोम् नगरे खाद्यकृषिसङ्घटनेन प्रतिष्ठितम् एग्रिकोलापदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटिकोटिकृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषिवैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्यकृषिसङ्घटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमन्त्री अमितशाहः, वित्तमन्त्री निर्मलासीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः प्रधानमन्त्रिणः कृते एग्रिकोलापदकं प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विकनेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति, तथा च देशस्य कृषिप्रतिरूपं समग्रविश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबङ्गालराज्ये दक्षिणचतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना 7 आरभ्यते, यद्धि सायं 6 समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य प्ररीक्षां कुर्वन्ति, येषु 2 निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन रक्तवर्णीयसञ्चेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामिदिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ, दिल्ली, पञ्जाब, बिहार, छत्तीसगढ, तटीय आन्ध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलङ्गाना, उत्तराखण्डे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। IPL इति 20-20 क्रिकेट् लीग् प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नैट् रैडर्स् दलेन मुम्बै इण्डियन्स् दलं 4 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 गुजरात् टैटन्स् दलम् अहमदाबाद् नगरे चेन्नै सुपर् किङ्ग्स् दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
0: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2,200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1,600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के 1 साल से भी कम समय बाद हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Modi said that Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. The Prime Minister said, India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production. India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a meeting with representatives of major social media platforms including Meta, Google and Telegram yesterday, raising serious concerns over the growing spread of misinformation related to competitive exams, particularly through Telegram channels and anonymous online groups. The meeting was crucial ahead of the re-examination of NEET UG 2026 on 21st of June. West Bengal government has begun handing over land to Border Security Force or BSF for barbed wire fencing along the Indo-Bangladesh border. At Nobana yesterday, Chief Minister Shubhendu Adhikari formally initiated the process in the presence of BSF officials. The Chief Minister accused the previous government of obstructing border security through non-cooperation. He stressed that fencing the border is vital for national and state safety, citing issues such as infiltration, smuggling, counterfeit currency, forced religious conversions and crimes linked to illegal Bangladeshi entrance. President of Cyprus Nikos Christodoulidis, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai last evening on a four-day official visit to India. President Christodoulidis was received by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma and Chief Minister Devendra Fadnavis at the Mumbai airport. He was also accorded a ceremonial welcome. In a social media post, spokesperson of the Ministry of External Affairs Ranthir Jaiswal said, President Christodoulidis' visit highlights the growing momentum of India-Cyprus partnership and both the nations share time-tested and close relations rooted in shared values and strong people-to-people ties. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that he is looking forward to celebrating America's 250th birthday with partners in India. In a video message shared ahead of his visit, Mr. Rubio said that India is the world's largest democracy and U.S. is the world's oldest. So the U.S. looks forward to celebrating it together. U.S. Embassy in India also shared the video. The U.S. will commemorate and celebrate the 250th anniversary of the signing of the Declaration of Independence on 4th of July. Mr. Rubio will be on a four-day visit to India from the 23rd of this month. This will be his first visit to India. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Mumbai Indians by 4 wickets at their home ground Eden Gardens last night to keep playoff hopes alive. Chasing a target of 148 runs in a rain-affected match, Kolkata Knight Riders overhauled the target with 4 wickets in hand and 7 balls to go. Manish Pandey scored highest, that is 45 runs, while Rovman Powell contributed 40 runs in the chase. In today's fixture, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत और इटली के बीच कृषि, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने कई समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने नई तबादला नीति को दी मंजूरी, 1 जून से होंगे तबादले। और प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी अब 28 मई तक होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों के आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरा पूरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया, जिससे कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नए अवसर खुलेंगे। भारत और इटली ने टैक्स से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025 से 2029 दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्य उन्मुखी रोडमैप देखी। श्री मोदी ने यह भी बताया कि भारत इटली रक्षा औद्योगिक रोडमैप ने रक्षा क्षेत्र में मिलकर विकास करने और मिलकर उत्पादन करने के नए रास्ते खोल दिए हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी समझौते, भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देशों के रिश्ते केवल राजनीतिक और अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि लोगों और समाजों की आपसी जुड़ाव से भी मजबूत होते हैं। सुश्री मेलोनी कल रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और इटली मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के रोम में स्थित खाद्य और कृषि संगठन FAO के मुख्यालय में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने पुरस्कार ग्रहण करते हुए इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। श्री मोदी को ये मेडल FAO के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरस्कार खाद्य सुरक्षा, सतत विकास और मानव कल्याण के प्रति भारत की अट्यूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स देशों की जनसांख्यिकीय ताकत उन्हें कामकाज के भविष्य को आकार देने का अवसर देती हैं। हमारे ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कौशल विकास, डिजिटल समावेशन और उद्यम आधारित विकास पर केंद्रित प्रयासों के माध्यम से सम्मानजनक रोजगार के अवसरों का विस्तार करने और दुनिया के सबसे जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक का निर्माण करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य सरकार ने नई तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत 1 जून से 15 जून के बीच तबादले किए जा सकेंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री की मंजूरी से होंगे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति जरूरी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 30,055 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृतियां दी गई। बुजुर्गो, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन के लिए 15,184 करोड़, किसानों की फसल बीमा योजना के लिए 11,608 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक अगले वर्ष उज्जैन में होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 मई को बस्तर में परिषद की 26वीं बैठक में इस आशय की सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी को लेकर हो रही व्यापक नागरिक व्यवस्थाओं, मानव प्रबंधन और आपदा प्रबंधन का भी मुआयना करेंगे। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। अब सरकार उनका गेहूं 28 मई तक खरीदेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास से इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन होगा। इससे किसानों को बड़ा फायदा पहुंचेगा।
3: 23 तारीख का समय पूर्व निर्धारित था। मुझे किसानों की ओर से बताया गया कि स्लॉट जिनने बुक कर लिए, लेकिन लाइन लंबी लग रही है, तो किसानों के लिए और गुंजाइश देते हुए हमने कहा जिनके भी स्लॉट बुक हुए हैं, ऐसे सभी किसानों से हम माल खरीदेंगे। इसलिए उसकी तारीख 23 तारीख से बढ़ाकर 28 मई तक करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। हमारे अपने कमिटमेंट है किसानों के साथ। हमारी अपनी किसानों हितैषी सरकार है। किसानों के लिए किसान, गरीब, महिला, युवा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम चारों वर्गों की चिंता करते हैं।
0: आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। आज के मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अभान सिंह पवैया ने कल ग्वालियर में आदर्श गौशाला लाल टिपारा के बायोगैस प्लांट का जायजा लिया। खंडवा के खालवा विकासखंड की ग्राम रोशनी में कल जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने 1,36,00,000 रुपए लागत के इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। आगरमालवा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही किसानों के लिए 30 जून तक बायोमेट्रिक ई केवाईसी अभियान संचालित किया जा रहा है। झाबुआ कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं, आगामी प्रस्तावों और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की समीक्षा बैठक ली। मंडला में जिला पंचायत द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े ने अधिकारियों से कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का विभाग द्वारा पंचायतों में प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। खरगोन जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 26 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और प्रधान जिला न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में दत्तक शिशुगृह शाजापुर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

इस समय हमारे बहुत से दर्शक चाय की चुस्कियों के बीच हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे, तो हम भी आज चाय के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस।

अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर वर्ष 21 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये दिन केवल चाय का स्वाद मनाने के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों और मजदूरों के सम्मान में भी मनाया जाता है जो दिन रात मेहनत करके हमारी प्याली तक चाय पहुंचाते हैं।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में से एक है। असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय विश्व भर में प्रसिद्ध है।

और अब हम बात करेंगे आतंकवाद विरोध दिवस की। ये भारत में प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। ये दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, जिनकी 21 मई 1991 को आतंकवादी हमले में मृत्यु हो गई थी। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को आतंकवाद और हिंसा के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना तथा समाज में शांति, एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करना है।

0: आतंकवाद आज पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। ये न केवल निर्दोष लोगों की जान लेता है बल्कि समाज में भय, अशांति और असुरक्षा का वातावरण भी पैदा करता है।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: मैं कल अपने रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक

0: एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और बीएसएफ द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताज़ा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
6: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताज़ा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
1: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
7: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन मजबूत समुदाय। ये समाचार

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी, चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world.

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि वीके कृष्ण मेनन का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 3 मई। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, शिवाजी नगर भोपाल से जयप्रकाश दुबे और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल,

0: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
0: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक, आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

चंपारण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से जुड़ी वो भूमि जहां सत्य ने पहली बार अन्यायी सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा था, जहां से नील की खेती करने पर मजबूर शोषित किसानों की मुक्ति का महामंत्र गूंजा और पूरे देश में छा गया। चंपारण यदि गांधी जी को महात्मा बनाने वाली प्रयोगशाला थी, तो उस प्रयोगशाला में प्रज्वलित सबसे प्रकाशवान दीपक थे राजकुमार शुक्ल। उन्हें चंपारण आंदोलन का वास्तविक शिल्पकार माना जाता है। राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त सन 1875 को चंपारण जिले के सतवरिया गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार था जिसकी अपने क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके पिता का नाम कोलाहल शुक्ल था, जो मूलतः सीवान जिले के निवासी थे, लेकिन बाद में वो सतवरिया आकर बस गए थे, जहां उन्होंने काफी भूमि अर्जित की। इसी समृद्ध परिवार में राजकुमार शुक्ल का पालन पोषण हुआ। इस तरह वो एक समृद्ध और प्रभावशाली किसान थे, जिनकी आर्थिक स्थिति उस समय के औसत किसान से बहुत बेहतर थी। उनका विवाह केवला देवी से हुआ था। उनके पारिवारिक जीवन में उनकी पत्नी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पंडित राजकुमार शुक्ल को एक सत्याग्रही के रूप में विकसित करने और संघर्षों में साथ देने में केवला देवी का महत्वपूर्ण योगदान था। उनके परिवार में दो पुत्रियां थीं, जिन्होंने उनके संघर्षपूर्ण जीवन को बहुत करीब से देखा था। राजकुमार शुक्ल ने अपनी युवावस्था में बेतिया राज में एक मुहर्रिर यानी मुंशी के रूप में भी कार्य किया था, जहां उन्हें प्रशासनिक और विधिक प्रक्रियाओं का आरंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह कृषि तथा सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गए। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने किसानों पर अत्याचार की एक अलग ही कहानी लिखी। अपनी ही कृषि भूमि पर किसानों के लिए अलग नियम, कानून और प्रतिबंध लागू हुए, जिसने किसानों की दुर्दशा कर रखी थी।

19वीं शताब्दी के मध्य से ही यूरोपीय बागान मालिकों ने चंपारण में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं और ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में उन्होंने किसानों पर अत्याचार का एक संगठित ढांचा तैयार कर लिया था। उन्होंने तिनकठिया खेती की प्रणाली लागू की थी। ये एक दमनकारी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के प्रत्येक बीघा यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। ये प्रणाली बेहद शोषणकारी थी क्योंकि किसानों को नील की फसल के लिए जो मूल्य दिया जाता था वो उनकी लागत से भी कम होता था। बागान मालिक स्वयं ही मूल्य निर्धारित करते थे। नील की खेती से भूमि की उर्वरता का भी ह्रास होता था क्योंकि नील की जड़ें गहरी होती थीं जो भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती थीं, जिससे उस भूमि पर बाद में अनाज उगाना कठिन हो जाता था। इसके साथ ही 40 प्रकार के अवैध कर भी किसानों पर लगाए गए थे। राजकुमार शुक्ल स्वयं बेलवा कोठी के अंतर्गत एक रैयत थे, इसलिए इन प्रताड़नाओं का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। अंग्रेजों के इस शोषण और अत्याचार ने उन्हें भीतर तक आंदोलित कर रखा था। उनकी संघर्ष यात्रा इन्हीं अत्याचारों के प्रतिरोध से आरंभ हुई। उनका प्रतिरोध सन 1907-8 के आसपास स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और भारत की धरती पर यह उनका पहला आंदोलन था, लेकिन चंपारण में गांधी जी के आगमन से लगभग एक दशक पहले भी किसानों ने सामूहिक विद्रोह किए थे, जिसमें शेख गुलाब और शीतल राय जैसे नेताओं की अगुवाई में बागान मालिकों के गुंडों और कारिंदों को कड़ी चुनौती दी गई थी। राजकुमार शुक्ल ने इस दौरान स्थानीय पंचायतों को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो चाहते थे कि किसान अपने विवादों को निलहे साहबों की अदालत के बजाय अपनी पंचायतों में सुलझाएं। राजकुमार शुक्ल की ये पहल ब्रिटिश सत्ता और बागान मालिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि इससे उनके न्यायिक और प्रशासनिक एकाधिकार को खतरा पैदा हो गया था। वो बागान मालिकों के लिए एक बड़ा अवरोध बन गए थे। परिणाम स्वरूप उन्हें व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई गई, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया गया, उनके घर को आग लगा दी गई, उनका पशुधन भी छीन लिया गया, उन पर दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। बेलवा कोठी के बागान मालिकों ने उन पर चोरी, मारपीट और दंगे के आरोप लगाए। सन 1914 में एक बागान मालिक के साथ हुए विवाद के कारण उन्हें कुछ हफ्तों के लिए जेल में भी डाला गया, लेकिन राजकुमार शुक्ल का प्रतिरोध लगातार जारी रहा। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, उनका संकल्प अडिग रहा। अपमानजनक स्थिति और आर्थिक नुकसान के बावजूद वो अंग्रेजों को चुनौती देते रहे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि चंपारण की जो समस्या है वो केवल स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध करके सुलझाई नहीं जा सकती है, इसके लिए एक राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है और उनकी दृष्टि में इस समस्या को केवल गांधी जी ही सुलझा सकते थे।

राजकुमार शुक्ल के इस संघर्ष में उनके साथ जुड़े पीर मोहम्मद मुनीश। वो एक पत्रकार थे और कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप में वो चंपारण के किसानों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें लिखते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में निकलने वाला ये पत्र किसानों की पीड़ा का दर्पण बन गया। पीर मोहम्मद मुनीश के साथ मिलकर राजकुमार शुक्ल ने इस संदर्भ में गांधी जी और कई राष्ट्रीय नेताओं को पत्र भी भेजे थे। दोनों की जोड़ी ने ही मिलकर वो वैचारिक धरातल तैयार किया जिस पर बाद में चंपारण सत्याग्रह खड़ा हुआ। दिसंबर सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, अंबिका चरण मजुमदार जैसे अनेक नेताओं से राजकुमार शुक्ल खुद मिले, लेकिन सभी ने उनसे कहा कि वो स्थानीय स्तर पर इस समस्या को सुलझाएं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब गांधी जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि आपको चंपारण

न होगा, वहां किसान मर रहे हैं। हालांकि अधिवेशन में उनके प्रयासों से चंपारण में किसानों की दुर्दशा पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया था, लेकिन राजकुमार शुक्ल इससे संतुष्ट नहीं थे। वो चंपारण में गांधी जी की उपस्थिति चाह रहे थे, जैसे नियति भविष्य लिख रही थी। अधिवेशन के बाद गांधी जी ने चंपारण जाने में अपनी असमर्थता जताई और राजकुमार शुक्ल साये की तरह उनके पीछे हो लिए। गांधी जी कानपुर गए, शुक्ल जी वहां भी पहुंच गए। गांधी जी साबरमती आश्रम लौट आए तो वो आश्रम में डेरा डालकर बैठ गए। गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो वो पहले से ही वहां मौजूद थे। गांधी जी ने बाद में लिखा भी कि इस अनपढ़ किंतु संकल्पवान किसान ने मुझे जीत लिया। अंततः 9 अप्रैल सन 1917 को वो राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण के लिए रवाना हुए और 10 अप्रैल को दोनों पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे। दोनों की साधारण वेशभूषा देखकर नौकरों ने उन्हें अछूत समझ लिया तथा कुएं से पानी तक लेने से रोक दिया। यही वो बिंदु था जब गांधी जी ने महसूस किया कि भारत की लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं, सामाजिक कुरीतियों से भी है। इसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां जेवी कृपलानी और छात्रों ने उनका स्वागत किया। 15 अप्रैल सन 1917 को वो मोतिहारी पहुंचे, जो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय था। यहीं से आरंभ हुआ चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, जिसने ब्रिटिश राज को हिला कर रख दिया। कमिश्नर ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इस सरकारी आदेश की विनम्रता पूर्वक अवहेलना की। 18 अप्रैल को मोतिहारी की अदालत में गांधी जी की पेशी हुई। राजकुमार शुक्ल ने आसपास के गांवों में सूचना फैला दी, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में किसान अदालत परिसर में जमा हो गए। ये जन सैलाब ब्रिटिश सत्ता के लिए अप्रत्याशित था। और फिर गांधी जी ने अदालत में अपना ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने कानून तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज और मानवीय सेवा के उच्चतर कानून का पालन करने के लिए जिला छोड़ने से इनकार किया है। उनका बयान बिजली की तरह पूरे देश में फैल गया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, मुकदमा वापस ले लिया गया और गांधी जी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति मिल गई। ये भारत में सविनय अवज्ञा की पहली बड़ी नैतिक जीत थी। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के साथ गांव गांव घूमते रहे। गांधी जी ने उन क्षेत्रों को देखा जहां अत्याचार चरम पर था। इस जांच के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद और जेबी कृपलानी आदि के साथ एक टीम तैयार हुई। राजकुमार शुक्ल ने किसानों को निर्भीक होकर बयान देने हेतु प्रेरित किया और लगभग 10,000 किसानों के बयान दर्ज हुए। इस आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ, तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई, किसानों से वसूले गए अवैध धन का एक हिस्सा लौटाने का आदेश हुआ और अन्यायपूर्ण कर से भी मुक्ति हुई। राजकुमार शुक्ल ने इस आंदोलन के बाद भी शिक्षा, स्वच्छता और जन जागरण के कार्य में स्वयं को समर्पित रखा। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। वो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और खादी के प्रचार में जुट गए तथा किसान सभा आंदोलन के प्रारंभिक स्तंभ बने। वर्षों की कानूनी लड़ाई में ब्रिटिश दमन ने उनकी संपत्ति छीन ली थी, पशुधन नष्ट हो गया था, उनकी आर्थिक स्थिति भी टूट चली थी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। इसी विपन्न अवस्था में उन्होंने 20 मई सन 1929 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन लें, राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास

जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है WATANKARAAG@gmail.com और RADIOAZADHIND@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक रसधार। सबसे पहले सुनिए चित्रा देवी तिवारी के स्वर में लोकगीत।

अरे हरे पान सोई पीरे पर गए सुनियो कंत हमार, झाड़ पेड़ सोई पतझर हो गए,

लोक रसधार के कार्यक्रम में अभी आप चित्रा देवी तिवारी और बेड़ीलाल अहिरवार के स्वर में लोकगीत सुन रहे थे। अब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप नाटक सुनेंगे जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: प्रस्तुत है नाटक खुशबू का नगमा, लेखक कमर जमाली, प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

0: गुड मॉर्निंग सर.
1: हेलो, गुड मॉर्निंग.
0: इट्स योर ब्रेकफास्ट सर.
1: ऑलराइट. मैडम कहाँ है?
0: बेबी के रूम में है सर.
1: क्या कर रही है बेबी?
0: ओह, हाउ स्वीट शी इज इन हर डॉक्टर्स यूनिफॉर्म सर.
1: अच्छा अच्छा, तुम जाओ.
0: बट सर, मैडम हैज टोल्ड मी.
1: शुको, अंडरस्टैंड?
0: ओके सर, ओके सर.
1: ऑल राइट. बेबी, तूने मेरी लाश देख ली बेटे. खुदा तेरी उम्र दराज करे, तुझमें वो सारी खूबियां समा जाए जो.
2: अरे, आपने नाश्ता नहीं किया अब तक? मैं कह रही हूँ, नाश्ते की ट्रॉली कब से खड़ी है आपके सामने?
1: पता नहीं.
2: क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप?
1: कुछ नहीं.
2: कुछ तो
1: सोच रहा था. अजरा और सलीम ने तो मुझे मायूस कर दिया था. लेकिन बेबी के रूप में जैसे मुझे मेरी खोई हुई दुनिया मिल गई. आज मैं किस कदर खुश हूं तुम इसका अंदाजा नहीं कर सकती रतिया. मैं महसूस कर रहा हूं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो गया. मैं देख रहा हूं मेरी दीदी मेरे सामने खड़ी है. मेरी दीदी, उनसे पहले मुलाकात का वाकया मुझे आज भी याद है. तब तस्वीर में पढ़ता था मैं.

0: ए मिस्टर, देख के नहीं चलते?
1: जी
0: सुनते भी कम हो क्या?
1: सुनता तो हूं जी।
0: तो फिर सड़क पर चलना नहीं आता क्या?
1: वो भी आता है, लेकिन शायद आप कुछ नहीं जानती।
0: क्या मतलब?
1: मतलब ये कि गाड़ी चलाना औरतों का काम नहीं, क्या समझी?
0: काफी गुस्ताख हो तुम।
1: आपसे कम हूं जी।
0: बात करना सीखो।
1: और आप भी गाड़ी चलाना सीखिए, क्या समझी?
0: ओ, तो ये बात है।
1: हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। बड़ा रौब जमाती हैं आप तो।
0: कहाँ रहते हो?
1: ये दुनिया बहुत बड़ी है मिस साहिबा।
0: क्या नाम है तुम्हारा?
1: क्यों बताऊं?
0: अच्छा, अगर प्यार से पूछूं तो?
1: प्यार से? काफी चालाक हैं आप तो।
0: चलो यूं ही सही।
1: जब कुछ प्यार से पूछे तो बताना ही पड़ेगा।
0: तो बताओ ना।
1: सुल्तान अहमद।
0: नाम तो अच्छा है।
1: फिर क्या इरादा है आपका?
0: मेरा नाम नहीं पूछोगे?
1: जी
0: मुझे पुष्पा कहते हैं। कहाँ जाओगे?
1: जी
0: फिर वही जी। अरे मैं पूछ रही हूँ, आप कहाँ जाओगे?
1: आखिर आप चाहती क्या है?
0: घबराओ नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी।
1: ओह शुक्रिया शुक्रिया। अभी अभी मेरे पांव सलामत हैं जी।
0: वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर मेरा ख्याल है अच्छे लड़के जिद नहीं करते।
1: आप कैसे कह सकती हैं कि मैं अच्छा लड़का हूं?
0: देखते नहीं मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ।
1: हाँ तो क्या हुआ?
0: हुआ ये कि मैं बहुत सोच समझ कर बात कर रही हूँ, देख कर ही पहचान लेती हूँ कि तुम वाकई अच्छे लड़के हो।
1: अच्छा
0: चलो बस अब बैठ जाओ।
1: अगर ये बात है तो चलिए आप भी क्या याद करेंगी, बैठे जाते हैं।

0: हाँ, अब फरमाइए
1: जी। क्या फरमाऊं?
0: मेरा मतलब है, कहाँ जाएंगे आप?
1: ओ, आजाद नगर।
0: वहीं रहते हैं?
1: जी हाँ, टॉकीज के सामने रहता हूँ मैं।
0: टॉकीज के सामने? कब से रहते हो वहाँ?
1: क्यों?
0: इसलिए कि मैं भी वहीं रहती हूँ।
1: अरे, कहाँ पर?
0: ओ, नीली कोठी में।
1: ओ, मैं पीली बिल्डिंग में रहता हूँ।
0: अच्छा।
1: हाँ, अभी एक साल हुआ है हम लोगों को, इंदौर से आए हम लोग।
0: अच्छा अच्छा।
1: और मेरे वालिद इंस्पेक्टर हैं सेंट्रल एक्साइज में।
0: और तुम शायद पढ़ते हो?
1: जी हाँ, 10th में।
0: मैं भी पढ़ती हूँ।
1: अच्छा, कहाँ पे?
0: गवर्नमेंट कॉलेज में, बीए का फाइनल ईयर है मेरा।
1: फाइनल करने के बाद क्या करेंगी आप?
0: क्यों?
1: यूं ही पूछ रहा था।
0: पता नहीं क्या करूंगी, वैसे तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
1: डॉक्टर? पर आप तो आर्ट की स्टूडेंट है ना?
0: वही तो, यही तो खराबी है इस दुनिया में, आदमी जो कुछ करना चाहता है वो कर नहीं पाता, और जो होता है वो चाहता नहीं।
1: ये बड़ी अजीब बात है, वाले साहब भी मुझे वकील बनाना चाहते हैं।
0: और तुम क्या चाहते हो?
1: भाई, मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ।
0: डॉक्टर क्यों नहीं?
1: मेरा ख्याल है मैं डॉक्टर से अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ।
0: हाँ चलो, ये भी ठीक है। वैसे भी आज देश को वकीलों से ज्यादा तो डॉक्टर्स और इंजीनियर की ही जरूरत है।
1: मगर हमारे वारिस साहब का ख्याल है कि इंजीनियर जिंदगी भर दूसरों के घर बनाता फिरता है, मगर खुद उसका कोई घर नहीं होता। खाना बदोशों की तरह इधर उधर घूमता फिरता है।
0: अपनी जात के लिए सोचने वाले ये नहीं जानते कि खिदमत खल्क से अच्छा इस दुनिया में कोई और काम ही नहीं।
1: जी।
0: अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरा मतलब है कि तुम्हारी बहन भी है?
1: नहीं, मैं अकेला हूँ।
0: ओ,
1: क्यों?
0: कुछ नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत अकेली हूँ, मेरा भी कोई नहीं है।
1: ऐसा क्यों है? जिन लोगों के सीने मोहब्बत के नूर से मामूर है, वो भाई बहन के नाम को तरसते हैं, और जिनके भाई बहन हैं वो अपने सिवा कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं देखते।
0: अभी तुम बहुत छोटे हो, तुमको ऐसी बातें नहीं सोचना चाहिए।
1: मुझे मेरे अकेलेपन ने वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया है। आप हैरान रह जाएंगी, कभी कभी मुझ पर दीवानगी का दौरा पड़ता है।
0: क्या?
1: मेरा जी चाहता है कि रास्ते चलते किसी भी लड़की को पकड़कर उसका मुंह चूम लूं, हाँ उसके बाल बिगाड़ दूं, और पूछूं कि भाई बहन का रिश्ता इतना महदूद क्यों है। मैं एकदम पागल हो जाता हूँ।
0: अच्छा सुनो, इधर देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे बाल बिगाड़ सकते हो, मेरा मुंह चूम सकते हो।
1: दीदी।
0: हाँ।
1: क्या कह रही है?
0: भैया।
1: दीदी।
0: मेरे अच्छे भैया।
1: ये लीजिए, ये आ गया मेरा घर।
0: और वो देखो, वो सामने रही मेरी कोठी।
1: अच्छा, वो है आपकी कोठी?
0: नहीं तो, मैं तो उसमें रहती हूँ। अच्छा, कल आओगे ना?
1: जरूर।
0: अच्छा, बाय
1: बाय।

0: अब उठिए ना, कब तक सोते रहेंगे? मैंने कहा सुनते हैं आप? क्या 10 बज गया?
1: तो क्या हुआ भाई, आज तो इतवार है ना।
0: कम से कम नाश्ता तो कर लीजिए, कब से पार ठंडा हो रहा है।
1: आपने कर लिया?
0: फिर वही।
1: बेगम आपसे भी हद है, मैंने कितनी बार कहा है कि कम से कम इतवार के दिन तो नाश्ता कर लिया कीजिए, बेकार में मेरी वजह से भूखी रहती हैं आप।
0: अच्छा अच्छा, आप जल्दी से उठ के शेव कर लीजिए, मैं जब तक चाय तैयार करती हूँ।
1: ठीक है। हाँ सुल्तान कहाँ है?
0: पुष्पा के यहाँ गया है।
1: पुष्पा के यहाँ? आखिर तुम उसे रोकती क्यों नहीं, जब देखो वहीं घुसा रहता है।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: हुआ ये कि अब वो बच्चा नहीं रहा, पूरी तरह जवान हो चुका है।
0: अरे वो तो मैं भी जानती हूँ, मगर कोई बात तो मालूम हो।
1: बेगम आपसे भी हद है, ये भी नहीं समझती कि जमाना कितना खराब है, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो सारे शहर में आग लग जाएगी।
0: हाय अल्लाह, क्या कहते हैं आप?
1: बेगम मैं सच कह रहा हूँ, बहुत बुरा जमाना है, पता नहीं कब क्या हो जाए।
0: मगर सुल्तान और पुष्पा के बीच तो सगे भाई बहनों जैसा रिश्ता है।
1: लोग तो इस तरह नहीं सोचते ना।
0: लोगों का क्या है, वो तो किसी को भी माफ नहीं करते।
1: वही तो मैं भी कह रहा हूँ बेगम।
0: तो अजी इसका ये मतलब भी नहीं कि लोगों की बातों में आकर हम अपने बच्चों की नियत पे शक करें।
2: मैं पूछता हूँ, बिला वजह मुसीबत मोल लेने से फायदा? पुष्पा MA कर चुकी है और तुम्हारा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, फिर दोनों के दरमियान वो कौन से कदर मुश्तरक है जो एक दूसरे से मिलते हैं।
0: तो क्या भाई बहन का प्यार कोई चीज नहीं?
1: ओहो, अब मैं तुमको कैसे समझाऊं? पुष्पा के घर वाले समझते हैं वो महज सुल्तान की खातिर शादी से इनकार कर रही है।
0: हाय अल्लाह, ये आपसे किसने कहा?
1: उसके चचा ने।
0: अच्छा।
1: कल वो मेरे पास आए थे, कह रहे थे उनकी बीवी के रिश्तेदारों में एक अच्छा सा लड़का है, काफी दौलतमंद और पढ़ा लिखा भी है, मगर पुष्पा है कि किसी तरह तैयारी नहीं।
0: आए है तो इसमें सुल्तान का क्या कसूर?
1: कसूर ये है कि उनको यकीन है कि अगर सुल्तान पुष्पा पर जोर डाले तो जरूर तैयार हो जाएगी। इसका मतलब समझती हैं आप?
3: देखो सुल्तान, मैं सब कुछ समझती हूँ, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं कि दूसरों की बातों में आकर मुझे सबक पढ़ा रहे हो तुम।
4: मगर मैं पूछता हूँ दीदी, हरि बाबू में ऐसी क्या बुराई है जो?
3: क्या चाहते हो तुम, मैं उस शख्स से शादी कर लूं जो बीवी और जागीर में कोई फर्क ही ना कर सके? क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि तुम्हारी बीवी ड्राइंग रूम की जीनत बनाकर बिठा दी जाए? क्या तुम यार दोस्तों की महफिल में अपनी बीवी की नुमाइश करके बड़े फख्र के साथ कह सकोगे कि ये है वो खूबसूरत शाहकार जिसे मैंने दौलत के बलबूते पर हासिल किया है?
4: हरगिज नहीं।
3: तो फिर सोचो, मेरी जिंदगी, मेरी हस्ती और मेरी खूबसूरती को शोक इसमें सजाकर जगह जगह नुमाइश की जाएगी, तो क्या मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाऊंगी? बोलो।
4: अगर अंकल तो कह रहे थे कि वो
3: उनकी बात छोड़ो, वो तो ये चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर ऐश करूं, मगर मैं जानती

0: ऐशो इशरत के बोझ तले दबकर मेरा वजूद मिट जाएगा, कुछ भी नहीं रहूंगी मैं।
1: लोग तो चाहते हैं कि आराम की जिंदगी गुजारे, और आप हैं कि आराम को हराम समझकर पता नहीं क्या चाहते हैं आप।
0: मैं जो कुछ चाहती हूँ वो तुम अच्छी तरह जानते हो सुल्तान।
1: दीदी,
0: मैं फैसला कर चुकी हूँ, अगर मुझ पर ज्यादा दबाव डाला गया तो मैं
1: तो क्या करेंगी आप?
0: तो मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी।
1: कहाँ?
0: हे दुनिया बहुत बड़ी है सुल्तान, और इसमें बहुत से काम अधूरे पड़े हैं।
1: क्या करेंगे आप?
0: जो चाहती हूँ वो तो नहीं कर पाऊंगी, मगर हाँ कोशिश जरूर करूंगी कि लोगों की खिदमत कर सकूं, उनके किसी काम आ जाऊं।
2: आज मेरा अपना कोई नहीं, कोई भी तो नहीं कि जिसके सामने अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं।
1: दीदी, खुदा के लिए चुप हो जाइए। दीदी चुप हो जाइए प्लीज, नहीं तो मैं भी रो दूंगा। दीदी मैं भी रो दूंगा।
2: सुल्तान, एक बात कहूं मानोगे?
1: बोलो, कहो।
2: मैं जब यहां से जाने लगूं तो मुझे छोड़ने मत आना तुम।
1: छोड़ने मत आना? क्यों?
2: नहीं तो मैं जा नहीं सकूंगी। देखो सुल्तान, मेरे जाने के बाद तुम मुझे भूल जाना।
1: दीदी खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। दीदी मैं भूल कर भी आपको नहीं भूल पाऊंगा। दीदी

0: अरे आप गए नहीं अब तक? मैं तो समझी थी कि
1: जाऊं कैसे, तुम्हारे बेटे साहब छोड़े तब ना।
0: है किसका बेटा?
1: क्या मतलब?
0: मतलब ये कि 10:30 बज रहा है।
1: 10:30 बज गया?
0: जी ये देखिए।
1: ओ अच्छा,
0: मतलब सुनिए तो
1: क्या है,
0: वापसी में अजरा के लिए किताबें जरूर लेते आइएगा और आपके बेटे के लिए दूध का डिब्बा।
1: हाँ जरूर, लेकिन 4:30 बजे के करीब मुझे फोन कर देना याद से। अच्छा जा रहा हूँ मैं।
0: तौबा है मेरी, ये क्या करते हैं आप हर रोज?
1: ए? क्या करता हूँ?
0: आपको पता नहीं बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अजरा तो मुझसे कई बार पूछ चुकी है।
1: क्या?
0: यही कि हर रोज आप इस तस्वीर के सामने खड़े होकर ये पुजारियों की तरह क्या पढ़ते हैं?
1: पढ़ता नहीं, उनको याद करता हूँ।
0: याद करने का ये तरीका हमारे मजहबी उसूलों के खिलाफ है, ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है ना?
1: तुम भी अच्छी तरह जानती हो रसिया कि दीदी मेरा आइडियल है, मैं उनको एक लम्हा के लिए भी अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता।
0: मैं ये कब कहती हूँ कि आप उन्हें भूल जाइए, मगर ये तरीका ठीक नहीं है।
1: देखो रसिया, पूरे 8 साल हो चुके हमारी शादी को, इस बीच तुमने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। ये सोचकर मैं बहुत खुश था कि तुमने मेरे अंदर की सच्चाइयों को देख लिया है, तो वाकई मेरी शरीक हयात हो। मगर आज तुमने सारा भरम तोड़ दिया। मैं तुम्हारी सूरत में उस गंदी जहनियत का अक्स देख रहा हूं जो
0: सुल्तान, खुदा के लिए मुझे गलत मत समझो, मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है।
1: तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा?
0: गलती हो गई सुल्तान, माफ कर दीजिए। हेलो, कहाँ से? जी एक मिनट, आपका ट्रंक कॉल है।
1: ट्रंक कॉल कहाँ से?
0: हेड ऑफिस से।
1: हेलो, जी हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। जी जी हाँ, ओ थैंक यू, थैंक यू सर। सर ये सब आपकी मेहरबानी है सर। जी नहीं, जी नहीं सर, मैं एकदम तैयार हूँ सर। जी जी जी, जैसा फरमाया सर। जी बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन सर। जी खुदा हाफिज़।
0: क्या हुआ?

0: कुछ नहीं, चलने की तैयारी करो।
1: कहाँ?
0: जबलपुर।
1: क्यों?
0: अरे भाई मेरा तबादला हो गया है।
1: तबादला? ये कैसे हो सकता है, एक साल में दो दो बार?
0: अरे भाई ये सब उसकी मेहरबानी है, मुझे प्रमोट करके ऐसी बना दिया गया है।
1: अच्छा, सच? सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर?
0: हाँ।
1: या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है।
0: और सबसे बड़ी बात ये है कि पुष्पा दीदी के पास पहुंच जाऊंगा।
1: अरे हाँ, वो भी तो वही है ना।
0: हाँ रतिया,
1: ये बहुत अच्छा हुआ।
0: और तुमको ये शिकायत भी नहीं रहेगी कि मैं उनकी तस्वीर के सामने खड़े होकर अपने मजहबी उसूलों के खिलाफ वर्जी करता हूँ।
1: देखिए देखिए, इसका ये मतलब हुआ कि आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया।
0: मुझे यकीन है रतिया कि वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी।
1: मेरी बात का जवाब तो दीजिए ना।
0: क्या?
1: आपको मेरी कसम, कहिए ना कि आपने माफ किया।
0: अरे बेगम, तुमने मेरा नहीं दीदी का कसूर किया है, और वो इतने फराक दिल हैं कि तुम्हें जरूर माफ कर देंगे।
1: मगर आप नहीं करेंगे।
0: अरे भाई मैं तो पहले ही माफ कर चुका हूँ। अच्छा, अब जल्दी तैयारी करो, मैं तब तक ऑफिस होकर आता हूँ।
1: जल्दी आइएगा।
0: अच्छा।
2: कौन? अरे भाई कौन है?
0: दीदी।
2: अरे तुम?
0: हाँ दीदी।
2: सुल्तान।
0: हाँ दीदी मैं हूँ।
2: अरे तुम इतने बड़े हो गए,
0: और आप भी तो कितनी बदल गई हैं। अरे बीमार हैं क्या आप?
2: नहीं तो। आओ अंदर आओ। मगर जरा ठहरो।
0: क्यों?
2: एक मिनट, मैं तुम्हारी आरती तो उतार लूं।
0: आरती? अरे मैं कोई भगवान का अवतार हूं क्या दीदी?
2: मेरा भैया भगवान के अवतार से कम है क्या? वो आज मेरे घर आया है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है?
0: मैं भी कितना खुश नसीब हूं कि
2: कब आए?
0: आज ही, बल्कि बस अभी चला ही तो आ रहा हूं मैं।
2: सामान कहाँ है?
0: बंगले पर, और वहां आपकी बहू भी है।
2: बहू? तो क्या वो भी आई है?
0: हाँ दीदी, और आपकी दुआ से दो बच्चे भी हैं, अदरा और सलीम।
2: अच्छा, तो उन्हें क्यों नहीं लेकर आए?
0: मैं आपको साथ लेने आया हूँ।
2: मुझे?
0: हाँ आपको, जानती हैं आप, मैं अब मुस्तकिल तौर पर यहीं आ गया हूँ।
2: सच? अरे फिर तो मैं
0: दीदी, ऐसा कब से आपको?
2: कुछ नहीं, वो तो बस यूं ही कभी कभी ठसका सा लग जाता है।
0: ठसका? नहीं दीदी, ये तो दीदी
2: तुम बताओ।
0: उस दौरान मैंने आपको बहुत से खत लिखे, अगर आपने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया।
2: नहीं तो? अरे मैंने तो तुझको हर रोज खत लिखा।
0: अरे
2: खत लिखती थी और खुद ही उसका जवाब देकर फाड़ डालती थी।
0: मगर क्यों?
2: इसलिए कि मैं भी तेरी तरह थोड़ी थोड़ी पागल हूं ना।
0: तो फिर तैयार हो जाइए दीदी, आज से आप मेरे साथ रहेंगी।
2: पागल हो तुम तो, अपनी मोहब्बत के जोश में भूल रहे हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी दीदी ही नहीं, बहुत से बच्चों की माँ भी हूँ।
0: बहुत से बच्चों की माँ?
2: हाँ सुल्तान, इस स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादा बच्चे तो अनाथ और बेसहारा हैं, जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं। अगर मैं उन्हें छोड़कर चली गई तो चाय पियोगे?
0: हाँ वो जरूर पियूंगा, मगर अभी नहीं।
2: क्यों?
0: इसलिए कि रजिया से मैं आपके मुतालिक इतनी बातें कर चुका हूँ कि वो आपसे मिलने के लिए बेताब है।
2: अगर ये बात है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ।
0: चलो,
2: मगर एक शर्त है।
0: शर्त? क्या?
2: ठीक 7 बजे मुझे यहाँ छोड़ जाना।
0: क्यों?
2: अरे बच्चों के खाने का वक्त हो जाएगा, वो मेरे बगैर भूखे रहेंगे नहीं तो।
1: अरे अरे

0: रजिया क्या हुआ तुम्हें? रजिया
1: कुछ नहीं, सुबह से ये वक्त हो गया।
0: अच्छा,
1: बार बार दर्द उठ रहा है।
0: मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ।
1: वो तो ठीक है,

0: जरूरत है।
1: तो फिर आप चले जाइए प्लीज।
0: तुम्हें छोड़कर इस हालत में?
1: हाँ, मेरी तरफ से बहुत बहुत माफी मांग लीजिएगा उनसे।
0: नहीं राधिया, मैं फोन करके उन्हें यहीं पर बुला लेता हूँ।
1: नहीं नहीं, वो नहीं आ सकेंगे।
0: क्यों, क्यों नहीं आ सकेंगी?
1: वो बीमार हैं।
0: बीमार हैं?
1: हाँ, अभी कुछ देर पहले टेलीफोन पर उन्होंने बताया था, कल से उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
0: फिर तो मुझे जाना ही पड़ेगा।
1: हाँ, आप हो आइए और सुनिए।
0: हाँ बोलो।
1: वो रास्ते में डॉक्टर जौहरी को कहते जाइएगा।
0: हाँ,
1: वो आ जाएंगे।
0: ठीक है।
2: तुम जानते हो, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी।
0: हाँ।
2: मगर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी।
0: हाँ, तो
2: जानते हो मेरे अंदर की ये ख्वाहिश क्यों पैदा हुई?
0: जी नहीं।
2: तो सुनो, मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को तड़पते हुए देखा है, चीखते हुए सुना है, डॉक्टर डॉक्टर, मगर डॉक्टर नहीं आया और मेरी माँ तड़प तड़प कर मर गई। उनको भी यही बीमारी थी।
0: क्या
2: पता नहीं, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी अजरा है ना?
0: हाँ दीदी।
2: वो जब बड़ी हो जाए तो
0: जी
2: उसको डॉक्टर बनाना।
0: जी
2: बनाओगे ना?
0: हाँ दीदी।
2: सुल्तान
0: जी, दीदी
2: देखो
0: जी,
2: ये मेरी आखिरी ख्वाहिश तुम
0: आपकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। दीदी दीदी दीदी दीदी हेलो जी, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। क्या लड़की हुई है? या खुदा, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है?
1: ओह, आपने ये बात अब तक मुझसे क्यों छुपाई?
0: इसलिए कि मैं नहीं चाहता था हसरा और सलीम जो कुछ बनना चाहते हैं मैं उनके रास्ते में रुकावट बनूं।
1: तो फिर उनसे शिकायत भी तो गलत है ना?
0: मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, बल्कि खुश हूं मैं कि जब से बेबी ने इस घर में कदम रखा है दीदी की खुशबू मेरे चारों तरफ महकती रहती है। मुझे एक लम्हा के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि मेरी दीदी मुझे छोड़कर चली गई।
3: पापा।
0: बेटे।
3: ब्लेस मी पापा, प्लीज, इट इज माय फर्स्ट केस, मे आई बी सक्सेसफुल?
0: विश यू ऑल द सक्सेस, ऑल द सक्सेस, गो, मे गॉड हेल्प यू, खुदा तुम्हें कामयाबी अता करे मेरे बेटे।
3: थैंक यू पापा, थैंक यू।
0: लेकिन सुनो बेटे।
3: यस पापा।
0: देखो बेटे, तुमने जिस रास्ते पर कदम रखा है वो इंसानियत, मोहब्बत, खुलूस और खिदमत का रास्ता है। कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे कि तुम्हारे कदम डगमगा जाए और मुझे किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े।
3: पापा।
0: तुम्हें मालूम है ना बेटे, तुम किसी की अमानत हो।
3: हाँ मैं जानती हूँ पापा, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है?
0: लोगों की खिदमत करना, याद है ना?
3: हाँ पापा।
1: खुश रहो बेटे, खुश रहो।
0: जाओ बेटा, खुदा तुम्हें कामयाब।

अभी आप सुन रहे थे कमर जमाली का लिखा नाटक खुशबू का नगमा। भाग लेने वाले कलाकार थे अशोक बुलानी, बदरुन्निसा, आशा मिश्रा, विकार हुसैन, अनीस फातिमा, मकबूल हसन और दीप्ति तंतुवाय। प्रस्तुति सहयोग श्रीमती वर्षा शर्मा और आन

0: आनंद सिंह उद्दे का और इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
1: ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे, वाचन स्वर दीपा सिंह। छतरपुर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। जिले के खजुराहो और नौगांव का तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने जिलेवासियों को धूप और लू से बचाव करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से शीतल पेयजल का उपयोग करने, धूप में नहीं निकलने, धूप से बचाव के लिए चश्मे और छाते का उपयोग करने को कहा है। जिले में इन दिनों कलेक्टर के निर्देश पर जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्राचीन तालाबों, पावड़ियों की साफ सफाई, पुराने तालाबों का गहरीकरण, सार्वजनिक कुओं की साफ सफाई की जा रही है, ताकि आने वाली बारिश के पहले बेहतर जल प्रबंधन हो सके। निजी समाजसेवी संस्थाएं भी जल प्रबंधन के कार्य में सहभागी बनी हुई है। छतरपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नमा शिवाय अर्जरिया ने बताया है कि जिले की सभी ग्राम पंचायत में एक एक काम जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत सुनिश्चित किया गया है। जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान गणना का कार्य जारी है। इसी क्रम में गौरिहार तहसील में सबसे पहले HLB का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा हरपालपुर, लवकुशनगर, चांदला निकायों में भी शत प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी पार जायसवाल ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रगण को, सुपरवाइजर्स, ग्रामीण अधिकारी, SDM सहित संपूर्ण टीम को बधाई दी है। कलेक्टर ने कहा कि इस प्रकार की जिम्मेदारी और समर्पण से ही जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को समय से पहले सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है। SDM बलबीर रवन ने प्रगणकों को प्रशस्ति पत्र सौंपकर सम्मानित किया। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में खरीफ फसल की तैयारियों को लेकर छतरपुर जिले में जागरूकता अभियान प्रारंभ हो गया है। इसी क्रम में 16 मई से 10 दिन तक संचालित होने वाले कृषि रथ को छतरपुर विधायक ललिता यादव ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत CEO नमा शिवाय, अर्जरिया उप संचालक कृषि अनिल मिश्रा सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। छतरपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1,37,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। जिला नागरिक और खाद्य आपूर्ति अधिकारी सीताराम कोठारी ने बताया कि जिले में 80 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, जिसमें किसानों के लिए छाया पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की गई थी। शासन के निर्देशानुसार गेहूं खरीदी 23 मई से बढ़ाकर 28 मई कर दी गई है। किसानों को 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उनके बैंक खातों में सीधे भुगतान किया जा रहा है। किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और कोताही ना हो, इसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण टीम में गठित की गई।

गई है। छतरपुर जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर नामांतरण बंटवारा सीमांकन और फार्मर रजिस्ट्री सहित विभिन्न राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और फार्मर रजिस्ट्री में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरव गान की डेढ़ सदी।

वंदे मातरम। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। वर्तमान समय में जब समाज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब वंदे मातरम हमें एकता, भाईचारे और देशभक्ति का संदेश देता है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि हमारा देश केवल भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी माँ के समान है।

अभी आप सुन रहे थे वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे विश्व दर्पण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी की निंदा की। कहा, पाकिस्तान का अमानवीय व्यवहार उसकी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने का प्रयास। और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, वे इस वर्ष भारत के साथ अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर्ज से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाज, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। सुश्री मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है

0: कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वह भारत में अपने साझेदारों के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया।
2: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। मुंबई हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की यात्रा भारत साइप्रस साझेदारी की बढ़ती गति को दर्शाती है। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। आधिकारिक बयान के अनुसार शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी की निंदा की है। सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर कल आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय व्यवहार उसकी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने का प्रयास है। श्री पर्वतनेनी ने पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने इस वर्ष के पहले 3 महीनों में पाकिस्तान सैन्य बलों द्वारा की गई सीमा पार सशस्त्र हिंसा के कारण 750 नागरिकों की मौत और घायल होने की घटनाओं को दर्ज किया है। इनमें से अधिकांश हवाई हमलों के परिणाम स्वरूप हुई है। अमरीका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमरीकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरान के बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमरीका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकेबंदी लागू की थी। इसके बाद से अब तक 91 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला जा चुका है, जबकि 4 जहाजों को रोका गया है। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर नए सैन्य हमले टालकर बातचीत का मौका देने की बात कही थी, लेकिन समुद्र में कार्रवाई जारी है। अमरीका का कहना है कि इस नाकेबंदी से ईरान को रोज करीब $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 2 मालवाहक जहाजों को कब्जे में ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा युगोस्लाविया के विघटन और रवांडा नरसंहार के मामलों की सुनवाई के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की अंतिम कार्यवाही पूरी हो गई है। अंतिम सुनवाई में रवांडा नरसंहार के कथित वित्त पोषक फेलिसियन काबुगा से जुड़ी कार्यवाही औपचारिक रूप से बंद कर दी गई। काबुगा का शनिवार को निधन हो गया था। दोनों

0: प्राधिकरणों ने अत्याचार और नरसंहार से जुड़े 155 लोगों को दोषी ठहराया। इन अदालतों ने वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा और किसानों तथा मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन मजबूत समुदाय। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी की निंदा की। कहा, पाकिस्तान का अमानवीय व्यवहार उसकी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने का प्रयास। और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, वे इस वर्ष भारत के साथ अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म खून भरी मांग से। गायक कलाकार हैं नितिन मुकेश और साधना सरगम। संगीत है राजेश रोशन का और गीत के बोल लिखे हैं इंदीवर ने। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग।

इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता थे महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर।

अगले पत्र से फरमाइश करी है। परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान और जमीर खान ने ये सुनना चाहते हैं फिल्म कलयुग का गीत। गायक कलाकार हैं राहत फतेह अली खान। गीत के वो लिखे हैं सईद कादरी ने और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म किस्मत का ये गीत। गायक कलाकार थी आशा भोसले, गीतकार थे महबूब और संगीत दिया था A.R. रहमान ने। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे सुरेश कुमार सारथी, भाई विमलकांत सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी छत्तीसगढ़ बेमित्रा से, और नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा छत्तीसगढ़ से। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करिए।

0: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार खाद्य सुरक्षा, सतत विकास और मानव कल्याण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बधाई दी है। देशभर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को आतंकवाद और हिंसा के विरुद्ध एकजुट करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्रालय में स्कूल शिक्षा, परिवहन, सहकारिता, जनजातीय कार्य, पशुपालन और लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी अब 28 मई तक की जा सकेगी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं उन किसानों से खरीदी की जाएगी। प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। राज्य के 16 शहरों में बुधवार को पारा 44 डिग्री से अधिक रहा। खजुराहो में सबसे अधिक 47.4 डिग्री

0: तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज के मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। पेश है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे। फरिश्तों की
3: जी। नमस्कार मैम। नमस्कार,
2: किससे बातें हो रही है हमारी
3: आज? बाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी रंगीन लेटर वाला बोल रहा हूँ मैम।
2: नियाज मोहम्मद जी, बहुत स्वागत है आपका।
3: आपका कार्यक्रम सुनता हूँ मैडम, बहुत अच्छा लगता है। पहली बार मेरे को फोन लगा है मेरा आपके कार्यक्रम में
2: जी।
3: वैसे मैं लेटर लिखता रहता हूँ आप
2: जी। जी जी, बहुत स्वागत है आपका नियाज जी। नियाज मोहम्मद जी, आपसे जानना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में फरिश्ते के तौर पर आप किसे मानते हैं? हम जिंदगी में फरिश्तों की बात करना चाह रहे हैं। हाँ,
3: जो आज हमारा जो यकीन इस चीजों से होना चाहिए, तो जो मनोभाव हमारा, जो मानवता है, जो समाज है, उस परिवर्तित के रूप में जो हमारा है उसको मानने पर ही फरिश्ते माने जा सकते।
2: कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में?
3: यही बताता रहा हूं मैं बिल्कुल। आदमी जो चीज अपने अच्छे कर्मों का फल अगर हम सही आत्मविश्वास के साथ अगर करते हैं, या वो किसी भी धर्म का हो, या किसी भी समाज का हो, या किसी भी व्यक्तित्व के भाव को अच्छी तरह से अगर उसको व्यक्तित करते हैं तो वो फरिश्ते के रूप में कहलाएगा। यदि अच्छा काम नहीं कर रहा है और जो मान लो कि हम उसे मुझे फरिश्ते कहो तो ही नहीं हो सकता
2: जी। फरिश्ते जो हैं वो नेक दिल होते हैं, नेक काम करते हैं और इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं।
3: वो कटु शब्दों से बिल्कुल दूर रहते हैं
2: जी। जी, चलिए, आपने बहुत अच्छी परिभाषा दी है फरिश्ते की और उम्मीद करते हैं कि ये फरिश्ते की बातें जो आज इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं वो आगे चढ़कर कुछ और भी रूप ले और बहुत अच्छी अच्छी हमें जानकारियां भी मिलें और लोगों के सुझाव भी मिलें।
3: बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छा मैम साहब, बहुत अच्छी आपने पूछा, मुझे भी अच्छा लगा
2: जी।
3: और इस तरह से आत्मविश्वास बढ़ता है मैडम इससे
2: जी।
3: आदमी की नकारात्मक जो टिप्पणियाँ जो होती है ना, उसके भाव वो घर कर जाती है
2: जी।
3: ये कार्यक्रम जो होता है वो प्रशंसक जो आप और जो होते हैं, आपके शब्दों में जो भाव आते हैं
2: जी,
3: वो हमें बिल्कुल प्रभावित करते हैं और हम इसी से आपसे सुन के हम भी इसे अच्छे लिखते हैं और सुनते हैं और कार्यक्रम में फोन लगता है तो हमें भी शब्दों में भाव पैदा होता है।
2: चलिए, अच्छा लगा
3: आपसे मैडम
2: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नियाज मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया
3: जी। जी,
2: नमस्ते।
3: दोस्ताना गाना का गाना है मैम
2: सर, यहाँ
3: रहे ये दोस्त हमारा
2: जी। यहाँ पर क्या गाने हम अपनी पसंद का सुनाते हैं, कोशिश करते हैं अगर हम डाल सके।
3: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद का ही गाना सुना दीजिए मैम।
2: बिल्कुल,
3: बहुत अच्छा लगा
2: जी
3: आपको कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। परिवार को मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद अग्रिम
2: जी,
3: और आप
2: आपको भी
3: हम सब मिलकर रहे
2: जी। नमस्कार तो...

0: हेलो
1: जी मैडम,
0: जी, नमस्कार. बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है आकाशवाणी मध्य प्रदेश से.
1: जी,
0: आपको कभी समझ में आया कि ये दोस्त नहीं होते तो आज मेरा ये काम रुक जाता या ये काम नहीं हो पाता? ऐसा कभी हुआ तो
1: ऐसा हुआ है सर मैडम
0: बताइए वो वाकया क्या था.
1: जी मैडम जी, ऐसा मेरे साथ हुआ है। जी कल के लिए थे, गया जी गए थे हम
0: हाँ
1: तो अपने पिताजी की वो कराने के लिए पिंडदान। तो
0: हाँ
1: हमें बहुत समस्या आ गई थी, हमारा पर्स सब चला गया था, बैग भी चला गया था। तो
0: हाँ
1: हमारे साथ में एक मित्र गया था, हमारे साथ
0: हाँ
1: में, तो
0: हाँ
1: उसने हमारे खाने पीने से लेकर और पूरी व्यवस्था, जब तक हम घर नहीं लौटे आए
0: हाँ
1: और हमारे साथ में खड़ो ही रहो, भाई तुम्हें चाय तो नहीं पीने क्या है।
0: हाँ
1: लेकिन ऐसा दोस्त होना चाहिए मैडम जी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात. ऐसे ही दोस्त हमेशा मिले, सभी को मिले. एक बार आपका परिचय फिर दे दें.
1: जी मैडम, हम अपने जिला

0: आकाशवाणी भोपाल।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का ये प्रसारण है
0: जी
1: जी, आपका परिचय दीजिए।
0: मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ, सिंगपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: जी जी जी कैसे हैं राजेश नेमा जी?
0: बढ़िया है, ठीक ठाक है।
1: जी जी चलिए।
0: और आपके लगभग प्रसारण बहुत पुराना श्रोता हूँ, इसलिए बहुत पुराने कार्यक्रमों से

0: भी जुड़ाव रहा है
1: जी जी जी
0: और वर्तमान में जो शानदार कार्यक्रम आ रहे हैं उनसे भी जुड़ाव है
1: जी,
0: और हमेशा रहेगा।
1: जी जी जी आज बात आपके गीत हमारे में हम फरिश्तों के बारे में बातें कर रहे हैं। जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, ऐसी कोई घटना जिसमें कभी आपको कोई व्यक्ति जो है वो फरिश्ते के रूप में मिला हो?
0: अच्छा अच्छा जब मैं पढ़ाई करता था उस समय की बात है, किसी कारण बस एक पेपर मेरा मिस हो गया था
1: जी।
0: तो एक चूंकि सामान्य क्लास थी तो हमारी क्लास के कक्षा शिक्षक थे
1: जी,
0: तो उन्होंने जब जांच की तो हमारा पेपर नहीं मिला तो वो फिर घर पर आए और उन्होंने कहा कोई बात नहीं परेशान मत होना, आप पेपर बाद में भी दे सकते हो। तो मेरी बहुत सी बड़ी परेशानी एक बच गई उस समय। तो मैंने कहा ये इस तरह के लोग जो हैं वो निश्चित रूप से दूसरों के काम आते हैं और परेशानियां दूर करते हैं।
1: यानी आपके जीवन में शिक्षक जो हैं वो एक फरिश्ते के रूप में आए थे?
0: जी मैं चूंकि स्वयं शिक्षक हूँ
1: जी
0: और एक छोटा सा कार्टूनिस्ट भी हूँ
1: जी,
0: तो शिक्षकों का एक अलग मेरे मन में आदर सम्मान हमेशा है और रहेगा।
1: जी शिक्षक हमेशा आदरणीय होते हैं क्योंकि वो जीवन के लिए वो आधारशिला बनाते हैं। माता पिता तो पहली पाठशाला होते हैं, प्रथम पाठशाला तो माँ ही होती है, लेकिन
0: बिल्कुल जीवन उन्हीं से शुरू होता है।
1: जी बिल्कुल,
0: जो मायने में जीवन है
1: जी
0: वही जिंदगी की सही राह दिखाते हैं और हम आगे चल के प्रगति कर सकते हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जीवन का साक्षात्कार जो है वो हमारे शिक्षक ही हमें करवाते हैं। बहुत अच्छा लगा राजेश नेमा जी आपसे बात करके, उम्मीद करते हैं आप हमारे कार्यक्रम के साथ यूं ही जुड़ा करेंगे और भविष्य में भी आप हमसे बातें करेंगे।
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, किससे बातें कर रहे हैं हम, परिचय दीजिए।
0: इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
1: जीनत परवीन जी, बहुत स्वागत है आपका।
0: जी
1: कैसी हैं?
0: अच्छी हूँ मैम।
1: अच्छा जीनत परवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिंदगी में आपके
0: जी
1: लिए कोई फरिश्ता बन के आया है कभी? कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसमें आपको वो इंसान जो है वो फरिश्ते के रूप में नजर आया हो?
0: हाँ, वैसे तो हुआ है ऐसा।
1: जी बताएं।
0: जैसे कुछ भी जरूरत पड़ती तो कोई इंसान है जो फरिश्ता बन के आ जाता है।
1: तो आपके जीवन में
0: जब
1: वो फरिश्ता कौन है?
0: फरिश्ता मेरे हस्बैंड ही है।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा। जीवन साथी जो है वो सही मायने में आपके सारथी होते हैं। और
0: जी
1: तो बताइए, आप किस तरीके से मानती हैं कि जीवन साथी जो है आपके, वो आपके लिए फरिश्ता है?
0: बस कुछ भी काम होता है तो कर देते हैं।
1: और
0: जैसे कहीं जाना होता है तो मना नहीं है, कहीं पे भी घूमो फिरो, घर के कामों में हेल्प कराते हैं।
1: हाँ, इसमें बतौर फरिश्ता आपको क्या समझ में आया? जीनत जी, जैसे कि हम कहते हैं कि जिंदगी में किसी ने यदि पढ़ाई के लिए आपको प्रेरित किया है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी ने प्रेरित किया है, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, आपके भाई हों, दोस्त हों, जीवन में किसी भी प्रकार से कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आया जिसने आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाया हो, इस प्रकार की कोई बात हो तो वो बताएं आप।
0: हाँ, जैसे कहीं अर्जेंट कहीं जाना रहता है तो एकदम वो ड्यूटी भी छोड़ के मतलब आ जाते हैं छोड़ने। मेरे को कहीं
1: हाँ,
0: जाना पड़ता है अर्जेंट तो।
1: अच्छा, तो चलिए हम मानते हैं कि आपके जीवन साथी जो हैं वही आपके लिए फरिश्ते हैं।
0: जी
1: जी चलिए, आगे बढ़ने के लिए।
0: सपोर्ट करते हैं ना, सबके लिए करते हैं।
1: चलिए जीनत परवीन जी, आपसे बात करके अच्छा लगा।
0: जी शुक्रिया मैम।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार दीदी,
1: जी, आपका परिचय दे दीजिए।
0: मैं ग्राम गुरुजी कला से राजकुमार लखेरा बोल रहा हूँ।
1: जी लखेरा जी, आपका बहुत स्वागत है।
0: जी, और कैसी हैं मैडम जी?
1: जी हम तो अच्छे हैं। लखेरा जी, आपसे जानना चाहते हैं
0: जी
1: कि जीवन में आपके लिए फरिश्ता क्या है, या जीवन में आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति कभी आया हो जो आपके लिए फरिश्ते के तौर पर साबित हुआ हो,
0: जी वैसे मैडम जी, वैसे तो
1: कभी किसी ने बहुत आगे बढ़ के मदद की हो, कभी परेशानी में घिरे हुए हो आप और आपकी किसी ने बहुत अच्छे से मदद करी हो, भगवान के रूप में खड़ा हो गया हो आपके लिए।
0: जी ऐसा वाक्य आप तो नहीं आया मैडम जी, बाकी ये रहता है कि माता पिता यदि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से संस्कार दे के और उनको संपन्न बना रहे हैं।
1: माता पिता आपके लिए किस प्रकार से फरिश्ते साबित हुए हैं ये बताइए।
0: यही कि हर समय पे मतलब मदद करते रहते हैं, कभी कोई समस्या नहीं आ पाती, यदि कोई आती है तो वो मतलब है उसका निराकरण करते हैं,
1: हाँ
0: कभी कोई नहीं

0: आपात नहीं आपात इस समय से उनके उसमें रहे हुए
1: हाँ।
0: मदद करते रहते हैं
1: माता पिता
0: और माता पिता, और कभी ऐसे मौका आया तो दोस्त भाई अगर यदि अच्छे हैं तो दोस्त भाई भी मदद करते हैं।
1: हाँ, तो दोस्त भाई भी तो वो संस्कार लेते हैं जब माँ बाप से, तभी तो आगे बढ़ पाते हैं वो आपके लिए,
0: जी
1: मदद के लिए।
0: जी मैडम
1: चलिए, तो अच्छा लगा आपसे बात करके कि माता पिता के संस्कार के साथ में भी इंसान जो है वो फरिश्ते सा काम करता है।
0: जी
1: जी लखीरा साहब, आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम।

0: चलिए, आपसे भागचंद साहू जी हम ये जानना चाहते हैं कि जिंदगी में आपके लिए सैनिक क्या मायने रखते हैं और सैनिक को आप फरिश्ते के तौर पर कैसे देखते हैं?
1: सैनिक तो दीदी ऐसा है, देखो देश की सुरक्षा के लिए सैनिक बिना कुछ नहीं हो सकता, देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल यही कहना है।
0: हाँ, और सैनिकों के लिए और भी क्या कुछ कहना चाहेंगे?
1: और दीदी हम तो देखो पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाते हैं हम,
0: हाँ
1: हाँ उसी में लगे रहते हैं और कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं।
0: जी जी जी चलिए, सैनिक आज सीमा पर हैं इसलिए हम सुरक्षित हैं और निश्चिंत
1: बिल्कुल
0: हैं
1: बिल्कुल,
0: कि,
1: उनमें अगर थोड़ी अपन सुरक्षित हो सका।
0: जी निश्चिंत है कि हमारा देश सुरक्षित है।
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी बिल्कुल
0: चलिए भाग्यचंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल ठीक है दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: जी मैम जी
1: जी आपका परिचय दीजिए।
0: आपका नीम सोता कमलेश कार बात कर रहा हूँ, जिला नरसिंहपुर के ग्राम करकबेल से। सकुशल है मैम जी? बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। जी
1: जी कमलेश कहार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिंदगी में आपके लिए फरिश्ता कौन है, कोई वाकया बताइए। आ रही है
0: सबसे पहले फरिश्ते की बात करें तो सबका फरिश्ता तो मैं कह सकता हूँ, हम जैसे मानते हैं भगवान।
1: जी जी जी
0: उससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता, जो सांस ले रहे हैं, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी।
1: हाँ हाँ
0: इन सभी के अस्तित्व के कारण ही हमारा अस्तित्व है।
1: जी जी जी
0: रही दूसरी बात फरिश्ते की, जो जीता जागता रहता है, जो सामने दिखता है बिल्कुल।
1: हाँ
0: मेरे घर में मेरा परिवार है।
1: जी जी जी
0: और रही दूसरी बात तो मेरे ग्राहक बंधु है, चाय नाश्ते की दुकान है मैम जी, तो ग्राहक बंधु जो होते हैं वो मेरे लिए फरिश्ते का काम करते, मेरे लिए कह सकते हैं जीवन यापन के लिए जो माध्यम होता है उसके तहत वो उपस्थित होते हैं और मेरा सहयोग के माध्यम से मेरी दुकान चलती है।
1: हाँ।
0: तो इस प्रकार से दो प्रकार के मेरे फरिश्ते हैं। और तो तीसरी मैम जी एक बात और कहेंगे
1: कि
0: दोस्त हैं मेरे कुछ एक ऐसे दोस्त हैं जो सामने तो देखते हैं लेकिन मदद मैम जी वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी हमेशा करते ही रहते हैं।
1: चलिए बहुत अच्छी बात कही आज आपसे, बातें करके बहुत अच्छा लगा कमलेश कहार जी।

0: आपने पंचतत्व
1: जबकि
0: की बात कही है, परिवार की बात कही है और ग्राहक की बात कही है। वाकई में आपके जीवन के लिए ये बहुत मायने रखते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: जी, मैम
0: बहुत
1: जी,
0: बहुत
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: आपको और आपकी टीम को।
0: जी।

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: जी मैम, नमस्कार। अमर सिंह राठौर बोल रहा हूँ मैम, कटनी मध्य प्रदेश से, ग्राम डिठवारा। जी मैम, आज कौन सा विषय रखा हुआ मैम?
1: जी आज हम बात कर रहे हैं फरिश्ते की। जो कोई भी आपके जिंदगी में आपके लिए कभी फरिश्ते के रूप में उपस्थित हुआ हो या आप मानते हैं कि वो फरिश्ते हैं तो वो बताएं कुछ।
0: सबसे पहले तो मेरे माता पिता फरिश्ते हैं मैम, जिन्होंने मेरे को धरती पे लाया, उन्होंने इतना सब कुछ शिक्षा दी, बचपन में मेरे को शिक्षा दी। और दूसरे फरिश्ते हैं मैम मेरे गुरु जी, जिन्होंने मेरे को पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया, उन्होंने इतना सहयोग किया।
1: जी जी
0: आज आदमी उस जगह पे है।
1: जी
0: जी मैम। और तीसरी मैम, जीवन संगिनी है मैम, पत्नी
1: जी,
0: जो हमेशा साथ साथ निभाती हैं।
1: जी जी
0: उससे बड़े फरिश्ता और कौन हो सकता है।
1: चलिए कोई और वाक्य बताना भी चाहते हैं कुछ तो बताइए कि किस प्रकार से कभी माता पिता और गुरु और जीवन संगनी की आपने बात करी है।
0: जी जी जी मैम, मैं जब भी क्या कुछ थोड़ा परेशान होता हूँ, कुछ भी रहता हूँ, तो माता पिता से अपनी बात मैं शेयर करता हूँ और वो मुझे बहुत ढंग से गाइडलाइन देते हैं।
1: हाँ।
0: और मुझे सफलता प्राप्त होती है, तो मेरे लिए माता पिता सर्वोपरि है मैम।
1: जी
0: जी जी और उन्हीं की मैं वंदना करता हूँ, रोज सुबह उठ के दोनों के चरण स्पर्श करता हूँ।
1: जी
0: यही मेरी दिनचर्या है।
1: चलिए, बहुत
0: जी
1: अच्छा
0: मैम।
1: लगा अमर सिंह जी। माता
0: जी जी
1: पिता आपके लिए और जो फरिश्ते हैं, ये फरिश्ते आपके जीवन में हमेशा बने रहें, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, यही कामना करते हैं
0: जी मैम,
1: जी।
0: थैंक यू।
1: धन्यवाद।

0: ये फरिश्ते हमारी ज़िंदगी में कई बार कई रूप में सामने आते हैं। ज़रूरत है ऐसे एहसास को समझने की, ऐसे जज्बातों को समझने की, और साथ ही ऐसी ऊर्जा को समझने की जिससे बिगड़ता काम सवर जाए, जो अनहोनी को टाल जाए और जो आपको कृतज्ञ कर जाए। जीवन में फरिश्ते ये मुख प्रकृति भी है, ये वसुधा है जिसे हमने संसाधनों से सराबोर किया है। हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। आज कार्यक्रम में हमने बात की अपने जीवन के फरिश्तों की। आप सभी श्रोताओं के विचार जानकर हमें खुशी हुई और उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और अब कार्यक्रम से अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत। हमारे ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा था।

0: कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बधाई दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने पर बल दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। डॉ. यादव परिवहन, सहकारिता, जनजातीय कार्य, पशुपालन और लोक निर्माण विभाग के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक होंगे उन किसानों से गेहूं खरीदी 28 मई तक की जाएगी। प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। राज्य के 16 शहरों में बुधवार को पारा 44 डिग्री से अधिक रहा। खजुराहो में सबसे अधिक 47.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम का कल भोपाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। वहीं इससे पहले भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम ने सीरीज के चौथे और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम को 4-1 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फरमाइशी पत्रों पर।

आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने आपके लिए चुना है, किशोर कुमार की आवाज है, अलका याग्निक ने साथ दिया है, माया गोविंद ने गीत लिखा है, संगीत है कल्याण जी आनंद जी, और फिल्म का नाम है पिघलता आसमान। पसंद आप सब श्रोताओं की। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये इस गीत को सुनना चाह रहे हैं। इसी गीत को पसंद किया है अमित रैकवार, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवपालिका, पारस और संदीप ने। ये पत्र हमें मिला है बैतूल से, तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर फिल्म पिघलता आसमान से ये नगमा।

0: और अब आपको सुनवा रहे हैं मर्यादा फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, पसंद आप सब श्रोताओं की। मन्नू, मंजू, पिंकी, ऋषिका, रवि, स्वीटी, मनोज, कामिनी, इन्होंने पत्र लिखा है भोपाल से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल और प्रियांश वर्मा के साथ ऋषि वर्मा। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर मर्यादा फिल्म का ये नगमा।
1: गुस्सा

और अब आपको सुनवा रहे हैं खंडवा के श्रोताओं की पसंद पर गीत। पसंद है संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त पंचौलिया परिवार की। फिल्म का नाम है काजल, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीत लिखा है साहिर ने और संगीत है रवि का। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

एक थी लड़की, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, GM दुरानी और साथियों की है। विनोद का लिखा ये गीत है, संगीत अजीज़ कश्मीरी का, पसंद आप सब श्रोताओं की। झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु और तासु इस गीत को सुनना चाहते हैं। भोपाल से मयंक और राशि, पंकज और साधना इस गीत को पसंद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं एक थी लड़की फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं तीसरी मंजिल फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। मजरूह के शब्द हैं, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं। हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, बब्बू और डब्बू ने ये गीत सुनना चाहा है। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत।

0: इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: वैसे तो सामान्यता देखा जाए तो हमारे प्रदेश की जो भी भूमि है वो।
2: मैं डॉक्टर अजय सिंह, आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: निरीक्षण रखना आवश्यक है।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक पंचतंत्र। आज सुनिए इसकी 8वीं कड़ी।
0: एक स्थान पर यदि ज्यादा पौधे लग गए तो उनकी भी संख्या कम करना उचित होगी और

0: सभी श्रोतागण, दादा दादी एवं नाना नानियों को विशेष प्रणाम। आप सबको पंचतंत्र की छोटी छोटी कहानियाँ जरूर भाती होंगी। अभी तो ढेर सारी कहानियाँ और भी हैं। पिछली कथा में हमने सुना, लघु पतनक नामक कौवे ने देखा कि किस प्रकार चित्रग्रीव अपने साथियों को जाल में फंसा देखकर घबराया नहीं, बल्कि उन्हें हौसला दिया। सबने मिलकर जाल को उड़ा लिया। बहेलिया हार कर लौट गया। लघु पतनक भी उनके साथ उड़ चला। फिर उसने देखा कि हिरण्यक नामक चूहे ने उन सबको जाल से मुक्त कर दिया। लघु पतनक ने हिरण्यक से मित्रता कर ली। पहले तो हिरण्यक तैयार ही नहीं हो रहा था, फिर लघु पतनक के तर्क के सामने उसने हार मान ली। वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दिन लघु पतनक ने उस जगह को छोड़ने का निश्चय किया। हिरण्यक को लेकर वो दक्षिण की ओर अपने मित्र मंथरक कछुए के पास पहुंच गया। मंथरक ने उनका बहुत स्वागत किया, परंतु मंथरक ने हिरण्यक से अपनी पुरानी जगह को छोड़ने का कारण पूछा। हिरण्यक ने बताया, अपने भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है। इस संदर्भ में उसने छोटी छोटी कहानियां भी सुनाई। एक वणिक पुत्र की कथा भी सुनाई, जो हमेशा अपने भाग्य पर ही विश्वास करता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। संयोगवश उसका मिलन राजकन्या से हो गया, लेकिन सच्चाई ज्ञात होने पर राजकन्या ने उसे निकाल दिया तो प्राप्त व्यर्थ नगर की ओर चल पड़ा। वहीं से एक बारात निकल रही थी, वो उसमें शामिल हो गया। अब आगे
1: क्या शानदार बारात है। लगता है जैसे किसी बड़े आदमी के घर जा रही है। अच्छा, ये तो नगर सेठ की बेटी की शादी है।

0: ये दुल्हन बेचारी अकेली खड़ी है, मुझे उसके पास जाना चाहिए।
1: सुनिए, आप डरे नहीं,
0: अब मैं आपका रक्षक हूं।
2: मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? आप नहीं जानते मैं कितनी डरी हुई थी, अब मुझे थोड़ी राहत मिली।
0: मेरा हाथ थाम लो कन्या, तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा।
2: आपने आज मुझे मृत्यु से बचाया है, इसलिए अब आपको छोड़कर मेरी जीवित दशा में कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता।
0: भाग्य में लिखी वस्तु मिल ही जाती है। हाँ, मनुष्य के भाग्य में लिखी वस्तु उसे मिल ही जाती है।
3: अगली सुबह राजा ने पूरा वृतांत सुना। अपनी कन्या को संपूर्ण अलंकारों एवं दास दासियों से युक्त करके 1000 गांवों के साथ अत्यंत आनंद के साथ प्राप्त वर को सौंप दिया। राजा ने उसे युवराज का सम्मान दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, मनुष्य को भाग्य का लिखा मिल ही जाता है, और इसी कारण मैं लघु पत्नक के साथ यहाँ आ गया हूँ।
4: आप सबका इस तालाब के किनारे स्वागत है। आपका जो धन नष्ट हुआ उसके लिए चिंतित ना हो। भाग्य में यदि उपभोग का सुख नहीं है तो वह संभव नहीं होता। जैसे सौमिलक धन खो देता था।
3: सौमिलक धन खो देता था, वो कैसे मंत्र है?
4: तो सुनो, एक नगर में सौमिलक नाम का एक जुलाहा रहता था। वो अनेक प्रकार के रंगों और चित्रकारियों से युक्त रेशमी तथा राजाओं के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्रों का निर्माण करता था, परंतु
5: प्रिय, मैं अनेक प्रकार के चित्रकारियों से युक्त रेशमी वस्त्रों के निर्माण में निपुण होने पर भी उतना धन नहीं कमा पाता, क्यों?
6: सही कहते हैं आप। दूसरे जुलाहे जो केवल मोटे वस्त्रों के निर्माण में ही कुशल थे, वे हमसे अधिक समृद्ध हैं।
5: मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि ये जगह मुझे रास नहीं आ रही। मुझे दूसरे शहर में जाकर व्यापार करना चाहिए।
6: हे स्वामी, ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं। विदेश जाने पर धन लाभ भी हो, ये सारी मिथ्या बातें हैं। मनुष्य चाहे आकाश में उड़ जाए, चाहे पाताल में चला जाए, अथवा पृथ्वी के ही छोर तक चला जाए, किंतु जो वस्तु पहले नहीं मिली वो कभी मिलेगी भी नहीं। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम यहीं पर कोई उद्योग।
5: प्रिय, तुमने ठीक नहीं कहा। कार्य की सिद्धि उद्योग से होती है, केवल मनोरथ मात्र से कुछ नहीं होता। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। मैं विदेश अवश्य जाऊंगा।
7: ऐसा निश्चय करके सोमिलक ने वर्धमान नामक नगर में जाकर 3 वर्ष तक कड़ी मेहनत की और 300 स्वर्ण मुद्राएं कमाकर लौटा। रास्ते में एक जंगल आया, वहां विश्राम के लिए रुका, परंतु उसका धन चोरी हो गया। वो पुनः शहर गया, धन कमाया, पर अत्यधिक सावधानी के बावजूद उसका धन फिर चोरी हो गया। चौथी बार उसने देखा, उसकी ओर देखकर 2 विचित्र आकृति के पुरुष कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसने ध्यान से सुना।

0: करता है। क्या तुम भली भांति नहीं जानते हो कि सोमिलक के भाग्य में भोजन और वस्त्र के अतिरिक्त धन नहीं है? फिर भी आपने इसको 30 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दे दी?
1: हे कर्मन, उद्यमी पुरुषों को उनका अंश दे होता ही है, पर इसके प्रारब्ध का अंतिम निर्णय तुम्हें ही करना है। तुम मुझे व्यर्थ ही उपालंभ दे रहे हो।
2: नहीं, मेरे श्रम के फल को कोई नहीं छीन सकता। मैं गठरी को संभाल कर रख लेता हूं। अरे ये क्या, अरे ये गठरी तो फिर खाली है। हाय हाय हाय हाय, अब क्या होगा? मेरे निर्धन रहकर जीवित रहने से मुझे क्या लाभ है? हाय हाय हाय हाय, मैं इस वट वृक्ष की शाखा में खुद को मान कर आत्महत्या कर लूंगा। मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, सोमिलक, इस प्रकार का साहस न करो। तुम्हारे धन को चुराने वाला मैं हूं। भोजन और वस्त्र से अधिक धन तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम घर लौट जाओ, पर मैं तुमसे प्रसन्न हूं। हां, चाहो तो कोई और वर मांग लो।
2: सच? यदि ऐसा है तो मुझे बहुत सा धन दे दो।
0: पर तुम उसे भोग नहीं पाओगे।
2: यद्यपि धन मेरे भाग्य में नहीं है, फिर भी मेरे पास धन होना चाहिए। धनी व्यक्ति की लोग सेवा करते हैं।
0: कैसे?
2: किसी नगर में तीक्ष्ण विषाण नामक एक सांड रहता था। मद के गर्व से उसने अपने समूह का साथ छोड़ दिया था और एकाकी नदियों के किनारे उगी हुई मरकत मणि के समान हरी हरी कोमल घास को चरते हुए नदियों के तट को अपने सींग से गिराया करता था। इस प्रकार स्वच्छंद विचरण करते हुए वो धीरे धीरे जंगली हो गया और वन में निवास करने लगा। उसी वन में प्रलोभक नाम का एक श्रृगाल भी रहता था। एक दिन वो श्रृगाल अपनी पत्नी के साथ नदी तट पर सुखपूर्वक बैठा हुआ था। इसी बीच तीक्ष्ण विषाण नाम का वो सांड जल पीने के लिए नदी तट पर आ गया। उसके लटकते हुए वृहत मांसल अंशों को देखकर श्रृगाली ने कहा,
3: स्वामी देखो, इस वृषभ पर मांस के टुकड़े जिस प्रकार से लटके हुए हैं, उससे यही ज्ञात होता है कि कुछ ही पलों में ये गिर जाएंगे। आपको इस वृषभ का अनुगमन करना चाहिए।
4: प्रिय, कौन जानता है ये मांसपिंड गिरेंगे या नहीं? तुम मुझसे व्यर्थ ही परिश्रम करवा रही हो। यहाँ तुम्हारे साथ रहकर मैं जल पीने के लिए आने वाले चूहों को पकड़कर खाया करूंगा। मेरे विचार से सांड के पीछे भागना उचित नहीं।
3: तुम उद्यमी नहीं हो, थोड़ा बहुत जो पा जाते हो उसी से संतोष कर लेते हो। कायर और आलसी पुरुष ऐसा करते हैं। और दूसरी बात, मैं चूहों का मांस खाते खाते ऊब चुकी हूँ। अरे देखो देखो, मांस के ये टुकड़े गिरने ही वाले हैं। तुम्हें मेरी बात टालना नहीं चाहिए।

0: पत्नी की बात को श्रीगाल टाल नहीं पाया। वृषभ के पीछे घूमते हुए बहुत समय व्यतीत कर दिया, किंतु मांसपिंड नहीं गिरे। 15 वर्षों तक प्रतीक्षा करके वो श्रीगाल लौट आया। उसे लगा वो मांसपिंड कभी नहीं गिरेंगे।
1: देखो सोमिलक, यदि तुम्हें धन प्राप्ति की इतनी ही इच्छा है तो तुम मेरी बात मानो। तुम वर्धमानपुर जाओ, वहां 2 वणिक पुत्र निवास करते हैं। हाँ, एक का नाम गुप्त धन है और दूसरे का नाम उपभुक्त धन। दोनों के स्वभाव को देखो, फिर एक की प्रकृति का वर मुझसे मांग लेना।
2: ये कहकर

0: वो पुरुष अंतर्धान हो गया। सोमिलक उस नगर में जाकर गुप्तधन के घर पहुंचा। उसे देखकर गुप्तधन स्त्री तथा बच्चों को फटकारने लगा। उनकी उपेक्षा की चिंता किए बिना सोमिलक उनके घर में प्रवेश कर बैठ गया। भोजन का समय हो जाने पर अनिच्छा से गुप्तधन ने थोड़ा सा भोजन सोमिलक को भी दे दिया। सोमिलक वहीं सो गया। रात में उसने देखा वही दोनों पुरुष वहां बातें कर रहे थे।
1: हे कर्ता, क्या आपने इस गुप्तधन के भाग्य में कोई अतिरिक्त व्यय नियत किया था जो इसने सोमिलक को भोजन के लिए दिया? ये तो अनुचित है।
2: हे कर्मन, इसमें मेरा कोई योग नहीं। पुरुष को उसके लाभ तथा हानि को प्रदान कर देना मेरा कर्तव्य है। मेरे दिए हुए फल का परिणाम आपके अधीन है।
0: अगले दिन उठकर सोमिलक ने देखा गुप्तधन आंत्रशोथ से पीड़ित है। इस कारण उस दिन गुप्तधन ने भोजन नहीं किया। फिर उस घर से निकलकर सोमिलक उपभुक्त धन के घर गया, जहां उसका विशेष स्वागत और सम्मान हुआ। उपभुक्त धन द्वारा प्रदत्त वस्त्र और भोजन से सम्मानित होकर सोमिलक एक भव्य शैया पर सो गया। रात्रि के समय उसने पुनः उन दोनों पुरुषों को देखा।
1: हे कर्ता, इसने सोमिलक के आतिथ्य में बहुत अधिक धन खर्च कर दिया। आप बतलाइए इसके ऋण का भुगतान कैसे होगा?
2: हे कर्मन, जो मैंने किया है वह मेरा कर्तव्य था। इसका परिणाम अब आपके हाथ में है।
0: प्रातः होते ही एक राज कर्मचारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया और उपभुक्त धन के हाथ में दे दिया। ये घटना देखकर सोमिलक ने मन में सोचा कि संचय रहित उपभुक्त धन ही श्रेष्ठ है।
3: धनोपार्जन की सार्थकता तो तभी होती है जब व्यक्ति उसका उपभोग करे तथा दान आदि से दूसरों को उपकृत करे। हे विधाता पुरुष, मुझे उपभुक्त धन की प्रकृति चाहिए।
0: इस कथा को सुनाकर मंथरक ने कहा,
4: मित्र हिरण्य, भोग को प्रधान मानकर तुम्हें धनहानि के विषय में दुखी नहीं होना चाहिए। कभी कभी धन के विद्यमान रहने पर भी उसे अविद्यमान ही मानना पड़ता है। धन को पाकर दान देना चाहिए अथवा उपभोग में लाना चाहिए, कभी भी संचय नहीं करना चाहिए। दान के समान कोई दूसरी निधि नहीं होती। भगवान शिव के पास धन के नाम पर केवल वृषभ नंदी हैं, फिर भी वो परमेश्वर कहलाते हैं। तुम उस खोए हुए धन की चिंता छोड़ दो मित्र।
5: हाँ मित्र हिरण्यक, मंथरक की पुरुषवाणी पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। उसने जो कुछ भी कहा है तुम्हारे हित के लिए कहा है। प्रिय बोलने वाले तो सुलभ होते हैं, परंतु अप्रिय और उचित बोलने वाले मित्र बहुत कम मिलते हैं।
6: मित्र मंथरक, मुझे लगता है आपका कथन सत्य है। अप्रिय होते हुए भी जो हितकारी बातों को कहते हैं वे ही तो वास्तविक मित्र होते हैं।
5: मित्रों देखो, एक हिरण इधर दौड़ता हुआ आ रहा है। आप सब छुप जाएं, हो सकता है इसके पीछे कोई ब्याद आ रहा हो।
7: हाँ मित्र लघुवत्तक, ये मृग बड़ा ही कातर लग रहा है।
5: हाँ।
7: चलो चलो उसके पास चलते हैं।
5: हाँ चलो।
7: मृगराज, आप भयभीत प्रतीत होते हैं।
8: जी जी, मेरा नाम चित्रांग है। आप लोगों ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। सचमुच मैं भय संत्रस्त हूँ और बड़ी कठिनाइयों से बचकर आया हूँ। आप लोग मुझे अपनी शरण में लेकर कोई ऐसा स्थान बताएंगे जहाँ वो व्याध ना पहुँच सके।
5: मित्र, वो बहेलिया पर्याप्त मांस पिंडों को लेकर अपने घर चला गया है।
8: अच्छा,
5: अब कोई भय नहीं है, आप निश्चिंत हो सकते हैं।
0: उस दिन से चारों कौवा कछुआ चूहा और मृग तालाब के किनारे मनोविनोद करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन गोष्ठी में चित्रांग नहीं आया, सभी चिंतित हो गए।
6: मित्रों, क्या बात है? आज मित्र चित्रांग नहीं आया, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया?
5: शेर चीते के हाथ तो नहीं लग गया, या फिर किसी शिकारी के जाल में?
7: मित्र लघुपतनक, हिरण्यक और मैं उसे ढूंढने में असमर्थ हैं। हम तेज नहीं चल सकते, इसलिए तुम जाकर उसे खोजने का प्रयास करो।

लघुपतनक चित्रांग की खोज में चल दिया। कुछ दूरी पर उसने चित्रांग को बहेलिए के कूट पाश में बंधा हुआ देखा।

0: भद्र, ये तुम्हारी क्या दशा है? ये कैसे हो गया?
1: मित्र, अब तो मेरा मृत्युकाल आ गया है। अच्छा हुआ मित्र आप आ गए। प्राणांत काल में मित्र का दर्शन सुखकारक होता है। अगर मैंने कभी भी कोई अप्रिय वचन कहा हो तो मुझे क्षमा कर देना मित्र।
0: भद्र, हम लोगों के रहते आपको इस प्रकार भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी हिरण्यक को लेकर आता हूं, आप आशान्वित रहें।
1: अच्छा।
0: अरे मित्र, ये अच्छा नहीं हुआ।
2: क्यों, क्या हुआ? क्या वहां बहेलिया आ गया?
0: नहीं, परंतु ये मंत्रक भी यहाँ चला आ रहा है। अरे ये उचित नहीं है। अगर अभी वो व्याध आ गया मैं तो आकाश में उड़ जाऊंगा। तुम विवर्ण में घुसकर आत्मरक्षा कर लोगे, चित्रांग भी तेजी से भाग जाएगा, परंतु ये मंत्रक धीरे धीरे चलकर अपने आप को कैसे बचा पाएगा?
3: क्या करूं, मैं अपने को रोक नहीं पाया। मित्र के विपत्ति की सूचना के बाद मैं कैसे रहता?
4: अभी वो चारों बातें कर ही रहे थे कि अचानक वही हुआ जिसका डर था, व्याध आ गया। सभी बच गए पर मंत्रक कछुआ व्याध की पकड़ में आ गया। उसे धनुष की नोक पर टांग कर घर की ओर चल पड़ा। तीनों मित्रों की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी तीनों ने एक उपाय किया। वो चित्रांग बहेलिए के मार्ग में जाकर तालाब के किनारे निर्जीव भूमि पर लेट गया। लघुपतनक उसके सिर पर बैठ गया। उसे देख व्याध मंत्रक को वहीं छोड़कर हिरण लेने दौड़ पड़ा। इसी बीच हिरण्यक ने मंत्रक के पाश को काट दिया। मंत्रक वहां से भाग निकला। बहेलिया जब चित्रांग हिरण के पास पहुंचा तो वो भी तेजी से भाग गया। बेचारा व्याध सिर पीटता हुआ घर की ओर चल पड़ा। उस दिन से वो चारों मित्र सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इन प्रसंगों से हमें शिक्षा मिलती है कि विचारवानों को परस्पर मित्रता रखना चाहिए और मित्र के लिए सदैव प्रेम भाव रखना चाहिए। श्रोतागण, यहीं पर हमारा द्वितीय प्रकरण मित्र संप्राप्ति समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम आपको काकोलुकियम की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: संग्रहालय से। इसके अंतर्गत अभी आपने पंचतंत्र की 8वीं कड़ी का प्रसारण सुना। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि दोपहर 2:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, और 1:45 पर सुना जा सकेगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान होंगे। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:58 हुए हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बधाई दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इंदौर में आयोजित ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमता कार्य समूह की बैठक को कल वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन देशों की जनसांख्यिकीय ताकत उन्हें कामकाज के भविष्य को आकार देने का अवसर देती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग, परिवहन, सहकारिता, जनजातीय कार्य, पशुपालन और लोक निर्माण विभाग के कार्यों की आज समीक्षा कर रहे हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक होंगे, उन किसानों से गेहूं खरीदी 28 मई तक की जाएगी। वहीं मौसम में प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। खजुराहो में कल सबसे अधिक 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट की खबर में आईपीएल में आज अहमदाबाद में शाम 7:30 से गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 1:00 अब सुनिए महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान है।

आकाशवाणी जबलपुर द्वारा प्रसारित आज के महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं आपकी सखी पूर्णिमा। आप सभी को हमारा नमस्कार। सखियों, आज हम आपसे हमारे समाज, संस्कृति और राष्ट्र से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। सखियों, हमारा भारत देश अनेकता में एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, खान पान बदलता है, लेकिन हमारे दिलों को जोड़ने वाली संस्कृति कभी नहीं बदलती है। इसी सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देने और संवाद के माध्यम से विकास का संदेश सभी तक पहुँचे, इसी उद्देश्य को लेकर प्रतिवर्ष 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। सखियों, यह दिन हमें सिखाता है कि अलग अलग संस्कृतियाँ, परंपराएं और विचारधारा किसी भी समाज की शक्ति होती है, कमजोरी नहीं। जब संवाद होता है तब दूरियां मिटती हैं, जब संस्कृतियां मिलती हैं तब विकास के नए मार्ग प्रशस्त होते हैं। सखियों, संवाद के द्वारा जब हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं तब एक शक्तिशाली समाज का निर्माण होता है, और जब हम एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, सम्मान देते हैं और आपस में बातचीत करके एक दूसरे के विचार साझा करते हैं तब एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ता है। आज के समय में जब लोग अधिक व्यस्त जीवन जीते हैं तो एक दूसरे से मिलना संभव नहीं हो पाता है, ऐसे में गलतफहमी होना संभव है। सखियों, तब संवाद ही एक ऐसा माध्यम होता है जो गलतफहमी को दूर करके दिलों को जोड़ता है। और सखियों, यही संवाद हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारे भारत में तो ऐसा कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। सखियों, जब अलग अलग संस्कृति के लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं तब समाज में नई संभावनाएं, नए विचारों का जन्म होता है। सखियों, संवाद और संस्कृति में हम बहनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक महिला ही परिवार को संस्कार देती है, घरों में मनाए जाने वाले तीज त्यौहार परंपराओं को जीवित रखती है। घर में बोली जाने वाली भाषा से लेकर रीति रिवाजों तक हर संस्कृति की पाठशाला एक माँ की गोद ही तो होती है। सखियों, हम बहनें ही परिवारों को जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने का काम बखूबी करती हैं, समाज को संवेदनशील बनाती हैं, भावनात्मक रिश्तों को बढ़ाती हैं और समाज में विकास की दिशा तय करती हैं। सखियों, अलग अलग संस्कृति में बसी एकता की भावना को आगे बढ़ाएं, ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग सुर मिलकर एक मधुर संगीत तैयार हो जाता है, और संगीत की इसी मधुरता का एहसास करते हैं इस गीत को सुनकर, जिसे हमने लिया है फिल्म कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस गीत को सुरों की माला में पिरोया है के हरिहरन ने।

0: कहे।
1: सखियों, जब हम संवाद और विकास की बात करते हैं तो संवाद का एक माध्यम वार्ता भी है, जिसे आज के कार्यक्रम में घरेलू हिंसा अधिनियम विषय के साथ शामिल किया है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर मयूर शिखा। तो सखियों, सुनते हैं ये वार्ता, विषय है घरेलू हिंसा अधिनियम।
2: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकार में राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार सम्मिलित है। इस लाइफ में लाइफ विद डिग्निटी है। महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा उनके गरिमा के साथ जीने के संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने वाली है। अतः भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति का उपयोग करते हुए सन 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया। 31 अक्टूबर 2019 से पूरे भारत में लागू हो गया। कानून का प्रभाव उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचे इस पर निर्भर करता है। इसी उद्देश्य से आज हम अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। घरेलू हिंसा क्या है, पीड़ित या व्यथित व्यक्ति एग्रीव्ड पर्सन कौन होता है, प्रत्यर्थी या रिस्पोंडेंट जिसे पीड़ा पहुंचाने वाला कहते हैं वह कौन है, पीड़िता की सहायता करने वाली एजेंसी सेवा प्रदाता कौन है और उसके क्या कार्य हैं, प्रोटेक्शन अधिकारी या संरक्षण अधिकारी क्या हैं, इनकी क्या भूमिका है, ये पीड़ित को राहत दिलवाने में क्या भूमिका निभाते हैं, साथ ही न्यायालय की क्या भूमिका है। पहले बिंदु पर हम ध्यान देते हैं कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत कौन कौन से कृत्य आते हैं जो कि अधिनियम की धारा 3 एवं नियम के अनुसार बतलाए गए हैं। शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक या भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा। शारीरिक हिंसा के अंतर्गत मारपीट, थप्पड़, ठोकर, दांत से काटना, लात मारना, मुक्का मारना, धक्का देना, धकेलना, किसी अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुँचाना आता है। इसी प्रकार लैंगिक हिंसा में प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला अस्वीकार्य लैंगिक प्रकृति का कार्य, फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अश्लील साहित्य, तस्वीर, सामग्री देखने के लिए विवश करना, बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार। मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा में अपमान, गालियां, चरित्र हनन, पुरुष संतान न होने के लिए अपमान करना, दहेज इत्यादि न लाने पर अपमानना, कस्टडी में बालकों को जो शिक्षा व्यवस्था है उसे देने से रोकना, महिला को नौकरी में जाने से रोकना, किसी व्यक्ति से मिलने जुलने के लिए रोकना आदि, ये मौखिक और भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आने वाली घरेलू हिंसा है। इसी प्रकार आर्थिक हिंसा के अंतर्गत जो बच्चे अनुरक्षण में हैं महिला के, उसके मेंटेनेंस के लिए धन उपलब्ध न कराना, महिला को रोजगार चलाने से रोकना, विघ्न डालना, अनुमति न देना, जो वेतन उसे मिलता है वह उससे ले लेना, घर से बाहर निकलने को मजबूर करना, ये सभी चीज़ें आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आती हैं। कानूनी पीड़िता की सहायता के लिए एक संरक्षण अधिकारी की व्यवस्था अधिनियम धारा 8 और 9 में देता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस अधिकारी की नियुक्ति प्रत्येक जिले में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा करती है, जो कि हिंसा की शिकार महिला को संरक्षण और सहायता देती हैं। अब हम देखते हैं कि महिला को सहायता देने वाली संरक्षण अधिकारी के कार्य क्या हैं। हिंसा के पूरे विस्तार को हम डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहते हैं, जिसे शॉर्ट में DIR कहा जाता है। महिला से पूछकर या घटना स्थल पर जाकर या किसी को भेजकर घटना की स्थानीय सीमा में आने वाले थाने में इस रिपोर्ट को प्रेषित करने का कार्य संरक्षण अधिकारी करती है। व्यथित व्यक्ति को संरक्षण आदेश की अगर आवश्यकता है तो जो रूल्स बनाए गए हैं उनमें दिए गए अनुसार स्थानीय सीमा के अंतर्गत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को आगे की कार्यवाही के लिए प्रेषण करती है। न्यायालय प्रकरण

में गठित व्यक्ति की सहायता के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने में विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कराती है। सेवा प्रदाताओं की सूची तैयार करके रखती है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर में ये सहायताएं उपलब्ध होती हैं, जिसमें विधिक सहायता, परामर्श सहायता, आश्रय प्रदाता, चिकित्सा सुविधा। ये जो सेवा प्रदाता हैं, ये अधिनियम की धारा 10 और नियम 11(1) के पालन में अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन करते हैं। एवं सेवा प्रदाता कौन हो सकता है, वह कोई भी शैक्षिक संगठन हो सकता है, कंपनी, सोसाइटी हो सकती है, जो रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। व्यथित व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार सेवा प्रदाता संरक्षण अधिकारी के निर्देश अनुसार सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि आश्रय उपलब्ध कराना एवं जिस आश्रय में महिला को रखा गया है उसकी सूचना थाने को एवं मजिस्ट्रेट को देना। अगर ऐसी हिंसा है जिसमें महिला के चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता है तो चिकित्सा रिपोर्ट संरक्षण अधिकारी को सौंपना और इस रिपोर्ट को जो DIR है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है, उसके साथ स्थानीय पुलिस थाने को सौंपा जाता है। विधिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होने पर मजिस्ट्रेट को एक प्रति संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी और व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने में सहायता की जाएगी। जो सेवा प्रदाता और संरक्षण अधिकारी महिलाओं की सहयोग में कार्य करते हैं उन्हें विधिक संरक्षण प्राप्त है। उनके सद्भावपूर्वक किए गए कार्य के लिए उनके खिलाफ कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं होगी। इस घरेलू हिंसा के मामलों में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य एवं अधिकारिता के बारे में भी इस अधिनियम में बतलाया गया है। घरेलू हिंसा की घटना घटित होने पर किस क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कार्यवाही होगी, इसके बारे में अधिनियम कहता है कि व्यथित व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से जहां निवास करता है, कारोबार करता है या नियोजित है, या जहां मोटिव उत्पन्न हुआ है, उस क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट क्लास 1 के यहाँ कार्यवाही होगी। और मजिस्ट्रेट के यहाँ की कार्यवाही की एक समय सीमा भी होगी। जिस दिन आवेदन प्राप्त होता है उसके 3 दिन के अंदर पहली सुनवाई की जाएगी। प्रथम सुनवाई से जो निपटारा है वह 60 दिन के अंदर होना है। आवेदन प्राप्ति की सूचना प्रत्यर्थी, रिस्पोंडेंट या जो व्यक्ति पीड़ा पहुंचा रहा है उसको 2 दिन या युक्तियुक्त समय पर पहुंचाना होता है। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है व्यथित को दिया जाने वाला अनुतोष। इन अनुतोष के रूप में परामर्श सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रदान किए जाने हेतु आदेश देगा, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता हेतु निर्देश देगा। कोई ऐसी महिला हो सकती है या उस महिला की रिश्तेदार हो सकती है जो घटनास्थल पर पहुंचकर वस्तु स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्र कर मजिस्ट्रेट को अपने आदेश के लिए सहयोग प्रदान करे। जो संरक्षण अधिकारी होता है, धारा 18 इस अधिनियम द्वारा व्यथित को प्रदान किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रिलीफ है। संरक्षण आदेश धारा 18 में दिया गया है। यह इस अधिनियम द्वारा व्यथित को प्रदान किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रिलीफ है। व्यथित के आवेदन पर सूचना पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है, घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, तो व्यथित व्यक्ति के पक्ष में संरक्षण आदेश पारित करेगा और रिस्पोंडेंट को इस तरह के कार्य करने से रोकेगा, जैसे कि घरेलू हिंसा के कोई कार्य को करने से रोकना, घरेलू हिंसा में सहायता पहुंचाने या दुष्प्रेषण करने से किसी को रोकना, व्यथित के कार्यस्थल या अन्य स्थान पर जहां वह आती जाती है वहां प्रत्यर्थी को प्रवेश करने से रोकने का आदेश, व्यथित व्यक्ति से किसी भी माध्यम से संपर्क करने से रोकना, जैसे मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, दूरभाष आदि के द्वारा भी। इसी प्रकार धन संबंधी व्यवस्था को प्रभावित करने से रोकना, अगर संयुक्त लॉकर है या बैंक लॉकर है, स्त्री धन है, उसकी संपत्ति को प्रभावित करने से रोकना, या फिर ऐसा कोई आवश्यकता होने पर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बिना नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार आवश्यकता अनुसार किसी अन्य प्रकार के निर्देश देने का भी मजिस्ट्रेट को अधिकार है। अब इसके अलावा एक और आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है, निवास आदेश। व्यथित को निवास स्थान से बेकब्जा करने से रोकने का आदेश, संयुक्त निवास से प्रत्यर्थी को हट जाने का आदेश, व्यथित के निवास स्थान में प्रत्यर्थी या उसके रिश्तेदारों को प्रवेश करने से रोकने का आदेश, व्यथित के निवास स्थान को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने से रोकने का आदेश, व्यथित घटना के पूर्व जहां रह रहा था वैसी ही व्यवस्था रिस्पोंडेंट द्वारा अन्यत्र करने का आदेश, व्यथित का स्त्री धन या अन्य मूल्यवान प्रतिभूति को जिसकी कि वो हकदार है उसे वापस लौटाने का आदेश, व्यथित की संतान की सुरक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार शर्त लगाने वाला आदेश, जैसे कि संतान अगर विद्यालय जाता है तो वहाँ पर प्रत्यर्थी को मिलने से रोकना, या फिर प्रत्यर्थी मिलेगा तो व्यथित की उपस्थिति में ही मिल सकेगा।
अब मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में अधिनियम कहता है कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले थाने के

0: प्रभारी अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज को व्यथित को संरक्षण देने वाले आदेश के क्रियान्वयन में सहायता का निर्देश देते हुए आदेश पारित करेगा। देखिए, कोई भी जो कानून है उसका महत्व तभी है जब अगर उसको भंग किया जाए तो उसके लिए कुछ पेनाल्टी हो। तो इसलिए संरक्षण आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा जो दिए जाते हैं, अगर उसको रिस्पोंडेंट या प्रत्यर्थी भंग करता है तो उसको 1 वर्ष का साधारण या सश्रम कारावास तथा 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से भी दंडित किया जा सकेगा। अगर संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्य करने में विफल रहता है तो उसे भी इसी तरह 1 वर्ष का कारावास या 20,000 का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए जाने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण आदेश भी हैं, जैसे प्रतिकर आदेश जो धारा 22 में वर्णित है। अगर व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाता है किसी मानसिक यातना या भावनात्मक कष्ट के लिए, तो प्रतिकर या नुकसानी का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश देने का आदेश भी मजिस्ट्रेट क्लास 1 पारित कर सकेगा। इसी प्रकार अभिरक्षा का आदेश है, व्यथित की संतान की कस्टडी व्यथित को दिए जाने हेतु आदेश। इसी प्रकार जो सबसे एक महत्वपूर्ण आदेश है वह है अंतरिम या एक पक्षीय आदेश। सामान्यतः दोनों पक्षकारों को सुनने के उपरांत आदेश पारित होता है, परंतु यदि मजिस्ट्रेट को घटना की परिस्थितियां देखकर ऐसा लगता है कि व्यथित की सुरक्षा के लिए बिना रिस्पोंडेंट को सुने आदेश देना आवश्यक है, तो इस तरह का एक पक्षीय आदेश भी मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 23 के अनुसार पारित कर सकेगा। अब अगर मजिस्ट्रेट के इन आदेशों से दोनों में से कोई भी पक्ष व्यथित होता है तो इसमें अपील के अधिकार के लिए धारा 29 में प्रावधान है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति या तामीली के 30 दिन के अंदर सेशन न्यायालय में इसकी अपील हो सकेगी। इस तरह घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एक ओर पीड़िता को अन्याय के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सहायता प्रदान करने की व्यवस्था देता है। इस व्यवस्था के अभाव में महिलाएं घर की चार दीवारी में हिंसा सहने के लिए विवश हो जाती थी और उनके इस कष्ट का अंत उनके जीवन के साथ होता था। वहीं दूसरी ओर हिंसा करने वालों को सावधान करता है कि ऐसा करने पर उन्हें किस तरह की विधिक परेशानी एवं दंड को भुगतना होगा। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त गरिमा के साथ जीने के अधिकार को प्रदान करने में यह कानून अत्यंत उपयोगी है।
1: सखियो, अभी आप सुन रही थी वार्ता, विषय था घरेलू हिंसा अधिनियम, जानकारी दे रही थी डॉक्टर मयूर शिखा। सखियो, हम आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप अवश्य ही लाभ लेंगी। अब रुख करते हैं अगले विषय का। सखियो, 21 मई का दिन हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश देता है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध का। सखियो, आतंकवाद केवल हिंसा नहीं बल्कि मानवता पर हमला है। आतंकवाद के द्वारा किसी भी देश या समाज में भय, अशांति और विभाजन को विस्तार देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हमारा देश हमेशा प्रेम, शांति और भाईचारे के मार्ग पर आगे बढ़ा है। सखियों, आज आवश्यकता है कि हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि किसी भी प्रकार की हिंसा, कट्टरता और नफरत को अपने समाज में स्थान नहीं देंगे। सखियों, यहाँ हम बहनों की भूमिका और दायित्व और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि भावनात्मक रूप से एक संस्कारी समाज की नींव घर से ही रखी जाती है, जिसके लिए हम बहनें बच्चों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और छोटी बड़ी हर बात सिखाने की जिम्मेदारी हमारी होती है, और यही सीख उस बच्चे का जीवन तय करती है कि समाज में वह कैसा व्यवहार करेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें हमेशा यही सीख देते हैं कि बच्चों के सामने कभी भी आपसी मतभेद या किसी की बुराई की बातें मत करो, बच्चे के कोमल मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सखियों, रिश्तों को आपसी समझ, शांति और सौहार्द्रता से मजबूत बनाएं और मानवता के मूल्यों को समझकर अच्छे समाज का निर्माण हम सब करें। सखियों, अच्छे समाज के निर्माण के लिए मन का अच्छा होना आवश्यक है, और मन को अच्छा बनाने के लिए संगीत से बढ़कर और क्या साधन हो सकता है। तो सखियों, सुनते हैं मधुर गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मौसम से, और इस गीत को गाया है भूपिंदर और लता मंगेशकर ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

सखियों, अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के सबसे युवा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने

देश को तकनीकी और संचार क्रांति की नई दिशा दी। कंप्यूटर, दूरसंचार और युवाओं को आधुनिक विचार से जोड़ने का जो सपना उन्होंने देखा था, वही सपना आज विकसित भारत की आधारशिला बना हुआ है। सखियो, राजीव गांधी जी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि किसी भी देश के विकास का मार्ग शिक्षा, तकनीक और संवाद से होकर गुजरता है। उनके इसी संदेश को विकास की नींव मानते हुए उनकी पुण्यतिथि पर हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रंग अलग हों, रूप अलग हों, फिर भी दिलों का मेल रहे, भाषाएं चाहे जितनी बदलें, अपनेपन का मेल रहे। सखियों, हम सब मिलकर संवाद और विकास के साथ सांस्कृतिक विविधता को अपनाएं, आतंकवाद का विरोध करें और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। सखियों, आज के महिला सभा कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। सुनते रहिए आकाशवाणी और अब अनुमति दीजिए अपनी सखी पूर्णिमा को। नमस्कार।

0: महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण अभी आपने सुना आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: कवि श्री राग तेलंग।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
4: पानी की हर बूंद है अनमोल,
5: बहने ना दें इसे बेमोल।
4: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
5: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दे हरियाली का गहना।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: नसनसनी नसनसनी नसनसनी न उत्तेजना न उत्तेजना न शोर दिन रात न शोर दिन रात न शोर दिन न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:30 हुए हैं, ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम में अब आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति। आज कलाकार हैं तिलोत्तमा विश्वकर्मा, इनसे सुनते हैं कार्यक्रम के आरंभ में ये लंगूरिया।

और अब हम आपको एक बन्नी सुनवाना चाह रहे हैं, स्वर एक बार फिर तिलोत्तमा विश्वकर्मा का।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने ये बन्नी गीत सुना, और इसमें आवाज़ थी तिलोत्तमा विश्वकर्मा की। और इसी बन्नी गीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय हुआ है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में एक बार हम आपको पुनः सुनवा रहे हैं जबलपुर केंद्र की ही प्रस्तुति। अभी कलाकार हैं मोनल सावरकर, इनसे सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली रचना एक गीत के रूप में।

और कार्यक्रम के इस हिस्से में आप सुनने जा रहे हैं मीराबाई का ये भजन मोनल सावरकर के स्वर में।

0: इसी गीत के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था और कलाकार थीं मोनल सावरकर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:57 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार भोपाल, सुबह का नमस्कार खुशगवार हर बार, नई जानकारियां शहर और देश दुनिया की, गूंजेंगी स्वर लहरियां नए पुराने गीतों के साथ। सुबह 7:20 पर सुनिए हर रोज नमस्कार भोपाल।
2: इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। आप सुनिए फिल्म संगीत।

आप सुन रहे हैं भागम भाग फिल्म में कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान को। प्रीतम ने इस गीत की धुन बनाई थी और बोल थे।

और अब आ रहा है बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में इंदिवर के बोलों से सजा हुआ वो गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, फिल्म का नाम गिरफ्तार।

0: और गिरफ्तार फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब खत्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर आज दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरे में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया। इटली में श्री मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। दिल्ली लौटकर शाम 5 बजे प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और श्री अन्न यानी मिलेट्स को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दिया गया। श्री मोदी ने इस सम्मान को देश के करोड़ों किसानों, पशुपालकों और

0: कृषि वैज्ञानिकों को समर्पित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान भारत की कृषि नीतियों की वैश्विक स्वीकृति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के मंत्री क्वोन ओह यूल के साथ मिलकर भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक कोरिया युद्ध के 75 वर्ष पूरे होने पर बनाया गया है। इसमें उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है जिन्होंने उस युद्ध में अपनी सेवाएं दी थीं। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सांदीपनी विद्यालयों में पढ़ाई के बाद बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट की गतिविधियां चलाई जाएं। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल स्तर पर ही व्यावसायिक शिक्षा देने पर भी जोर दिया गया। प्रदेश में आरटीई के तहत दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी कल जारी की गई, जिसमें 11,485 बच्चों को उनकी पसंद के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला मिला है। ये वो बच्चे थे जिन्हें पहले चरण में स्कूल नहीं मिल पाया था। इस तरह इस साल आरटीई के तहत मुफ्त दाखिला पाने वाले बच्चों की कुल संख्या 1,17,000 से ज़्यादा हो गई है। भोपाल की चर्चित मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में कल जिला अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि शव को -80 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। इस बीच प्रदेश सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्विशा के परिजनों से मिलकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और जरूरत पड़ने पर शव को दिल्ली एम्स भेजने की बात भी कही। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। खजुराहो सबसे ज्यादा तपा, जहां पर तापमान 47.4 डिग्री तक पहुंच गया और 33 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के भिंड, दतिया और निवाड़ी समेत 7 जिलों में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है और 23 मई तक राहत के कोई आसार नहीं है। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जबकि चेन्नई अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए जूझ रही है। कल रात के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा बनाए रखा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कल आगरमालवा के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्धपीठ माँ बगलामुखी के दर्शन पूजन कर हवन अनुष्ठान किया। झाबुआ के भावेश सोलंकी को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर जान बचाने के लिए राहवीर योजना के तहत प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया और शिवपुरी जिले के पिछोर अनुविभाग के भौती में कल राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 100 से अधिक दुकानें स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर

0: किंगसे। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
4: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और

0: इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
1: India has recently launched
2: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
1: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
2: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 फरगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई

0: अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
1: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय,
2: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। साथ दिया है बाबुल सुप्रियो ने, समीर के बोल, नवीन श्रवण का।

और भीगी पलके फिल्म का ये गीत आपने सुना था, किशोर कुमार का गाया हुआ। एम जी हशमत ने इसे बोल दिए थे और जुगल किशोर तिलकराज ने संगीत तैयार किया था। सुनने के ख्वाहिशमंद थे हमारे ये सभी दोस्त, रामचंद्र माखीजा, काफिर शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार, श्रीमती सविता, बीबी स्वाति और पूरा माखीजा परिवार बनियापारा धमतरी से इस गीत को सुनना चाहता था। अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, वंतिका, शिवालिका, पारसमणि और पंजाब राव निम्बालकर, साथ में है संदीप पाटिल, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। दतरंगी से भागवत वर्मा, गुलाब दास, मानिकपुरी लेवई से, रंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छिनपुर से विश्वनाथ साहू और मवाली सिंगारपुर से सालिक पुजारी।

ये गीत आपने सुना युवराज फिल्म से, अलका याग्निक और जावेद अली ने इसे अपनी आवाज़ें दी थी, गुलजार के बोल थे और एआर रहमान की धुन थी। सुनना चाहा था ग्राम फांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत से हैं प्रमोद कुमार और सौरभ डूडी, हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू और तासू, मयंक शुक्ला, राशि शुक्ला, पंकज शर्मा, साधना शर्मा ने कोलार रोड भोपाल से इसी गीत को सुनना चाहा था। रमीला गंज आलोट ज़िला रतलाम मध्य प्रदेश से, मालवा रेडियो श्रोता संघ से ये चिट्ठी लिख भेजी है। बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने।

रविंद्र जैन के गीत और संगीत को आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। फिल्म का नाम है राम भरोसे और इस गीत को और इसके बाद वाले गीत को सुनवाने के लिए हमारे जिन सभी दोस्तों ने चिट्ठियां लिख भेजी है उन सभी के नाम आपको बता दें। संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सरमती पंचोलिया, इन्होंने घंटाघर चौक खंडवा से हमें खत लिख भेजा था। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर ने चिट्ठी लिखी थी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार वर्मा, साथ में हैं झावेंद्र कुमार, राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा ने सुनना चाहा है हमारे कार्यक्रम के इस अगले गीत को। डोंगरगांव जिला छत्तीसगढ़, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। और ये अगली और आखिरी चिट्ठी है उत्तम कुमार भगत, श्वेता, कीसु तासु, विकास शर्मा, ज्योति पुरुषवानी, मीना, नीतू सिंह और प्रतीका चतुर्वेदी की, इन्होंने हमें झारखंड से लिख भेजा था। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत।

0: और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:58 होने को हैं। अब पेश है इस घंटे की ख़ास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरे में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया। इटली में श्री मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और श्री अन्न यानी मिलेट्स को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के मंत्री कोन ओह यूल के साथ मिलकर भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन किया। ये स्मारक कोरिया युद्ध के 75 वर्ष पूरे होने पर बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सांदीपनी विद्यालयों में पढ़ाई के बाद बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट की गतिविधियां चलाई जाएं। प्रदेश में RTE के तहत दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी कल जारी की गई, जिसमें 11,485 बच्चों को उनकी पसंद के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला मिला है। ये वो बच्चे थे जिन्हें पहले चरण में स्कूल नहीं मिल पाया था। भोपाल की चर्चित मॉडल त्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में कल जिला अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि शव को -80 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। और मौसम में प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, निवाड़ी समेत प्रदेश के 7 जिलों में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है और 23 मई तक राहत के कोई आसार नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। इस सभा के समापन से पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। ग्राम लक्ष्मी आप सुन सकते हैं 7:21 पर। और सुर्खियों में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि 8:00। आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी रात 10:00। और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में पंडित उल्हास कासलकर का राग यमन कल्याण में ख्याल गायन आप सुन सकते हैं। ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जिन्हें आप हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण में सुन सकते हैं। 3:02 होने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण संपन्न होता है। आप शाम 5:00 से हमारे प्रसारण को पुनः मीडियम वेव पर सुन सकते हैं। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार।

0: नमस्कार। और कैसी हैं, पूछ रही हो इतनी गर्मी में? बस ऐसा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में, पिघल पिघल के।
1: भाई देखिए, आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं होगा, सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहां
0: हाँ।
1: अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने फिरने।
0: लेकिन इस वजह से वहां पे भी गर्मी होने शुरू हो गई है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है।
1: लेकिन अपने ही
0: तापमान
1: शहर में आप हैं जहां रह रहे हैं, और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम तरीके बता ही रहे हैं, और कहीं कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है। लेकिन
0: जी
1: आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर
0: इसकी
1: पड़ता
0: वजह से
1: है।
0: इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में,
1: हाँ,
0: तो बहुत ध्यान रखने वाला है। तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो
1: और
0: आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं
1: जी,
0: या आप क्या क्या चीजें करते हैं, तो आप हमें बताइए,
1: और
0: हम तो
1: घरेलू
0: बताएंगे।
1: उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकलते वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके अलावा अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे। और कुछ चीज़ों से डर होता है, फोबिया होता है।
0: हाँ, फोबिया पता नहीं हर एक को कुछ ना कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है। हर एक को होता है, हम
1: अभी
0: अपनी
1: हमारे
0: फोबिया की
1: क्या
0: बाद में
1: फोबिया, हम
0: करेंगे
1: इसके
0: बात।
1: बारे में बाद में करेंगे बात, लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई,
0: वो
1: उन्हें
0: बताएं अपना,
1: हाँ
0: बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ ना कुछ, किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
1: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की, में राही बाई सुमा पोपरे, जो महाराष्ट्र की बीज माता यानी कि सीड मदर कही जाती हैं,
0: जी
1: इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई,
0: हाँ,
1: चाय दिवस, चाय की
0: अरे
1: चुस्कियाँ
0: भैया
1: लेते लेते बहुत सारे काम है ना
0: हो
1: खत्म हो
0: जाते हैं,
1: जाते हैं, कब हो
0: बिल्कुल।
1: जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। और जब भी
0: एक
1: हम
0: देश ऐसा यही है भारत, जहाँ पे इतनी 50, आप सोच लीजिए कि गर्मी, इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए, चाय
1: चाय
0: चाहिए।
1: चाहिए,
0: चाय के बिना गुजारा नहीं है,
1: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहाँ एक पांचवी चीज़ जो होती है वो चाय
0: चाय
1: होती है,
0: होती है,
1: दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले भी बैठे हैं तो
0: तो भी
1: आपका
0: चाय
1: साथ ही अगर
0: होगी।
1: चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियाँ जो हैं वो
0: चलती
1: अपना
0: रहती है।
1: आलम बांध देती हैं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में बात भी
0: इसके बारे में
1: होगी।
0: बात करेंगे, और साथ ही हम चाय के बारे में आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ में।
1: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
0: जी, और बिल्कुल ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
1: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई फिर।
0: जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग-अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
1: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
0: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, इतना हम लोगों ने इतनी बातें करी, तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: भाई बात बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राही बाई सोमा पोपरे की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोंभालने की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर भरी भरी दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपरे का अपना यहाँ पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंभले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी थी तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गाँव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज़ था।

0: और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं,
1: हाँ
0: अपने
1: हाँ
0: जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
1: क्या बात है।
0: तो वो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्ष्याला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान आसुन पण त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
1: बिल्कुल, राहीबाई पोपड़े जो हैं वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन चौथे साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चट कर गए। और हैरानी की बात ये थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में, जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे, बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था, जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो। और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी, स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
0: बिल्कुल। और वो याद कर, क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो, उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती हैं कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताज़ा ही खा लेते थे। इसी के साथ उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको, के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला। और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में, वहाँ से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की। और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वासपूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं, क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
1: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बाभलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
0: जी बिल्कुल। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
1: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहाँ बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
0: बिल्कुल। और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा।

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है।
1: सच में
0: और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की
1: गर्म
0: प्याली
1: चाय
0: अगर
1: बिल्कुल,
0: मिल जाए।
1: चाय मिल जाए ना तो बस ऐसा लगता है कि नहीं, अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। मतलब ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने
0: जी
1: दिमाग को हम ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं
0: और
1: पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े
1: हाँ
0: थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है। आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे, पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो है
1: अरे,
0: ना
1: अगर
0: वो
1: कहीं
0: वर्ल्ड
1: गए
0: फेमस
1: आप,
0: है।
1: अगर आप किसी के घर गए, चंचल जी, अगर
0: हाँ
1: आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन
0: जी
1: आप घर गए, उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, पता है, बस चाय नहीं पिलाई, तो आपको शिकायत हो
0: भाई
1: जाएगी।
0: कुछ लोग कहते हैं कि एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहाँ चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं।
1: बिल्कुल
0: और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं, जो बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर से हम जोड़ें तो 1 अरब से भी ज़्यादा चाय एक दिन में पी जाती हैं।
1: सच में बहुत ज्यादा,
0: और पौराणिक
1: बहुत
0: कथाएं हैं ना वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा
1: बिल्कुल।
0: कहा जाता है।
1: और चंचल जी, ऐसा है ना कि एक प्याली चाय अगर दोस्तों के साथ हो
0: हाँ
1: तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समा बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो का है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
0: जहां लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले हैं
1: हाँ
0: ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: अब वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं,
0: जी
1: चलो एक बार और हो जाए, एक एक प्याली और हो जाए। तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है,
0: बिल्कुल सही
1: और
0: कहा।
1: एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े, सबका हल
0: जी
1: निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए, या जैसे हमें मिल जाए अगर समय, बात करते करते तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे, तो फाइलें निपट जाती हैं फटाफट।
0: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं, सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भिन्नी भिन्नी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है, बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
0: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे, लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक
1: बिल्कुल
0: गीत भी सुन लेते हैं।

0: हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में।
1: बिल्कुल, पीते ही हमेशा।
0: हाँ, और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और फिर हम बैठकर
1: आज तो
0: चाय
1: बनता है,
0: लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो
1: बिल्कुल।
0: भाई उस चाय को कहते
1: आज
0: ना
1: तो
0: तौहीन हो
1: चाय का
0: जाएगी।
1: सम्मान करना जरूरी है
0: बिल्कुल।
1: भाई।
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है, ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में, साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे। खेत से लेकर कप तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं।
1: जी, और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला क्यों
0: बिल्कुल
1: हो गया आखिर। तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ होगा, ये
0: चाय
1: तो हम कहेंगे।
0: की बात और भारत की बात ना हो, ऐसे कैसे
1: बिल्कुल,
0: होगा।
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे, क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है। दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी।
0: लेकिन हाँ, इसे लेकर
1: लेकिन
0: भारत ने एक बड़ी पहल की। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया, और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया,
1: बिल्कुल,
0: और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया, और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था। ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिख कर पहुँचाई है।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए हैं इस पे।
0: जी
1: और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है। और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है, और
0: जी
1: रहना ही चाहिए था। वो तो भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है।
0: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देश हैं उनमें होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहाँ भी इनका प्रचलन बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है। अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो ज़रूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय
1: बहुत
0: की
1: अच्छी
0: छोटी सी
1: स्वाद,
0: प्याली
1: बिल्कुल,
0: लेकर
1: बहुत स्वादिष्ट मिलती है।
0: और वहाँ घंटों बैठकर बतिया सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं, और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें।
0: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो चला
1: हाँ,
0: है।
1: मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली
1: जी
0: अंदाज
1: हाँ, जब
0: की।
1: कहा था आरती अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया है।
0: हाँ तो अब
1: हाँ।
0: समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए,
0: जी
1: और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज़ नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं। तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी। जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा नवा।
0: क्या बात
1: वाह
0: है।
1: क्या बात
0: और जैसे
1: है।
0: तुम बता रही थी ना बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं स्वाद डाले जाते हैं जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी हरी चाय जिसे कहते हैं उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना पसंद
1: अगर आप
0: करते हैं।
1: चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी।
0: जी
1: बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं। भाई चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है। और हाँ, मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पत्नी के कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना दीवाना दीवाना, मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती
0: चाय
1: है,
0: के
1: कप
0: प्याले भी करवा लिए
1: एक
0: जाते
1: कप
0: हैं।
1: चाय मिल जाने पे।
0: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिस पर लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो। सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
1: ओहो,
0: क्या
1: क्या बात है भाई।
0: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है
1: में।
0: इनका।
1: एक और मैच होता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है, सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
0: तो वही चलिए गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

0: भाई, हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षित हैं जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने आप दोनों बहनों को 2 कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी है उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बनाती है।
0: हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता हैं जो लिखते हैं कि विश्व हमारे घर में, मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ, और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है, और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात है।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन, और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती, और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी, ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं जुड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है, जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत के प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरी चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई, संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जाता है।

0: सकता है, जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और
1: बिल्कुल।
0: बताओ कौन कौन से
1: और बहुत
0: फोबिया
1: से
0: होते हैं?
1: फोबिया होते हैं, जैसे कि किसी को किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है ना,
0: हाँ
1: ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है
0: जी,
1: अनावश्यक तौर पर, तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है, ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का, यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है
1: हाँ
0: उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर, कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जांच के लिए, तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपैनोफोबिया, जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको। और सोशल फोबिया, जैसे कि सोशल, जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको, वो होता है। और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है, वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहाँ फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, या हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया ऐसा, तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहाँ पर जाने से। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो फोबिया कहलाता है।
0: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: जो सामान्य डर से बहुत ज्यादा होता है, किसी चीज, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है, तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: बहुत सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया, कि मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा, ये क्यों ऐसा हो रखा है, फितरों से उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहाँ से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते ही, अंधेरा होते ही लगते रहता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती, और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरे अपने आंखों, आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप आ रहा है उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
0: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी
2: बिल्कुल जाना है शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आँखों की।
2: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा तो वहां से आंखें जल्दी सूखती हैं और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़ें। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
2: बिल्कुल। और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तेज़ धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है तो आप धूप का चश्मा ज़रूर पहनिए।
1: बिल्कुल। और हम सुन लें गाना और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से
1: येलो में
0: इजाजत। हाँ
1: चलिए
0: हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आदि श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओ, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूँ संगीता श्रीवास्तव, लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मौसम बेशक करवटें ले चुका है श्रोताओ, और हमारे श्रोता भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में विविध भारती से आपके रेडियो तक पहुँचते गीत है ना किसी शीतल छाया की तरह। इन्ही गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जो सज रहा है हमारे श्रोताओं की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से और उनके पसंदीदा गीतों से। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला, और ये बजी टेलीफोन की घंटी। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। ध्यान से सुनिए, कहीं ये आपका कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंजनल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: तो विविध भारती में आपकी बात हो रही है, बताइए अपने जयपुर शहर के बारे में कुछ।
1: जी मैडम, बहुत खुशी हो रही है विविध भारती में मेरा कॉल लग गया। तो यहाँ मौसम बढ़िया है मैडम, गर्मी पड़ने लगी। आपके वहाँ बम्बई में कैसा हो रहा है मौसम मैडम?
0: बम्बई का तो मौसम इस समय थोड़ा बहुत गर्म है, वैसे तो

0: मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए, पिंक सिटी कहा जाता है इसे?
1: पिंक सिटी कहा जाता है और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम। यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई।
0: अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है?
1: हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं?
1: जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ, 2011 से मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
0: अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
1: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए, और ये सखी सहेली में खासकर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें सचिव की बात होती है और सकाव की बात होती है, फेसबुक पे कमेंट पड़े जाते हैं मैडम, बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो बताया जाता है मैडम।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
1: जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
0: अच्छा, चावल की तैयारियां हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद? फिर
1: अभी से बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, 1-1.5 महीने बाद बाजरा बोएंगे।
0: अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा सलाटे, और इसमें गाने के बोले धक धक वाला ऐसा कुछ गाना है, वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
0: तो चलिए, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा आंटी सारिया प्रिया से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं
1: जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में है?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में, तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियां नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा।
1: जी।
0: अच्छा, तो आप दसवीं क्लास में चले गए।
1: जी, आपकी कार्यक्रम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ा बचपने से सुन रहे हैं रेडियो को,
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है। लेकिन आप रेडियो सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सखी सहेलियां जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियां होती हैं।
1: हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें आंखों में रोशनी भी जा सकती है।
0: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
1: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
0: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके लिए मैं ही कहेंगे कि आप भी पढ़ाई करें, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा ज्यादा दूर रहिए।
0: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, यहाँ संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
0: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं क्योंकि आप दसवीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: नाम है फिर तेरी कहानी याद आई, काले बोल ने दिल में सनम की सूरत आंखों में आके दे, मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
0: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम बहुत गर्मी है इधर आजकल, तो पक्षी की भी मतलब पता नहीं लग रहा, पक्खा लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया दो पक्खे लगाएंगे वो भी काम पड़ जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, ऐसे घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते हैं मैम कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं काम काज, क्योंकि रेडियो तो ऐसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो काम काज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानों से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, देवल सिद्ध बाबा बालकनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेकर आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम अपनी अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम, यहाँ हमारी ये कि हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी जो हमारे कांगड़ा में, हिमाचल में है, हमारे कांगड़ा की जो धान बनती है फंक्शनों में, शादी वगैरह में।
0: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है जो लोग पहनते हैं वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसमे बादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या।
0: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आपके प्रदेश हिमाचल में हम सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छे हाल है, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक शायरी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: ठंडक पहुँचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं, शीतलता देते हैं।
0: जी जी जी हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफू होता है।
0: अच्छा अच्छा और क्या करती हैं
1: इसके अलावा? तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ, हेलो सहेली में भी, और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, जो मन चाहेगी तो आपने शुरू करा इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर, और घर पे भी रहता है,
0: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम इम्तिहान और गाने के बोल है।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हो आप?
0: हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार कच्छ, खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री।
0: तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है।
0: क्या करते हैं?
1: बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, वही साड़ी बनाने का काम है हमारा।
0: अच्छा, तो ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि समृद्ध कला गुजरात की।
1: जटिल कला है, जटिल कला है, जो तो कोई नहीं कर सकता, सीखने में टाइम लग जाता है। और बारीक धागे से इसे राई की दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में, जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई दुतियान है या कोई टसर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट, तो उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा।
0: अच्छा।
1: मगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना, वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप।
0: लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियां होती हैं या जो इसके शलवार कुर्ते बनते हैं, इनमें रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: क्या है कि सिल्क में तो कलर की गारंटी बिल्कुल नहीं आती, हेवी साड़ी होती भी तो भी नहीं आती, क्योंकि इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना, ड्राई क्लीन भी होती है। मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी, तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं। कॉटन में, कॉटन आता है ना कपड़ा, वो वेट कलर चढ़ता है, तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता।
0: जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है, जो आप बनारसी काम बता रहे हैं, तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है जो आप बता रहे हैं?
1: वो तो आता है, वो तो रेडी आता है ना, वो सफेद कपड़ा है ना, वो तो बनारस से रेडी आता है, वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ, उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे डाइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा, इस तरह से।
0: जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि कादिर जी, ये जो आप बंदेज की साड़ियों का काम करते हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है, या फिर ये सिर्फ आप ही करते हैं?
1: ना, मैं करता हूँ, मेरा वाइफ भी करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं।
0: तो इस काम के साथ साथ विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: ना बिल्कुल सुनते रहते, क्यों नहीं, विविध भारती में आप तो एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ, उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको, मन चाहेगी पत्रों के ऊपर आधारित।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप बताइए कादिर जी, अपनी पसंद का गीत।
1: खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है ना खानदान, उसका ये लता मंगेशकर की आवाज में है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
0: और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: हम भी रमेश साहब बोल रहे हैं बिहार बांका जिला गांव झिकुरिया से।
0: तो बिहार में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी कमलेश जी।
1: हाँ जी, ये तो 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था जी।
0: तो बताइए काम क्या करते हैं कमलेश जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती का काम जो होता है अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हैं बल्कि जो खेतों से अनाज आता है उससे हम सब भी जो है वो पोषित होते हैं, है ना? तो कमलेश जी, ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है खेतों में, यानी कि जो अगली फसल है। देखिए अभी तो आम का मौसम है।
1: हाँ जी, मौसम तो अभी आम का है और खेतों में अभी मूंग लगा हुआ है और सब्जी भी लगा हुआ है।
0: सब्जियां और मूंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आम की खेती है वो इस समय तो पूरी तरह से अच्छी होगी।
1: हाँ जी, अच्छी है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कमलेश जी कि जो खेत हैं, जैसे आपने मूंग की बात करी, तो इसमें जो आजकल खाद इस्तेमाल की जाती है वो क्या आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: खाद एक यूरिया पड़ता है, वो पड़ता है जी।
0: अच्छा अच्छा, कमलेश जी बताइए, फिर खेती का काम करते हैं तो रेडियो कैसे सुनते हैं? मेड़ पे रख के सुनते हैं?
1: रेडियो तो मैम जी पहले चलता था, अब तो हम मोबाइल ऐप पे न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं।
0: तो मोबाइल ऐप तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो है कि सिग्नल आना चाहिए, है ना?
1: हाँ जी, सिग्नल बहुत अच्छा पकड़ता है कहीं से भी, हर जगह, जहाँ भी खेतों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ मोबाइल पास में और न्यूज ऑन ऐप पे चलते रहता है आपका हेलो फरमाइश का कार्यक्रम। पंचायत गीत भी चालू हो चुका है आपका।
0: तो आप कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं विविध भारती के?
1: कार्यक्रम तो हमको हेलो फरमाइश सबसे फेवरेट है, और शाम को जो 7 बजे आता है
0: शाम को
1: सारा कार्यक्रम।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएं अब अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: बेटा फिल्म का गाने का बोले कोयल सितेरी बोले कू कू वाला गाना सुना दीजिए।
0: तो आप लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे
1: नमस्कार
0: हैं?
1: जी, मैं
0: नमस्कार।
1: अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरण पल्ला जी। जय
0: अच्छा,
1: महाराष्ट्र, आम की मुंबई, सुंदर मुंबई। मैं बॉम्बे में रहा हूँ 18 साल जी।
0: मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे?
1: हेल्पर था मैं नेवी, जब ये त्रिशूल और विजय बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बॉम्बे में ही था जी।
0: अच्छा,
1: मैं अभी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फिर अमृतसर आ गया जी। मेरे को हो गए 20-22 साल अमृतसर में जी।
0: अच्छा, तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए।
1: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
0: जी, और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता है।
1: ये आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी। मेरा वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर।
0: तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है।
1: बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर। गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, घूमने लायक जगह है जी।
0: जी,
1: बॉर्डर जो हमारा अटारी है, वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी, झंडा उतरता है।
0: हाँ
1: जी
0: हाँ, तो वो सेना का जो ये कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है।
1: हाँ जी,
0: एक बात
1: लोगों
0: बताइए,
1: पर
0: जो अमृतसर का यानी पंजाब का सुंदर सी परंपरा है सांझा चूल्हा की, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ जी, सांझा चूल्हा, जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा, सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया, अभी तो एक एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ। पहले एक ही घर में 25-25 जी रहते थे, तो तंदूर भी एक चलता था, तो रोटी सारा मोहल्ला बनाता था, तो चूल्हा एक होता था, सारे खानदान की रोटी बन जाती थी, उसको बोलते थे सांझा चूल्हा। ये टीवी सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अमृतसर या पंजाब की कहें तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की परंपरा जो है और वहाँ का खान पान बड़ा ही। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार
1: में? मैं ही सुनता हूँ बहुत। मैं तो ना जी, जब बड़े बड़े रेडियो होते थे ना जी, पनाका गीत माला आता था सैलून से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम है जी, विजय रहमान, मुमताज, तौबा, ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल।
0: तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत,
2: तौबा ये मतवाली चाल।

नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी, पर उससे पहले इस घंटे की खास खबरें न्यूज़ हेडलाइन में अब से कुछ ही पलों बाद।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान ये जानकारी सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग लगने की कई घटनाओं की शुरुआती जांच में असामाजिक तत्व शामिल होना पाए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। इस वर्ष की यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कल भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट इवेंट का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस कार्यक्रम में वन विभाग की 20 बाइक और एक रेस्क्यू ट्रक को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और फैक्ट्री मालिक मुकेश विज को चीन से लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। और प्रदेश में अब तक 12,56,000 से ज़्यादा किसानों से 93,00,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किसानों को 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान हो रहा है, जिसमें 40 रुपये बोनस भी शामिल है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान हमारे जबलपुर केंद्र का है।

0: नमस्कार दोस्तों,
1: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता
0: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रश्मि।
1: और हम आप सभी का युवाओं को प्रेरित करने वाले हमारे खास कार्यक्रम युववाणी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
0: दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसी तारतम्य में आकाशवाणी @90#RJNext कार्यक्रम के अंतर्गत एक तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन विगत दिवस स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जबलपुर में किया गया
1: और इस प्रतियोगिता के विजेता रहे हमारे दोस्त पीयूष चौधरी आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पीयूष, हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारे कार्यक्रम में?
2: बहुत बहुत धन्यवाद अंकित और रश्मि। मैं युवाणी कार्यक्रम को रेगुलरली फॉलो करता हूं और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: वाह पीयूष, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं आपसे आज के दो प्रश्न।
1: दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 वर्ष में किस राज्य में आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है?
0: और आज का दूसरा प्रश्न है, हाका किस देश के मूल निवासियों का पारंपरिक नृत्य है? इसी के साथ आइए शामिल करते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे लिया गया है फिल्म सितारे जमीन पर से और आवाज दी है सिद्धार्थ महादेवन, शंकर महादेवन और दिव्या कुमार ने।

0: दोस्तों, कभी सोचा है भीड़ का हिस्सा बने रहे तो हम क्या पाएंगे? नए रास्तों पर चलने से ही तो पहचाने जाएंगे।
1: जी हाँ दोस्तों, और मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो बड़ी ही गलत बात है।
0: दोस्तों, जब एक बार एक मशहूर पेंटर से पूछा गया कि उनकी सबसे बेहतरीन पेंटिंग कौन सी है, तब उन्होंने एक खाली कैनवस की तरफ इशारा किया और कहा ये, क्योंकि इसमें अभी संभावनाएं अनंत है। वाह अंकिता, कितनी गहरी बात है। दोस्तों, हम और आप भी उस खाली कैनवस की तरह ही तो हैं। ज्यादातर लोग वही पुरानी तस्वीर बनने की कोशिश करते हैं जो सदियों से चली आ रही है, वही 9 to 5 जॉब वाले सेफ रास्ते।
1: पर कुछ लोग होते हैं जो किसी बनी बनाई तस्वीर का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद एक नया मास्टरपीस तैयार करते हैं, और ऐसे ही जुनून का नाम है स्टार्टअप।
0: जी हाँ दोस्तों, जैसे उस पेंटर ने खाली कैनवस में भविष्य देखा, वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर मुश्किलों में मौका देखता है। स्टार्टअप एक नया और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया होता है जो हमारी प्रॉब्लम्स का एक यूनिक सॉल्यूशन देता है। दोस्तों, हमारे बीच से कई लोगों ने वही सदियों पुरानी रैट रेस का हिस्सा बनने के बजाय अपनी रेस खुद डिजाइन करी, और आज दुनिया उन्हें सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह जानती है।
2: सही कहा रश्मि, और इसी बदलाव का समर्थन देने के लिए सरकार स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत फंडिंग और टैक्स बेनिफिट से युवाओं को स्टार्टअप की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। स्टार्टअप इंडिया, इंक्यूबेशन सेंटर्स, मुद्रा लोन और अटल इनोवेशन मिशन जैसे प्रयासों से सपनों को पंख दिए जा रहे हैं।
1: लेकिन दोस्तों, स्टार्टअप रातों रात खड़ा नहीं होता, इसके लिए डेली बेसिस पर कुछ आदतें अपनानी होगी,
0: जैसे ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। हर चीज को क्यों और कैसे के नजरिए से देखें, क्योंकि हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है।
2: और लर्निंग और नेटवर्किंग, नए स्किल्स, डिजिटल टूल्स और मार्केट ट्रेंड को समझें। साथ ही ऐसे लोगों से मिलिए जो आपके विजन को समझे और उसे और बेहतर बनाए।
1: और साथ ही एक्सपेरिमेंट और रेजिलियंस, एक्सपेरिमेंट करें और फेलियर से डरे नहीं, बल्कि उसे एक फीडबैक की तरह लीजिए।
0: दोस्तों, जो चली आ रही है सदियों से, उस लकीर को मिटाकर तो देखो।
1: दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी, बस एक कदम उठाकर तो देखो।
2: क्योंकि किनारे पर खड़ी कश्ती हमेशा महफूज ही रहती है, पर कश्तियाँ किनारों के लिए नहीं, लहरों से लड़ने के लिए बनती है।
0: इसी के साथ आइए शामिल करते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म हिचकी से ये गीत।

0: दोस्तों, कभी कभी इतिहास एक ऐसा दीपक जलाता है जिसकी लौ पीढ़ियों तक रास्ता दिखाती है, और हिंदी साहित्य के आकाश में ऐसे ही एक दीपक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
1: जी हाँ दोस्तों, जिस तरह माली बिखरे हुए पौधों को तराशकर एक सुंदर उपवन बना देता है, वैसे ही हिंदी साहित्य के बगीचे को संवारने वाले शिल्पकार थे आचार्य द्विवेदी।
0: आचार्य द्विवेदी ने भटकती हुई हिंदी भाषा को एक सही दिशा दिखाई और बिखरे हुए शब्दों को विचारों की गंगा में बदल दिया। दोस्तों, आचार्य द्विवेदी का जन्म 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। साधारण परिवार और सीमित संसाधन होने के बावजूद उनकी जिज्ञासा हमेशा से ही असाधारण थी।
1: आचार्य द्विवेदी बचपन में कई बार दूसरों से किताबें उधार लेकर आते थे और रात भर उनकी हाथ से नकल उतारते थे, ताकि किताब लौटाने पर भी वह उसके अंदर का ज्ञान अपने पास सुरक्षित रख सके।
0: उन्होंने हमेशा स्वाध्याय को अपना सबसे बड़ा शिक्षक बनाया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी पर महारत हासिल की। आचार्य द्विवेदी ने अपने करियर की शुरुआत रेलवे विभाग में नौकरी से की, लेकिन उनका असली सफर तब शुरू हुआ जब वे सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, और 1903 से 1920 तक सरस्वती सिर्फ एक पत्रिका नहीं बल्कि हिंदी साहित्य का मार्गदर्शक बन गई।
1: द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैत्री शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे महान साहित्यकार उभरे। उन्हें द्विवेदी युग का प्रवर्तक कहा जाता है, एक ऐसा काल जिसमें हिंदी साहित्य को आधुनिकता और सामाजिक चेतना से जोड़ा।
0: 21 दिसंबर 1938 को आचार्य द्विवेदी का निधन हुआ, लेकिन उनके विचार और उनके शब्द आज भी जीवित हैं, हर उस पंक्ति में जो समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, आचार्य द्विवेदी हमें सिखाते हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद असीम ऊंचाइयां पाई जा सकती हैं अगर हमारे अंदर सीखने की लगन और समाज के प्रति जिम्मेदारी हो। इसी के साथ आइए सुनते हैं फिल्म उरी से शांतनु सुदामे और शाश्वत सचदेव की आवाज में यह गीत।

0: दोस्तों, अभी कुछ देर पहले हमने आपसे स्टार्टअप भविष्य को लेकर बात की, जिसमें हमने जाना किस तरह नए बिजनेस सेटअप करके अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार हर क्षेत्र, हर नई सोच और हर नए प्रयास के विकास की ओर ले जाने का कार्य हमारे भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है।
1: अच्छा, अब किस नए प्रयास की बात कर रही हो तुम अंकिता?
2: रुको पीयूष, मैं बताती हूँ। यहाँ हम बात कर रहे हैं कौशल उन्नयन के बारे में। आज बदलते परिवेश के कारण हम सभी की लाइफस्टाइल में, काम करने के तौर तरीकों में भी समय के साथ साथ कई बदलाव आए हैं।
1: बिल्कुल सही कहा रश्मि। जैसे पहले हाथों से सारे लिखा पढ़ी के काम होते थे, आज टेक्नोलॉजी के चलते कंप्यूटर, मोबाइल फोन के द्वारा हमारे काम और भी आसानी से होने लगे हैं।
0: दोस्तों, कौशल उन्नयन का मतलब ही है अपने काम करने की काबिलियत को और बेहतर बनाना, नई चीजें सीखकर या पुराने काम में सुधार करके खुद को और सक्षम बनाना।
1: इससे युवाओं को रोजगार पाने के और सुनहरे अवसर मिल सकेंगे। साथ ही हर युवा नए स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए एक सही कदम उठाने योग्य बन पाएगा।
2: और दोस्तों, इसलिए इस दिशा में सरकार के द्वारा कई कदम भी उठाए गए हैं, जैसे स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और डिजिटल ऑनलाइन पहल जैसे कई प्रोग्राम्स।
0: और साथियों, इन कार्यक्रम का सबसे ज्यादा फायदा हम युवाओं को ही होगा। घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हमें हमारी स्किल्स को बढ़ाने का मौका जो मिल रहा है, बस जरूरत है इस ओर ध्यान देने की।
2: जी हाँ दोस्तों, और इसलिए हम सभी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने शेड्यूल में से रोज थोड़ा सा समय निकालकर अपनी स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान दीजिए। इसी के साथ आइए शामिल करते हैं हेशम अब्दुल वाहक की आवाज में फिल्म द गर्लफ्रेंड से यह गीत।

0: साथियों, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को जानने का। आज का हमारा पहला प्रश्न था, सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 वर्ष में किस राज्य में आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश के उज्जैन में हर 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। इसमें लगभग 30 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं।
1: और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न था, हाका किस देश के मूल निवासियों का पारंपरिक नृत्य है? इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। दोस्तों, हाका न्यूजीलैंड देश के माओरी समुदाय का पारंपरिक नृत्य है। ये अक्सर युद्ध, उपलब्धियों या मेहमानों के स्वागत के समय किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज के कार्यक्रम की समापन की ओर पहुंच चुके हैं।
0: अगली मुलाकात का वादा करते हुए मैं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता,
1: और मैं आपकी रेडियो दोस्त रश्मि,
2: और मैं आपका रेडियो दोस्त पीयूष
1: आपसे अब इजाजत लेते हैं। हम मिलेंगे एक नए कार्यक्रम

अभी आप सुन रहे थे युवाणी, मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आपसे कुछ ही पलों बाद।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए खामोशी फिल्म का गीत। आवाज़ है किशोर कुमार की, गीतकार गुलजार, संगीतकार हेमंत कुमार।

कटी पतंग। लीजिए आप सुनिए इस फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों से सजाया है आर डी बर्मन ने। स्वर है किशोर कुमार का।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत मुकद्दर का सिकंदर। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार अनजान, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

और लीजिए अब सुनिए नसीब फिल्म का गीत। आवाज़ है डॉक्टर कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:30 पर लोक संगीत में कलाकार हैं खेदू सिंह और साथी। 6:45 पर सुगम संगीत में कलाकार हैं आयुषी चौबे।

शाम 7:21 पर आप सुनेंगे बुंदेली कविता पाठ। कवि हैं श्री दीनदयाल तिवारी वेताल। रात 8 बजे सुर्खियों में 8:15 पर फिल्म संगीत, 8:45 पर समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9 का समय है रात 9 बजे। 9:15 पर सुनिए स्पॉटलाइट। 9:30 पर धारावाहिक हंसना मना है, इसका भाग 2 आप सुनेंगे। आलेख है हेमंत कुलकर्णी का, परिकल्पना विमलकांत येंडे, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर बैजनाथ गौतम।

0: रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे सुभाष दीक्षित का वायलिन पर बजाया राग केदार। तबला संगत है इफ्तखार हुसैन खान की। रात 10:30 पर सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। ये थे हमारे आज के प्रमुख कार्यक्रम और लीजिए आप सुनिए कल यानी शुक्रवार को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। कल सुबह 9 बजे लोकरसधार में कलाकार हैं अनीता यादव। 9:15 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा। 10:20 का समय है सारंगा फिल्म फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। शाम 7:21 पर आप सुनेंगे भेंटवार्ता कृषि जगत में टमाटर बैगन बैगन और मिर्च की खेती। जानकारी देंगे डॉक्टर B.R. पांडे। रात 9:30 पर आपके मैसेज आपके गीत और रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे बसंत तिमोती का वायलिन पर बजाया राग अहिर भैरव। ये थे हमारे आज और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइन।
1: मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल पेट्रोल डीजल प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरी संयंत्र मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरी संयंत्र में लगभग 46 से

0: 47,000 टन एलपीजी का उत्पादन हो रहा है। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह की बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकवाद को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार की रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम योजना के अंतर्गत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का काम त्वरित गति से चल रहा है। अब तक 10,19,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिनमें सर्वाधिक भोपाल शहर वृत्त में 4,38,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि समाधान योजना के तहत 15 मई तक 29,81,000 बिजली उपभोक्ताओं ने सरचार्ज में छूट का लाभ लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 3 नवंबर को समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत की गई थी, जो कि 15 मई तक लागू थी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे है, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग

0: संबंध
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
1: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग NCERT सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग NCERT के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
1: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
1: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग।
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: NCERT के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
1: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
1: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
1: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
1: जी
2: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र

0: महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
1: जी,
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
1: जी हाँ श्रोताओ, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
0: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
1: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
1: श्रोताओ, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
1: जी,
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
1: जी,
0: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
1: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
1: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओ, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
0: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां

0: परियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिल

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम

0: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो। आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ। जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो।

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के

0: ए मन कोथा भाता, हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश, छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
2: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: खरगोश, हिरन और मोर।
2: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते।

0: मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़। इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू।
7: इसे काटो। भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
6: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
4: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
8: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
5: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
6: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
4: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
6: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
5: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
4: वो उसे काटने लगे।
7: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
5: अच्छा ठीक है
6: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
4: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
9: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे? अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?
6: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
4: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि

0: बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
1: अरे वाह अटकू मटकू!
0: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
2: पेड़ हमारे
3: दोस्त हैं।
2: जीवन में हरियाली लाओ,
3: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
4: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे खेदू से और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज की कलाकार हैं आयुषी चौबे। लीजिए सबसे पहले सुनिए इनके स्वर में मीराबाई का ये भजन।

अभी आपने सुना संत सूरदास की रचना, और लीजिए अब सुनिए संत रैदास की रचना, स्वर आयुषी चौबे का।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे आयुषी चौबे को। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब से कुछ ही पलों बाद हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कुवन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में

0: Police are investigating the cause of the accident. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar conducted the computerized draw for selection of yatris for the Kailash Mansarovar Yatra 2026. The 2026 edition of the Yatra will commence in June and conclude in August. External Affairs Ministry said in a statement that a total of 1,000 yatris have been selected through a fair, computer-generated, random, gender-balanced selection process. Benchmark domestic equity indices ended on a negative note after a volatile trade today. The Sensex declined 135 points to close at 75,183, while the Nifty dipped marginally by 4 points to settle at 23,655. And that is the end of this news bulletin.
1: Yakashwani, Madhya Pradesh hai. कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर लौटे, भारत को मिली 40 अरब डॉलर निवेश की सौगात। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार, 3 दिन में 1,34,00,000 सिलेंडर की डिलीवरी। भोपाल में कल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का आगाज, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की कई विभागों की समीक्षा, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर आज दिल्ली लौट आए हैं। यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यह 5 दिवसीय यात्रा भारत के लिए बड़ी कामयाबी लेकर आई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों की 50 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें करीब 40 अरब डॉलर के नए निवेश की प्रतिबद्धताएं मिली हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी वीरभूमि पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि राजीव गांधी का दूरदर्शी नेतृत्व और देश के प्रति समर्पण पार्टी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं और सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,34,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की जा चुकी है।
6: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
5: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में पशुपालन, स्कूल शिक्षा, परिवहन विभाग, जनजातीय कार्य और सहकारिता विभाग की एक एक कर समीक्षा बैठक ली। डॉक्टर यादव ने कृषि, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दिए। वहीं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना शुरू करने के निर्देश दिए गए। इस योजना के पहले चरण में 1,164 मार्गों पर 5,206 बसें चलाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। बोर्ड में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सीआईआई, फिक्की जैसे प्रमुख व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित और फैक्ट्री मालिक मुकेश विज को चीन से लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। बीते 14 मई को देवास के टोककला इलाके में हुए इस भीषण ब्लास्ट में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा गंभीर रूप से झुलस गए थे।

0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जल स्रोत पूजन एवं गंगा कलश यात्रा के पोस्टर का आज विमोचन किया। ये यात्रा 25 मई से प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बताते हुए लोगों से जल स्रोतों की रक्षा में आगे आने की अपील की है।
2: जल संरक्षण को लेकर के जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलने वाला है। ऐसे में गंगा दशमी के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ सभी कुएं, बावड़ी, नहर, तालाब इत्यादि स्थानों पर श्रमदान करते हुए बड़ा अभियान लिया गया है। सभी संस्थाओं को जोड़कर सभी पंचायत, सभी नगरीय निकाय हर स्थान पर जल गंगा संवर्धन का बड़ा काम करने वाले हैं। तो इस सबसे जुड़े हुए अभियान के लिए आम जनता से भी आह्वान करता हूं कि वो सब जुड़े।
0: अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कल भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट इवेंट का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस कार्यक्रम में वन विभाग की 20 बाइक और एक रेस्क्यू ट्रक को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण और बिग कैट संरक्षण पर विचार विमर्श के साथ ही भारत में चीता पुनर्स्थापन अभियान पर विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कंप्यूटर ड्रॉ के जरिए इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 यात्रियों का चयन किया है। ये यात्री जून से अगस्त के बीच लिपुलेख और नाथुला दर्रों के रास्ते 20 जत्थों में रवाना होंगे और हर जत्थे में 50 यात्री होंगे। नई दिल्ली में आज 11वीं ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह की बैठक में भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने आतंकवाद को पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने और आतंकी वित्त पोषण पर अंकुश लगाने की जरूरत पर जोर दिया। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने ई सिगरेट तस्करों पर बड़ा शिकंजा कसा है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में एक साथ छापेमारी कर 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पकड़ी गई हैं, जिनकी कीमत 120 करोड़ रुपये बताई जा रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ये सारा माल चीन से चोरी छिपे मंगवाया गया था। भारत में साल 2019 से ही ई सिगरेट और इस तरह के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स निकोटीन उत्पादों पर पूरी तरह से पाबंदी है। इन दिनों बालाघाट की सुनीता सिहोरे की खूब चर्चा है। उनके घर में 70 तरह के देशी बीजों का अनोखा खजाना है जो उन्होंने खुद जमा किया है। आजीविका मिशन की बीज सखी सुनीता ये बीज किसानों को मुफ्त देती हैं और ये बीज कम पानी, कम खाद में भी अच्छी पैदावार देते हैं। सुनीता जैसी महिलाओं की बदौलत रासायनिक खेती की आंधी में खो चुके देसी बीज एक बार फिर खेतों में लौट रहे हैं। अब पूरे प्रदेश में 454 बीज सखियां और 29 जिलों में 99 बीज बैंक तैयार हो चुके हैं। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। IPL में अब से कुछ ही देर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जबकि चेन्नई अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए जूझ रही है। अब बात करते हैं मौसम की। नौतपा शुरू होने से पहले ही प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। खजुराहो में 47.4 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बन गया है, जबकि राजधानी भोपाल में भी पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी पड़ रहा है। वन विहार नेशनल पार्क में शेर, बाघ और तेंदुओं के लिए कूलर, पर्दे और ग्रीन नेट लगाए गए हैं। वहीं सतना, रीवा और टीकमगढ़ समेत 6 जिलों में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर लोगों को मोबाइल पर चेतावनी संदेश भेजे जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर और अनूपपुर में आज जनगणना 2027 कार्य के प्रचार प्रसार के लिए जनगणना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शहडोल जिले में नाव एवं मोटरबोट में निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने पर रोक के साथ कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। सागर नगर निगम ने CM हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 98.32 वेटेज स्कोर प्राप्त कर प्रदेश की 16 नगर निगमों में प्रथम स्थान हासिल किया है। सीहोर जिला अस्पताल में महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग ने एक कदम सुपोषण की ओर अभियान के तहत बच्चों को पोषण टोकरियां बांटी गईं। झाबुआ खनिज विभाग के अमले ने जिले में सघन जांच अभियान चलाकर अवैध रूप से खनिज ले जा रहे 5 वाहनों को जब्त किया है। छिंदवाड़ा वनवृत्त में लक्ष्य का 50% से अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण पूरा हो चुका है और शिवपुरी जिले के ग्राम सिरसोना और टीला में फार्मर रजिस्ट्री अभियान के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर लौटे। भारत को मिली

$40 अरब निवेश की सौगात। देश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार, 3 दिन में 1,34,00,000 सिलेंडर की डिलीवरी। भोपाल में कल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का आगाज, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की कई विभागों की समीक्षा, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के दिए निर्देश। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडिया वेब पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत।

के अरे मोरे राम। हम बस देवा पहुँचे गाँव की अरे मोरे राम। हमने देखो ऐसो प्रेम के अरे मोरे राम। उठते ही चाहे सबई खोचान के अरे मोरे राम। सबरे ई के बड़े हैं प्रेमी के अरे मोरे राम। ई के बिना है सुनो भुनसारों के अरे मोरे राम। चाय बिना बब्बा मन्नाने के अरे मोरे राम। बिना चाय के कक्का मचले के अरे मोरे राम। बड़े दा को तो

अरे मोरे राम बैसवे के चाय की चाह देखे के अरे मोरे राम चाय खो ओसर में बदलो के अरे मोरे राम सो दुनिया में दूजो अपनो स्थान के अरे मोरे राम बढ़ती चाय की मांग से भैया के अरे मोरे राम चाय से बड़ो विश्व व्यापार के अरे मोरे राम सो ए से दुनिया भर में आज के अरे मोरे राम विश्व चाय दिवस मनाओ जाते के अरे मोरे राम और आज के दिन हम सबरे जने के अरे मोरे राम आतंक विरोधी दिवस मनाऊ के अरे मोरे राम और अपनों हो याद करत के अरे मोरे राम जोन चढ़े आतंकी की भेंट के अरे मोरे राम संगे उन जवानों खो के अरे मोरे राम मिट गए देश की रक्षा के लाने के अरे मोरे राम आतंको नैया कोनो धर्म के अरे मोरे राम अपनी हर मनसा पूरी कर बोके के अरे मोरे राम जोई है उनको असली धर्म के अरे मोरे राम बेजई क्रूर काल होत जे के अरे मोरे

खेल के अरे मोरे राम, एक नहीं क्यों कारण सहज के अरे मोरे राम, बनत है निष्ठुर आतंकी के अरे मोरे राम, इनने सिंदूर उजारे क्यों बहनों के अरे मोरे राम, क्यों माओं के लालन छीन के अरे मोरे राम, सो बिल्कुल जर से इन्हें मिटान के अरे मोरे राम, सुबारे होवे चाहे जवान के अरे मोरे राम, झगड़ा झांसे हिंसा से के अरे मोरे राम, सो इन सब को हमें बचाने के अरे मोरे राम, सुभाई चारे और मिलजुल करके के अरे मोरे राम, और शांति से आतंक मिटाने के अरे मोरे राम, जी से देश दुनिया में रहे प्रेम के अरे मोरे राम, अरे मोरे राम, अरे मोरे राम के अरे मोरे राम।

0: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में। मौसम और
1: जलवायु। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
4: तो भाई जब इन हरो अच्छो परसोत्तम को महीना चल रहा है, परसोत्तम महीना सो सुभुन सारे से लेके दोपहरी में कथा भजन सब कुछ होत रहत। सो हमें अपनी जे बिन्ना जिजी चित्रा देवी तिवारी मिल गई, कल लगी कि भौजी नया हो तो चलो हम सोई चौपाल में एक अच्छो मुंदा सो कन्हैया के नाम भजन सुना दइए। सो हमने कि चलो बिना ने की और पूछ पूछो देखो कितना अच्छो मुंदा उन्हें भजन सुनाओ आपुरन को। और भज्जा हरो बिन्नू हरो, अब हम आए थे आए हैं को भज्जा आए हैं दीनदयाल तिवारी भज्जा। सो बेसोई पर्यावरण प्रदूषण और नशा मुक्ति से लेके साफ सफाई और समृद्धि के स्वागत जैसे क्या रंग आज अपनी रचना में लेके आए हैं। और तो अपन हम जानते हैं, हमने भज्जा से कही कि आ गए हो तो भज्जा अच्छी उमदा

0: सुनाडारो सो भैया देखो भैया आके बैठ गए हैं, सो अब हम कहने के भैया तो फिर हो जाओ शुरू अपनी अच्छी उम्दा रचना हम लेके, सो हमारे सब जने बैठे सुन रहे हैं, सब जने सुने
1: में मदद करती है। यहाँ
2: आकाशवाणी जबलपुर के सभी श्रोता भैया बहनों को दीनदयाल तिवारी बेताल की राम राम। आज पूरा देश प्रदूषण की चपेट में है, इसे बचावे के लाने हम आपकी सेवा में बुंदेली में एक रचना पेश करवे जा रहे हैं।

तीज लाओ जन जागृति लाओ, प्रदूषण से देश बचाओ जन जागृति लाओ। और आज की हवा बहुत ही जहरीली हो रही है, तो जा

भोजन जागृति लाओ, प्रदूषण से देश बचाओ, जन जागृति लाओ। और आगे भैया, जिन नदियों को जो है खोखली कर रहे हैं,

लाओ। और भैया हो, ये वृक्ष जो हैं, ये पेड़े जो हैं, अपनी लाइफ लाइन है, तो इन पेड़न को जो है अपन को बचाने हैं, के हरी रे बिरसा रो जाऊं का।

स्वदेश सशक्त बनाओ, जन जागृति लाओ, प्रदूषण से देश बचाओ, जन जागृति लाओ, जागृति लाओ, जन जागृति लाओ, सुप्रदूषण से देश बचाओ, जन जागृति लाओ। और भैया अपने प्रदूषण बचावे के साथ ही साथ में अपन को सफाई पे भी ध्यान देने, अपनी सफाई करने और घर की भी सफाई करने।

सफाई। और इन सबके संज्ञा भैया एक बात मैं और आप सदुगण से विनती के रूप में कह रहा हूँ कि मदरा पान कभौज न करियो, या दारू जो है देश को सत्यानाश कर रही है तो मदरा

कहियो मदिरा पान कभऊ जने करियो। एक बुंदेली रचना आपके सामने पेश कर रहा हूँ।

0: वाचना। धन्यवाद।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो भज्जा हरो बिन्नू हरो, अब सब जने जांगा तांगा बैठ जाओ, वो कागजा पेन धर लो, कैसे किसा सुनो, आज किसा सुना उन्हें है। सू को प्रश्न तो लिखा ही लग जो, चिठियां डालने हो तो डालियो, ना फिर कछु नन्य प्रश्न तो लिखा ही लो, है कि नहीं। तो हम सोचते हैं बिना देर करें, न हो तो अपनी किसा सुना देवे। तो फिर का करिए भज्जा हरो, किसा शुरू करिए अपनी आवाज। तो हम बस देवा कहें कहानी के, अरे मोरे राम, बात है जा बड़ी पुरानी के, अरे मोरे राम, बड़े बूढ़ों ने गड़ी कहानी के, अरे मोरे राम, हमसे सुन लो उनकी बानी के, अरे मोरे राम, अरे मोरे राम, अरे मोरे राम के, अरे मोरे राम। तो भज्जारो ऐसे ऐसे कोड़गया नाव को एक गांव हतो, उमें मताई बेटा दो रत्ते। अब ऊ की मतारी को नाव तो सुनंदा और बेटा को नाव तो भानु। भानु की मतारी जोन हती ना, वह बड़ी सीधी सादरी हती, और बेटा हल्के से बेजा धीर गंभीर सो हतो। मतलब क्या वे को जो के जोन उम्र बाल बच्चन की खेल वे कूद में की नहीं रहती आए, कि वे तो उधा मनारो करत हैं। ऊ जो सबने करत तो ऊ उम्र में ऊ ऐसी ऐसी जिज्ञासा भरी बात बतकाए करत तो, कि सबो को सुन के हैरान सो रह जावे उनकी बातें, कि बताओ जितनो सो मोड़ा और बतकाए तो के भारी वजनदार के वजनदार होते, अकेले अब ऊ करता ही तो ऐसी सो अब को का कर सकत। सो ऊ की जय बात बतकाए हूँ दूसरे बाल बच्चन से बिल्कुल न्यारो बनाए तो बिल्कुल अलग हतू। तो अब भज्जा रो ऐसे करत करत कछु रोज हो गए और ऊ बड्डो हो गओ। और एक दिन का भाव कि ऊ के जो संग उठवे बैठवे बारे हते जोन सखा सहे मित्रों के, सो उसे कहन लगे के काय भानु, तुम बिना बाप के बेटा हो, नहीं तरफे जा बताओ कि तुम्हारे पिताजी को नाव का है। अब बेचारो मोड़ा ऐसो कछु समझ में नहीं हुआ, उतने कछु ने उन्हें ऐसी सोच गया कि पिताजी को मतारी, वो तो मतारी में भूलो तो उसके उन्हें कबू हमें लगा पूछ लो ना हुज्जे के हमारे पिताजी हैं कि नन्या के का हो सका थे, ऐसो के मन में न आओ होवे। सो अपने सखन की अपने मित्रन की ऐसी बातें सुनकर बड़ा दुखी सो होगा और अपने घर पहुँचो मारे दुख के, और भीतरे जैसे गाओ और कोठा में एक कुदाई चुपचाप शांति से बैठ गाओ। अब देखो जब वो ऐसो बैठो सो मतारी है, मतारी ने अपने बेटा को ऐसो देखो कि मुरझाई सूरत, सो की सुनंदा जो मतारी को नाम तो बतना घबरा सी गई, अकेले बेटा के दुख हो, जब उन्हें जानो, जब उन्हें सबरो बताओ कि देखो ऐसी ऐसी कथे हमसे हमारे संगी सा खेल सखा, सो वे बताओ हम का करिए। तो फिर उन्हें बेटा को बताओ कि देखो बेटा तुम बिल्कुल परेशान हैरान नहीं हो, तुम्हारे पिताजी बड़े अच्छे आदमी हते, वे सबकी चिंता फिक्र करते, अकेले एक दिन अचानक का भाव कि उनके पिताजी हो गए बीमार, सुबह उनके लाने देख भी चले गए। और आज लो फिर बेटा का बताइए भी आई नन्या, जा तो उनने हमसे कही थी जात जात बीरा एक बात हमसे, के कहने लगे हमने कही कि कछु, अब हम उस समय की कहा तो भज्जारो तुम जानते ही हो, बेलू बाई बिन्नू हरें ज़्यादा कछु बात बतकाए और प्रश्नोत्तर नहीं करती हैं आदमन से, सो बेसी बेचारी बस इधरी रही, सू ने भी नहीं करी, अकेले जात जात उनके पति जोन भी हत

उनने जा कही थी कि मैं राजभवन का गोपाल हूं और नगर को श्वेत भवन जोन है वह हमावा है और ऊ में लगे जोन भी सोने के कंगूर आसमान से लगे हैं जोन भी आसमान से बातें करत हैं। अरे जब जी सही भज्जहरो ऊने सुनंदा सी ऐसी बात अपनी मतारी से सुनी सोई ऊ की सूरत तो वहाँ घर में अचानक चमक सी आ गई और ऊ उठ के ठाण हो गया और ऊने अपनी मताई से जाई कही कि माई देखो सुनो हमारे पिताजी कोनू साधारण आदमी नोई बे कोनू राज्य की अच्छी राज आए सो अब बिना देरी करें झट्टी जल्दी जल्दी करो और अपनों जरूरत को सामान अपनों बांधो और चलो अपन ने कर चलिए उन्होंने ढूंढ भी कहूँ ने कहूँ भी मिले हैं। सो बेचारी सुनंदना बेटा की खुशी के सामने बिना कछु कहें सामान बांधो और अपने पति हों ढूंढ लाने ने कर गई बेटा के संगे। अब भज्जहरो कछुरो चला चला दोई मतारी बेटा राजमहल के पास पहुँचाई गई पता करत करत और एक गांव हतो तई राजमहल के लेंगा नंदीग्राम उते पहुँचे और तो इन्हें एक धर्मशाला में अपनो सामान समय मतलब गुजारो और अपनो सामान अमन धर के उतने रन लगे। अब बेटा अपनी माई से कहने लगो कि माई तुम चिंता न करियो एक दिना बे राजा खुदा यहाँ हैं पूरे मान सम्मान से और अपन लुआ के जे हैं तुम बिल्कुल बस शांति भर पकने रह जो सुबह कहने लगी ठीक है बेटा जैसी तुम कहो। अब दूसरे दिन उमदा तजार नजार होके अच्छो भानु नंदी गांव के भीतर की था हिले वे पहुँचो गांव की कहते कैसो माहौल है कैसे थे के आदमी है का सोचा थे सो इतनी से उन्हें सोची कि राजा लो अपन पहुँचे उतनी से जुगाड़ बने भी राजा लो पहुँचबे को। अब जे को जैसे ही भानु गांव के भीतर पहुँचो सो वह देखबे के मतलब कैसो का है कि प्रजा कैसी है सुने देखो कि प्रजा तो कि बड़ी संपन्न है और अच्छी सब प्रसन्न है अकेले फिर भी सबरे गांव में एक सन्नाटो सो हतो और तना दुखी परेशान से हते सबरे। सो उन्हें जब देखो कि गांव में तो चौपाल लगी और मुखिया बड़ो परेशान सो लग रहा सो जब भज्जहरो भानु को मुखिया से पता चलो कि राजा ने एक अद्भुत सो प्रश्न करो है और आदेश जो दे दो कि जे को ऊ जवाब दे है हमारे प्रश्न को तो ऊ मतलब हम कछु पद दे हैं और जो को नहीं दे पाओ तो कठोर दंड मिले सबको। सो मुखिया ने भानु हो जब राजा की बात बताई कि राजा को के वो है भज्जा कि तुम अपने गांव के मीठे कुआं हो जब उन्हें जा पूछी भानु ने कि प्रश्न का करो राजा ने सो कहने लगो राजा कह रहा है कि तुम्हारे गांव को जो मीठे पानी को कुआं है वो पानी से तो कुआं उठा के हमारे राज दरबार में लेके आओ। मुखिया के बातें सुन के भज्जहरो भानु तना हंसन लगो और कहने लगो कि उमें कौन सी बड़ी बात है बता। भानु की ऐसी बात सुन के मुखिया ने पहलो तो तना नेचे से उपालो भानु देखो कि देख तो जो इतना से तो मोड़ा है जो ऐसी बात कर रहा हो कि उमें कौन सी बड़ी बात है मतलब यूँ प्रश्न ऐसे पता हो को उत्तर। सो भानु ने मुखिया से कही कि कछु गांव वालों ने तुम एक काम करो हम जो उपाय बता रहे ऊ करो राजदरबार में पहुँचाओ कछु जनन हो दो चार जनन को और उते पहुँचा के राजा से कज्जू राजदरबार में कि हम आओ कुआ तनक शर्मिलो सो है और राजदरबार की चका सोन से तनक घबरा रहा है सो राजा साहब आपने हो तो अपने ते के एक कुआ हो हमारे संगे पहुँचा दो सो ऊ के संगे हो सकत हम आओ कुआ राजदरबार लो आ जाबे। अब भज्जहरो राजा की तो बुद्धि घूम गई ऊ समझ में आ गओ के होय न होय ई गांव की बुद्धि के पीछे गांव वालन की कोनू न कोनू तो तगड़ो दिमाग वारो है। फिर राजा सबको ध्यान भटका भी कहने लगो कि अरे बड़े प्रसन्न हैं हम तो कि हमारे राज्य में इतनी बड़े बुद्धिमान सोई रहते हैं अब अपनी बात हो तो कैसू समान नहीं थी राजा को। अब एक दिन राजा को फिर गांव में खबर पहुंचाई राजा ने सोचा दुनिया के कैसे बुद्धिमान को पता चले तो फिर खबर पहुंचाई कि हमारे मतलब राज दरबार में एक मुर्गा है और मुर्गा को दूसरे मुर्गा के बिना अच्छो लड़ाकू बनाऊने हैं। अब गांव बारे फिर मुखिया के लगा गए फिर परेशान सबरे मुखिया ने फिर भानु हो बुलाओ सुबह सबरी बातें सुनने के बाद भानु कहने लगो कि इमें कौन सी बड़ी बात है भज्जा पता मुखिया हम बताएं दे तुम चिंता न करो। भानु ने मुखिया से कही कि एक आईना बुलवाओ और ऊ के सामू मुर्गा हो ठाणो करो अपने आप ऐना हो देख के दूसरे मुर्गा समझ के ऊ रात दिना लड़ है ऊ मुर्गा से और ऐसे ही लड़त रहत ऊ देखो अच्छो पक्कू लड़ाकू बन जाए। भज्जहरो सांचों में भानु की सूझ से ऊ मुर्गा लड़ाई के सबरे दाँव पे जानन लगो। अब भज्जहरो मुर्गा जैसे दरबार में पहुँचो और पेश करूँगा जब जैसे उसके सामने राजा ने एक अपना असली लड़ाकू मुर्गा उसके सामने लाओ सो ऊ मुर्गा हो देखता ही से ऊ गाँव वालन की मुर्गा ने राजा की मुर्गा हो तीन दो तीन अच्छी पटकनी मारी उचित कर दऊ हो। अब तो अपनी मुर्गा की हालत देख के राजा समझ गओ कि पूरे गाँव वालन के बीच में एक पक्के में कोनू ज्ञानी तो है। सो भज्जहरो ऐसे करके जो सब भाव फिर राजा ने सोची कि ज्ञानी हो सामने कैसे लाओ जाओ सो फिर एक दिन फिर राजा ने एक खबर पहुँचाई कि हमने राजा ने अपनी एक अंगूठी हीरा की कुगा में गाँव राजदरबार की अपने महल के जनसू का कुआ हाथ में एक अंगूठी फेंकी अपनी हीरा की मजबूत सी अच्छी मांगी अंगूठी और कहने लगे सबरे गांव में हल्ला मचवा दो राज्य में के जो को बिना में उतरे कुगा में हमारी अंगूठी निकाल दे तो हम उनको अच्छो अपनों को पद दे हैं। सुबह जैसी राजा हूँ जो पता चली सुबह जहरो फिर मुखिया के संगे भानूगा भानु कहने लगे चिंता न करो जो तो बहुत सरल उपाय है को हम तो कर ले हैं। सो जैसे ही अब राजा भी चाहते कि मुख्य ज्ञानी जो है उनको आए उनको सामना हमें करने हैं क्या

जो भी चाहत तो कि हमें क्या स्वीकार के राजा के सामने जाने ताकि हमारे पिताजी आ जे इकी बात सामने आ जावे क्या स्वीकार के सो भी उतायल हुआ तो मिल भी पहुँचे दो जने राजा और वो लड़का कुआ गिलेगा वो कह लो राजा साहब हमारे एक उपाय भर हमें हमारी जुन चीज हमें जान ही अंगूठी उन्हें कार्य उत्तर भर उपाय कर जज्जो हम अंगूठी आपको आपके हाथ में दे हैं बिना उतरे सो कहने लगे ठीक है। कहने लगे एक काम करो हमें गज्जा को गोबर मंगवाओ सो कहे ठीक है। सो राजा ने गज्जा को गोबर मंगवाओ भानु ने गोबर को अच्छी सूद मिला के अंगूठी के ऊपर पटको सो अंगूठी में चिपक गई। फिर कहने लगो राजा साहब कुआ में आगे लगवा दो सो राजा ने कही ठीक है सो मैं आगे लगवा दी। अब आगे लगवा दी सो पूरा भर के और वो गोबर सूख के कंडा बन गाओ। अब वो कहने लगो कि राजा साहब अभी मैं कुआ में पूरा फुल पानी भरवा दो सो कही हाओ भज्जा हम भरवा दे भज्जा रहो। राजा ने पूरा कुआ हो भरवा दो और जैसे ही पानी भरो सोई भज्जा वो कंडा सहित वह अंगूठी ऊपरे आ गई। अब जैसे ही वह ऊपरे वो कंडा उतरानो सो बले जुगत से उन्हें भानु ने हरेंग के कंडा हो अपने हाथन में ले लो और जैसे हाथन में लो और दो टूका उके करी सोई बा चमचमात हीरा की अंगूठी सामने राजा के। राजा समझ गओ अरे जो तो बड़ा होशियार है जो जय हो गया नहीं उते को। सो राजा कहने लगे का बेटा तुम कुआओ और पहले तो राजा ने जब पूछी कि तुम हमारे संगे चलो रथ से रथ पे सवार होकर राजमहल तई पूछे हम सब तुमसे कैसे उन्हें जा कही थी कि हम ऊँचो पद दे हैं जो कुजा अंगूठी ने कार दे सो पद तो भी मिलने तो और जो भी पता चले तो आज के जो कुआ है। सो जैसे ही राजा उतर ले गए अपने राज दरबार में उन्हें कही के बेटा तुम जा मतलब कुआओ तुम्हारे पिताजी कुआ है तुम कौन के लड़का हो सो उन्हें सब बताओ कि अपनी मतारी को नाम बताओ कि हाओ हमारी मतारी है और हम दो ही जाने मताई बेटा है और हम अपने ढूंढा ढूंढा था अपने पिताजी हुआ उसके लिए कुआ तो पिताजी के लिए इतना तो नहीं पता अकेले ने जा कही थी हमारी मतारी जात जात आखिरी बेरा के जो न हम आओ मतलब अप जो जा कही थी कि हम राजमहल के गोपालिया और हमारे नगर के श्वेत भवन में जो आसमान छुए बारे सोने के कंगूर लगे हैं वे आसमान से बातें कराते हैं। सो राजाओं को दिमाग घूमो को माँ तो ठनकू कहने लगो अरे जा तो हूँ पुरानी काशा हूँ खबर आ गई थी कह लगी अरे जो तो हम ही ने कही थी और फिर वो लड़का हूँ देख के एकदम रह गया। वो फिर कह लगो का बेटा तुम्हारी मताई को का नाम कही सुनंदा अरे कहने लगी तुम तो हमारे मोड़ा और मारे खुशी के खूब दुखी भाव और खुशी भी भाई कि हमारा मोड़ा मिल गया और हमारी पत्नी मिल गई। सो राजा ने ऊखो अपनी छाती से लगाओ और कहने लगे कि बेटा तुम हमारे बेटा और हम तुम्हारे पिताजी आए। वो कह ले जहाँ तुम्हारी मतारी रुकी हो चलो तुम होते हम तुम्हारी मतारी को संगे लवा के लाए पूरे मान सम्मान से राजमहल में हो तुम्हें तई रही हो हमारे संगे कहाँ को पद तुम तो पूरे राजमहल के तुम हकदार हो। सो ऐसे करके भैया रो जब राजा खो और उनके परिवार खो सामने गाँव वाले ने देखो से बड़ी खुशी भाई कि देखो जे सब एक हो गए। तो फिर जब राजा सुनंदा खो मिलवे देखवे पूरे राज्य में जैसी खुशियाँ छा गई और राजा हो भी जो पता चल गो के देखो बेटा हमा हुआ है सो हम तो राजा हते सो हम तो शेर हते अकेले हमा बेटा भी सवा शेर निकलो। सो ऐसी जा कहानी तो भैया हर बिन्नू हर किस्सा हती सो जा पूरी भाई काहे राजा को बेटा मिल गया पत्नी मिल गई। अब ई किस्सा में एक प्रश्न बन रहा है कि ई को उत्तर आप और रखो 15 दिना के भीतर चिट्ठिया लिख के पहुँचाओ ने। सो हम प्रश्न आपको बताए देते हैं कि राजा ने कौन सी मतलब राजा ने मतलब का कही थी अंगूठी के लाने कि जब अंगूठी हमारी कैसे निकार है बिना मतलब उन्हें जा कही थी कि हमारी अंगूठी को निकार है। सो अब जो प्रश्न को उत्तर तुम उन्हें अंगूठी सुनी हुई कि कौन ने निकारो है सो ई को उत्तर तुम उन्हें भज्जा हो 15 दिना के भीतर पहुँचा उन्हें है और पहुँचा भी लाने पता हम आप और उन्हें बताए देते हैं कि पता है हमाओ कार्यक्रम कृषि जगत बसदेवा द्वारा केंद्र उपनिदेशक कटंगा आकाशवाणी जबलपुर मध्य प्रदेश और पोस्ट बॉक्स नंबर है 14 और पिन कोड है को भज्जहारो 4800001। तो भज्जहारो यही पता पर प्रश्न को उत्तर चिट्ठिया डाल के पहुँचा दीजिए कि राजा ने कुआ में का फेंको तो जा राजा ने जो मतलब जो है प्रश्न आज के हमारी किस्सा को कि राजा ने कुआ में का फेंको तो सो इको तरा पर उन्हों 15 दिना के भीतर डार के चिट्ठिया पहुँचा उन्हें हैं और अब हरे हरे हो रहा हमारो टेम। सो हम बस देवा चल दाए रे के अरे मुरे राम और सबरे भैया बिन्नु हरन खो के अरे मुरे राम जान की भौज की हाथ जोड़ के राम राम के अरे मुरे राम और जय जवान जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल से सुर्खियों में।

0: ग्रामलक्ष्मी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुर्खियों में के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची प्रिया। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की 5 देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा और उसके प्रमुख निष्कर्षों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 20 मई तक 5 देशों की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा के प्रत्येक चरण की विस्तृत कवरेज आकाशवाणी के संवाददाताओं ने की। कार्यक्रम में हम उनकी विशेष रिपोर्ट भी आपको सुनाएंगे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली वापस लौटे। 5 देशों की इस यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात से की। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान की ओर से यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित तथा निर्बाध परिवहन के महत्व पर भी जोर दिया। दुबई में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता विनोद कुमार ने इस यात्रा को संयुक्त अरब अमीरात से कवर भी किया। आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
2: इस दौरे में कई महत्वपूर्ण समझौता पर साइन किया गया। एनर्जी के मोर्चे पर इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई का हिस्सा बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल्स तक पहुंचा जाएगा। यह इंडिया की एनर्जी सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम है। साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अडनोक के बीच एक लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई अरेंजमेंट भी संपन्न हुआ, जो दोनों देशों की एनर्जी साझेदारी को और मजबूत करता है। डिफेंस कॉरपोरेशन के क्षेत्र में भी एक बड़ी पेश रकम हुई। दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क साइन किया, जिसमें इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस एक्सचेंज शामिल है। ये वो एरियाज हैं जो आज के दौर में दोनों देशों के लिए तेजी से स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बनता जा रहा है। निवेश के मोर्चे पर यूएई ने इंडिया में 5 अरब US डॉलर्स की कमिटमेंट का ऐलान किया। 3 अरब डॉलर्स इमरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक से आरबीएल बैंक में आएंगे। दोनों देशों ने गुजरात की वडिनार में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने का भी एग्रीमेंट किया और साथ ही मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है। ये दोनों कदम इंडिया में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे और देश की इंडस्ट्रियल सामर्थ्य को भी नए ऊंचाइयां देंगे। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दूसरे चरण में नेदरलैंड्स पहुंचे। ये उनकी नेदरलैंड की दूसरी यात्रा थी। नेदरलैंड्स यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग को लेकर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत दोनों कंपनियां गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र के विकास में साथ मिलकर काम करेंगी। इस यात्रा के दौरान कई अन्य अहम समझौते और घोषणाएं भी हुई, जिनके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इन उपलब्धियों पर विस्तार से जानकारी के लिए आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता सुश्रुत शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट।
3: व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा और यूरोप में सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वर्ष 2024-25 में दोनों देशों का व्यापार 27.8 अरब डॉलर का रहा। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है। हाल में संपन्न भारत यूरोप मुक्त व्यापार

0: समझौते के बाद इससे व्यापक भारत यूरोपीय संघ संबंधों में भी मजबूती आने की संभावना है। नीदरलैंड्स में यूरोप की एक बड़ी भारतीय मूल की आबादी रहती है। यहाँ 90,000 से अधिक NRI, PIO और 2,00,000 से अधिक सूरीनामी हिंदुस्तानी हैं, जो डच समाज में पूरी तरह से एकीकृत हैं। प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रवासी भारत नीदरलैंड साझेदारी का जीवंत सेतु हैं। सूरीनामी हिंदुस्तानी समुदाय के लिए OCI कार्ड की पात्रता 4थी पीढ़ी से बढ़ाकर 6ठी पीढ़ी तक करने के निर्णय का प्रवासी समुदाय ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। नीदरलैंड्स यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने अफसली डाइक बांध का दौरा किया। यह दौरा कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड तकनीकी सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। अफसलेट डाइक के 90 से अधिक वर्षों के अनुभव का लाभ उठाते हुए नीदरलैंड्स इस परियोजना को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अफसलाइट डाइक 32 किलोमीटर लंबा समुद्री बांध है, जिसने डच जल रक्षा तथा भूमि सुधार को नई परिभाषा दी है। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खम्बात की खाड़ी पर लगभग 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा। ये नर्मदा, साबरमती, माही और ढाढ़र जैसी प्रमुख नदियों के मीठे पानी को रोकेगा और एक विशाल तटीय जलाशय का निर्माण करेगा। ये परियोजना कृषि और औद्योगिक विकास के लिए बंजर भूमि के विशाल क्षेत्रों का सुधार करेगी। इस यात्रा के परिणामों को 17 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियों के तौर पर देखा जा सकता है। इनमें शामिल हैं स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को गति देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर एक संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रूपरेखा, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए दुर्लभ खनिज सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना के माध्यम से जल प्रबंधन पर डच सहयोग, कृषि और कौशल विकास के अंतर्गत त्रिपुरा में पुष्प कृषि और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच उत्कृष्टता केंद्र, शिक्षा और अनुसंधान के लिए नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालयों के बीच समझौता ज्ञापन और स्वास्थ्य तथा सीमा शुल्क जैसे अन्य क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना है। नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्रोताओं, नीदरलैंड्स की यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मई को स्वीडन पहुंचे। प्रधानमंत्री की ये दूसरी स्वीडन यात्रा भारत स्वीडन संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुँचाया। श्रोताओं, इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। ये विदेशी शासनाध्यक्षों को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है, जो दोनों देशों के बीच गहरे लोकतांत्रिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है।
2: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है, जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
1: आकाशवाणी की संवाददाता साक्षी सिंह प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने के लिए स्वीडन में थी। आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
3: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए एक संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी ये यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। दोनों देशों ने संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0 की शुरुआत की और AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: स्वीडन की यात्रा के बाद प्रधान

0: 18 मई को नॉर्वे पहुंचे, जहां उन्होंने ओस्लो स्थित रॉयल पैलेस में नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम से मुलाकात की और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इंडिया नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। श्रोताओं, नॉर्वे की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की जनता और वहां के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि भारत और नॉर्वे के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों और दोनों देशों की जनता के बीच आपसी विश्वास तथा स्नेह का सम्मान है। आइए सुनते हैं श्रोताओं, आकाशवाणी संवाददाता संगीता गोलपोड़े की विशेष रिपोर्ट, जो इस यात्रा को कवर करने के लिए नॉर्वे में थी।
1: ओस्लो में आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ने भारत नॉर्डिक संबंधों को एक रणनीतिक आयाम प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ ओस्लो में आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में भारत नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत करने का निर्णय लिया गया। स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी में भारत की विशाल क्षमता और नॉर्डिक देशों की विशेषज्ञता को साथ लाना इसका उद्देश्य है। नॉर्डिक ब्लॉक के देश हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और डिफेंस के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञता रखते हैं। शिखर सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य की विशेषज्ञता के अनुसार सहयोग करने पर चर्चा की गई। नेताओं ने भारत के सागरमाला और महासागर कार्यक्रमों के माध्यम से सस्टेनेबल शिपिंग पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत और नॉर्डिक देशों ने हाल ही में लागू हुए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के मद्देनजर आर्थिक सहयोग को और गहरा करने का निर्णय लिया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वे वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक तथा तकनीकी परिवर्तन के दौर में मिल रहे हैं। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ निखिल कुमार।
0: 5 देशों की इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 20 मई को इटली पहुंचे, जहां उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ औपचारिक वार्ता की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को एक नए और उच्च स्तर पर ले जाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को नई गति देने का संकल्प लिया और वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य दोहराया। सेमीकंडक्टर्स, स्वच्छ ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, फार्मा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। विज्ञान, नवाचार और एआई के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में इनोवेटिव इंडिया नामक एक नए नवाचार केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की गई। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे भविष्य के क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों की आवाजाही बढ़ाने, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और वर्ष 2027 को भारत इटली संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने पर भी सहमति व्यक्त की।
2: आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कर प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा भारत और नॉर्डिक देशों के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने और यूएई के साथ हमारे संबंध को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।

0: नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: सुर्खियों में हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत रोटी कपड़ा और मकान। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की। गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

श्रोताओं, लीजिए सुनिए एक सूचना। क्या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसने अपनी असाधारण प्रतिभा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है? भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लेकर आया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। ये पुरस्कार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग बच्चों की छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन अवसर है। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। देर न करें, आज ही अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत गुमराह। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। स्वर है महेंद्र कपूर का, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि।

अनुरोध फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार

0: के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में

असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र।

0: इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशान के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजर्सफील्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket, match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology, innovation, high precision, defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interest. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and market opportunity.
7: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you. And in some sense, these are two economies which totally complement each other.
6: Highlighting the role of MSMEs in strengthening global supply chains, Mr. Goyal said that the government has initiated coordinated efforts to support technology upgradation and skill development for MSMEs. The minister said that the government is also adopting an area-based approach to industrial development through the Bhavya scheme aimed at creating 100 new industrial parks across the country. Mr. Goyal said that the country's GDP growth forecast was upgraded from 6.4% to 6.5% despite challenges such as the Ukraine conflict and the West Asia crisis. He said this reflects country's capability, decisive leadership and growing confidence in engaging with the world as a reliable and favoured investment destination. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that India has presented a new model to the world by increasing agricultural production, strengthening food security and bringing positive changes in the lives of millions of farmers. Expressing happiness over the conferment of Food and Agriculture Organization FAO Agricola Medal to Prime Minister Narendra Modi in Rome, Mr. Chauhan said that this honour is a symbol of the growing prestige of New India. He said the world looks upon India's policies, leadership and humanitarian vision with respect. He said that this award is a living testament to the country's hard-working farmers.
8: Yesterday, the United Nations Food and Agriculture Organization, FAO, honored the Prime Minister with the Agricola Medal. This has filled every Indian with the pride and raised the nation's stature. The FAO has recognized Prime Minister Modi's efforts towards eliminating hunger, reducing poverty, ensuring food security, and increasing productivity in the agriculture sector. These are truly unprecedented and remarkable achievements.
6: Railway Minister Ashwini Vaishnav today held a high-level security review meeting in New Delhi with field officers. During the meeting, it was noted that preliminary investigations into several recent fire incidents in trains have revealed the involvement of anti-social elements. The ministry said that such incidents have been taken up seriously and the Railway Protection Force is actively probing them. The discussions during the

जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है धारावाहिक हंसना मना है। इसका भाग दो आलेख है हेमंत कुलकर्णी का। परिकल्पना विमलकांत येंडे, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर बैजनाथ गौतम। लीजिए सुनिए धारावाहिक हंसना मना है।

0: حسنا مناهي حسنا مناهي حسنا مناهي.
1: प्रोग्राम हंसना मना है की इस नई कड़ी के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। श्रोताओं, आज की इस नई कड़ी में आप सुनेंगे हास्य कलाकार कुलकर्णी बंधुओं की रंगारंग प्रस्तुति, मगर इनके साथ साथ उन कलाकारों को भी हम आपको सुनवाएंगे जिन्हें पिछले कई सप्ताहों से आप लगातार सुन रहे हैं। सुनिए, मगर हंसने पर पाबंदी है, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है हंसना मना है। और मजे की बात यह है कि आपको हंसाने के लिए आ रहे हैं कुलकर्णी बंधु, यानी हेमंत और दत्तात्रेय कुलकर्णी।
2: अरे राम राम भाई,
3: राम राम,
2: राम राम, जय राम जी की
3: जय।
2: हम आ गए।
3: हाँ, हमने देख लिया ना आपको।
2: हाँ,
3: देख लिया
2: नहीं, एक तो कहा है कि बहुत दिन से इच्छा रही ना कि तुमसे मिलना भी है।
3: हाँ, हमसे मिलने की इच्छा रही।
2: हाँ, हमने खबर भी भिजवाई थी बीच में।
3: हाँ, मालूम, हमें चार पांच बार खबर मिली।
2: खबर मिली?
3: हाँ, मिली थी ना, खबर मिली थी।
2: तो मिली थी तो यार, कम से कम ये तो व्यवहार की चीजें हैं।
3: काय की
2: व्यवहार कहाँ होता
3: है? और
2: भाई, मान लो हमने कोई बात कही।
3: हाँ,
2: है नहीं, हमारे कोई व्यक्ति ने आके हमारी खबर तुम्हें दी।
3: हाँ,
2: तो तुम्हें भी चाहिए कि हाँ भैया, हमें खबर मिल गई।
3: हाँ, हाँ,
2: अच्छो लगो।
3: हाँ,
2: आप आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात, ऐसे कछु बोलने चाहिए ना तुम्हें।
3: वही तो, मगर अब हम क्या बता तुमको कि हमने जो सोचा रहा।
2: अच्छा।
3: हाँ, हाँ, तो मगर हम टाइम नहीं मिला हमको दरअसल में, और कोई बात नहीं।
2: अच्छा अच्छा, हो भाई, ऐसो है, काम धाम लगे रहे थे।
3: काम धाम?
2: हाँ, बिल्कुल सही। पर हमें एक बात उम्दा लगी।
3: हाँ?
2: मतलब हमारे मन में जो बात उठी।
3: हाँ?
2: वह कोई गलत नहीं है। अब देखो, जैसे हमने कही कि नहीं, पर तुम्हें सोचने तो चाहिए, और तुमने अभी फौरन कह दी।
3: हाँ?
2: नहीं, सोची तो रही हमने,
3: और क्यों ना।
2: हाँ, बस चलो, हमें यही में तसल्ली है।
3: अरे, तसल्ली मतलब हम झूठ बोल रहे?
2: नहीं नहीं
3: नहीं, हम झूठ बोल रहे।
2: अरे,
3: जो मतलब है
2: सर को।

0: क्या रहो भैया?
1: नहीं तुम्हारा देखो, तुम्हारे क्या का मतलब क्या भाव?
0: क्या भाव?
1: अब तुम कह रहे कि भाई तुम्हारे मन में भी जो बात उठी तुमने सोची।
0: हाँ?
1: मतलब हमने हमने कहा सोची नहीं, ऐसा तुम्हें लग रहा?
0: नहीं नहीं मतलब, अरे तुम नहीं समझे।
1: हाँ?
0: हम आओ।
1: हाँ?
0: कोई भी व्यक्ति आओ।
1: हाँ?
0: तुम्हें खबर दे दे कि भैया ने आपको जयराम जी की बोली है, भैया आपको याद कर रहे थे।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: भैया बोले कि देखो आगे पीछे जब बन जाए हम आएंगे।
1: हाँ।
0: ये खबर दी? नहीं।
1: हाँ जी ना,
0: ये तो हमने व्यावहारिकता हो गई।
1: हाँ।
0: मतलब हमने करके दिखाओ।
1: हाँ।
0: कोई व्यक्ति आओ तो खबर देगा हो।
1: हाँ, देगा
0: है नहीं।
1: हाँ, फिर हमें क्या करने लाओ
0: तुम्हें? हाँ, वही हम पूछ रहे तुमसे।
1: अच्छा।
0: तुम हमें क्या पूछ रहे?
1: हाँ।
0: हम खुद ही तुमसे जानना चाह रहे हैं।
1: हाँ।
0: कि तुम्हारा क्या कर्तव्य रहो?
1: क्या रहो बताओ ना।
0: अबे तुम्हें भी आने चाहिए।
1: हाँ।
0: तुम्हें भी खबर देने चाहिए।
1: अरे हमें टाइम नहीं मिलो भाई, दवाई तो हम बोल रहे हैं तुम्हें।
0: अच्छा अच्छा, टाइम नहीं, टाइम नहीं मिलो
1: हमें, टाइम नहीं मिलो।
0: अच्छा अच्छा। हाँ।
1: अब तुम बोल रहे कि तुम्हें खबर मिल गई थी तो तुमने हमको काय नहीं बताओ।
0: हाँ।
1: अरे जे नहीं समझ रहे तुम, हमने तो जे सोची कि भाई तुमने उनके हाथ खबर भेजी।
0: हाँ।
1: हमको खबर मिल गई।
0: हाँ, ठीक।
1: अब आदमी जब वो लौट के गाओ उन्हें से तुमको बताओ हुए ना कि हाँ हमने आपकी खबर उनको बता दी।
0: अरे भाई वो
1: खत्म
0: मिलो।
1: बात
0: अरे का खत्म बात, तुम समझ ही नहीं रहे बात को।
1: अच्छा। हाँ।
0: वो आदमी अगर लौट के हमें मिलो हो तो
1: है
0: तो हमें खबर मिलती ना।
1: अरे तो अब ये तुम्हारी गलती है ना, अब तुम्हारी गलती के ला रहे हम कछु करे।
0: अच्छा,
1: अब ये तुम्हारी गलती नहीं है। अब तुमने ऐसे आदमी को काय को बताई जो लौट के तुम्हारे पास नहीं आओ।
0: ये देखो,
1: अब बताओ,
0: देखो जरा बात सुनो इनकी तरीका, देखो जरा बात कर। इनकी कोई गलती नहीं है।
1: हमारी क्या गलती है?
0: खबर नहीं भेजो भाई, इनकी कोई गलती नहीं है।
1: अरे हमें टाइम नहीं मिलो,
0: जो आदमी आके इनको खबर देगा वो ही की गलती है।
1: अरे हमें टाइम नहीं मिलो भाई, तुम हंस के मजाक न उड़ाओ। हम
0: टाइम नहीं है, टाइम नहीं है,
1: टाइम नहीं मिल पाओ।
0: अरे टाइम नहीं मिल पाओ? अच्छा मतलब काम रहेगा?
1: वैसे कोई काम नहीं रहे।
0: हाँ।
1: मगर का भाव?
0: हाँ।
1: कि अब हमने सोचा कि जे काम निपट लें फिर चल भी।
0: हाँ।
1: तो जे मगर टाइम नहीं मिल पाया ना हमको।
0: अरे
1: ये बात रही,
0: मतलब काम बहुत रहे का?
1: अरे तो काम तो है ही खूब, काम कम कहाँ है बताओ। अरे मगर अब हमारे पास थोड़ी रहे काम कि भाई चलो हमारे पास है तो कुछ हुआ है।
0: हाँ, फिर
1: हमें मगर चिंता तो रही।
0: हाँ।
1: कि भाई मान लो हमारे पास काम आ जाए।
0: अच्छा।
1: और हम नहीं कर पाए फिर यही चिंता में हमें टाइम नहीं मिल पाओ।
0: अरे गजब की है बात तुम्हारी यार।
1: हैं?
0: नहीं नहीं, चिंता के मारे टाइम नहीं मिलो।
1: हैं?
0: नहीं, एक आदमी मिलो रहो।
1: हाँ?
0: हमसे।
1: अच्छा।
0: हैं?
1: अच्छा,
0: जैसे तुम कह रहे ना।
1: हाँ?
0: कि नहीं नहीं काम नहीं रहो पर टाइम नहीं रहो। अब डमरू टाइप बात हो गई, मतलब बात हो इतने भी करो तो आवाज आ रही, उतने भी करो तो आवाज आ रही, काम नहीं भी रहे और टाइम भी नहीं रहो। एक आदमी ऐसे मिल गया हमें।
1: अच्छा।
0: सामने उससे पूछी मैंने, यार भैया दिखे नहीं कल तुम?
1: हाँ।
0: कहने नहीं टाइम नहीं रहो मतलब।
1: हाँ।
0: मैंने कहा टाइम नहीं रहो मतलब? अच्छछा, कोई काम आम रहा का घर पे? अरे दिन भर पूरा व्यस्तता में चलोगा।
1: अच्छा,
0: मैंने दिन भर?
1: हाँ।
0: तो अब हम का समझे दिन भर, यानी जैसे बोल चाल की भाषा में सवेरा भाव
1: संजालो
0: संजालो।
1: हाँ।
0: हम समझे दिन भर।
1: हाँ।
0: और वो का कह रहा हो तो?
1: हाँ।
0: दिन भर मतलब पूरे 24 घंटा।
1: हाँ।
0: तो हम का समझे कि हुए यार।
1: हाँ।
0: तो हमने उसे पूछी, मैंने कहा मतलब अखंड रामायण वगैरह रही का?
1: हाँ।
0: कहाँ की अखंड रामायण, तुम समझे ही नहीं बात को।
1: हाँ।
0: हमारे पास कोई एक काम नहीं, ढेर सारे काम है।
1: अच्छा।
0: हमने कैसे बोले सबेरे।
1: हाँ।
0: उठे सो हारे गए।
1: अच्छा,
0: खेत में।
1: हाँ।
0: उते गए।
1: हाँ।
0: फिर उते से लौट के आए तो जरा बाजार तक जाने रहो, उते गए।
1: हाँ।
0: हमने हाँ। फिर आए।
1: हाँ।
0: फिर सपर वो होगा वो।
1: हाँ।
0: भोजन को टेम होगा, भोजन पे बैठ गए।
1: हाँ।
0: भोजन करो।
1: हाँ।
0: फिर अब जहाँ पेट भर गयो।
1: हाँ।
0: अलाली सी आने लगी, थोड़ी देर लेट गए।
1: हाँ।
0: हमने हाँ समझ गए मतलब, तो बोले दोपहर ही हो गई।
1: हाँ।
0: अब लेटे तो हम तुम्हें बताए इतने व्यस्त रहे।
1: हाँ।
0: 5 बज गए संजा के।
1: हाँ।
0: अब देखना जरा बात सुनने की।
1: हाँ, सुन।
0: लेट रहो वो इतने व्यस्त रहे बोले हम।
1: हाँ।
0: कि संजा के 5 बज गए। अब फिर होगा संजा को टाइम।
1: हाँ।
0: 6-7 बज गए, रात के 8-9 बज गए। तो मैंने ये तो बजता ही है यार, तुमका गिनवा रहे 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है।
1: हाँ।
0: बोले नहीं तुम समझे ही नहीं मतलब, ए में भी हम कछु ना कछु करत रहे।
1: अच्छा,

0: कुल मिला के रात के 10 हो गए
1: हाँ।
0: और 10 बजे के बाद हम सो गए
1: हाँ।
0: तो 8 घंटा तो सोने में लग जाते हैं
1: हाँ।
0: हमने 8 घंटा सोने में लग जाते, बोले और का वो भी एक काम है, बोले
1: अगर
0: अपन हाँ अपन नहीं सोए।
1: अरे हमें तो आधा घंटा में नींद आ जाती,
0: दोपहर की नींद
1: 8 घंटा लग गए
0: नहीं
1: हाँ।
0: मतलब वो 8 घंटा लो सो थे
1: हाँ, तो जे कहो ना
0: हाँ।
1: अब वो कहने लगो सोवे में 8 घंटा लग गए।
0: नहीं नहीं, नहीं।
1: अरे हमें तो आधा घंटा में कहो, अबे तुमसे बात कर रहे कहो लुढ़क जाए कोई भरोसा नहीं।
0: अच्छा अच्छा,
1: यहाँ से बोलते
0: हो हाँ, मतलब
1: ज्यादा बात हमें भी जब वो नहीं,
0: नहीं हम समझ गए। कुल मिला के तुम्हारा इशारा है, हम जो तुम्हारे पास बैठे हैं तुम्हें जम नहीं रही बात का।
1: नहीं
0: हम तबल समझ गए, जब हमने राम राम करी वो तुम्हारा जो चेहरा है नहीं, हमने हम परख गए।
1: नहीं जी मतलब नहीं,
0: नहीं तो नाराज ही है हमारे आवे से।
1: अरे नहीं हमें कहा कि दरअसल में टाइम नहीं है ना, हम समझे कि मतलब
0: टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कौन को सुना रहा है यार तुम, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है।
1: अब भाई
0: अब दिन भर तुम घर में डले हो
1: हाँ?
0: अब वो टीवी का खरीद लाओ तुमने, दिन भर तुम टीवी के सामने।
1: अरे तो जी मोड़ा मोड़ी शहर में पड़ा तुमने खरीदो है
0: हाँ?
1: मैंने खरीदो और तुम्हारी सरकार तो खुद गाँव गाँव में बांट रही।
0: अच्छा
1: हाँ फिर
0: तो
1: लगो है तो लगो,
0: टीवी देखने के लाने तुम्हें टाइम है। और अगर कोई समाज की तरफ से कार्यक्रम हो रहा हो है, है? कोई को प्रवचन हो रहा हो
1: हाँ।
0: कोई यज्ञ हो रहा हो है
1: हाँ।
0: अबे वो जैसे जे, जे बच्चे सब मिलकर के गणेश जी बिठा ले रहे
1: हाँ।
0: और अच्छे 8-10 दिन का अच्छे एक से एक कार्यक्रम हाँ। हो गए यार
1: हाँ।
0: का जनता जुड़ी थी
1: हाँ।
0: का है, सब बताने पड़ रहे, तुम एक दिन नहीं आ सके।
1: अरे टाइम नहीं मिलो हमें यार,
0: टाइम नहीं,
1: टाइम नहीं मिलो हमें।
0: अच्छा
1: हो
0: तुम्हें तो टाइम कोनो चीज में नहीं मिले यार।
1: कहा बात करते तुम यार
0: हाँ।
1: जे कहो तुम्हारे पास बात करने के लिए हमने बड़े मुश्किल में टाइम निकालो है, हम सही हाँ। बोल रहे।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: बड़े मुश्किल से टाइम निकालो
1: और तुम हमको बता रहे बच्चों ने टीवी लगी, हम टीवी देख रहे। अरे जे खटिया ऐसी रखी है कि कहूं भी पड़े रहो तो वो टीवी दिखा, मगर हमें तो देखने को टाइम नहीं है टीवी।
0: ओ देखने को टाइम नहीं, घर के बाहर निकलने में भी टाइम नहीं है।
1: नहीं हम तो घर से बाहर निकलने के कई बार सोच लिए हैं,
0: अब
1: हमारा दरअसल में टाइम नहीं मिल पाता है।
0: बस हर ही बात में सोच लिए टाइम नहीं है, सोच लिए टाइम नहीं है, है? अब हम फिर असली बात बोल देंगे तो फिर तुम्हें बुरा ही लग जाए।
1: अरे का भैया यार,
0: अरे हम आए हैं तो केवल मुलाकात के लाने आए हैं, ऐसी बात नहीं है।
1: वो तो हम तुम्हारे आवे से ही समझ गए रहे, तुम हमें क्या बता रहे, तुम हमें क्या बता रहे फिर
0: हमारे आवे से समझ गए।
1: अरे तुम आए कहाँ कराने फिर बताओ।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं गलत हो, देखो देखो हम तुम सामने बैठे हैं
1: हाँ।
0: पर जिका है तुम हाँ। है कर रहे, तुम मजाक में न ले यार बात
1: को, मजाक कर रहा हो।
0: ये जो तुम ताना कसी की बात कर रहे, मैं 4 लोग सुनने वाले बेका समझ हैं
1: हाँ।
0: कि हम कहूँ कोई बात है जो कुदेर वो चाह रहा है, बिल्कुल नहीं।
1: अरे जब
0: हम तो जे जाना था, तुम अगर टेम टेम टेम की कर रहे भैया, इनकी अटकी रही जब जे हमारे घरे आए।
1: ए, कौन की अटकी रही,
0: का है?
1: कौन ने बताई तुमको,
0: को बते है तुम्हें, ने बताई,
1: हमने बताई तुमको,
0: का है? तुम्हें 2000 रुपया की जरूरत रही
1: हैं,
0: तुम्हें टाइम मिल गाओ
1: हैं, हमें टाइम मिल गाओ।
0: अब देख हम यही से कह रहे
1: हैं, हमें कभी टाइम मिलो,
0: हम अगर
1: कभी टाइम मिलो,
0: कभी टाइम मिलो,
1: कभी टाइम मिलो
0: हाँ।
1: एक दिन जब तुम हमें बाजार में मिले रहे
0: हाँ?
1: तुमने कहीं कार्य कैसा दिखाई दे रहा, बिल्कुल बीमार पड़ गया
0: हाँ?
1: कछु हो रहा का
0: हाँ?
1: तो मैंने कहा कछु नहीं यार, मोड़ी की शादी करने जरा पैसों की चिंता है, जेवर बोली नहीं मैंने
0: हाँ तो ठीक है।
1: तो तुमने कहीं कोई हर्जा नहीं हमसे लेने ने, 1000-2000 तुमने बोली रही, मैंने बोली रही।
0: अरे मैंने बोली रही मतलब
1: हाँ?
0: यार देखो
1: हाँ?
0: तुम हम दोस्त कहा
1: है, कहा
0: है नहीं
1: हाँ?
0: अब हमने तुमसे पूछ ली तो तुमने भी साफ सुथरी बात कह दी कि हाँ यार जरा ठीक ही नहीं है तबीयत, अब ठीक ही है। तो हमने पूछी भैया क्या होगा
1: है,
0: तो तुमने समस्या बताई
1: है, समस्या नहीं बताई।
0: अब जहाँ
1: अरे लड़की की शादी समस्या है का?
0: अरे नहीं मतलब मूड़ी की शादी है,
1: है।
0: तुम हम बचपन के दोस्त
1: हैं,
0: हमें भी तो लगो ना।
1: अरे तो तुमने पूछी तो
0: हमने कहा यार जो आदमी बोल रहा हो अपना दोस्त है मित्र है, संकट में अगर है एक कन्यादान को काम अच्छो काम है
1: हाँ।
0: हमने तुम्हारी समस्या हल करवे के लाने 2000 रुपया तुम्हें दे दाई
1: हो,
0: जब तुम्हें टाइम मिलो है नहीं। हमने तो ये कही थी कि कल आ जाने
1: हो,
0: तुम आए
1: हाँ।
0: टाइम मिल गाओ,
1: माने कितनी मुश्किल में हमने टाइम निकालो हाँ? कि तुम्हारी जवान खा लेना जाएगा।
0: इन मुश्किल में निकालो है नी। वो अब 2 साल हो गए तो अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है।
1: अरे

0: टैम हम तुमसे मिल नहीं पाए दरअसल में।
1: अच्छा।
0: टैम निकाल नहीं पाए। हम तो कई दिन से सोच रहे कि तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो अच्छो रहे, जरा बात हो जाए, बात बिल्कुल साफ हो जाए।
1: अच्छा अच्छा चलो ठीक है, 2 महीना हो गया अगर तुम ऐसा सोच रहे हो।
0: हाँ?
1: है? चलो हटाओ, 2 महीना हो गए तुम्हें टेम नहीं मिलो।
0: हो
1: अब तो हम तुम्हारे दरवाजे पे आ गए हैं, तुम्हारे घर में बैठे हैं।
0: वही तो,
1: 2 महीना पहले तुमने क्या बोलने का तय किया था, बोलो अब, बोलो।
0: कुछ नहीं हो, हम यही सोच रहे थे 2 महीना पहले कि अगर आप मिल जाते तो आपको फड़ाक से हम बात बता देते, कोई चिंता नहीं रही।
1: अरे तो फड़ाक से बता देते, भड़ाक से जे कर लेते, नहीं मिले नहीं मिले, अब हम आ गए है ना, बोलो क्या बात है।
0: अरे वही तो बता रहे ना हम कि अब देखो जैसे तुम मिल गए हमको, तो अब जो हमको अपने मन में बात कहना है, अब हम मतलब ये कि उस बात को जैसे अभी तक हमें टाइम नहीं मिलो तो हम आ नहीं पाए तुम्हारे।
1: अरे समझ गए ना, टाइम नहीं मिलो, गले तक बात आ गई, हम इधर बिल्कुल ऐसे उचके जा रहे
0: तक, गले तक के देखो यार, हर एक की बात हम ये नहीं कह रहे, अब आज आप आए हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई। हम घर पे मिल गए तो आपकी आत्मा दुगनी प्रसन्न हो गई।
1: बिल्कुल हो गई,
0: हो गई ना। माने ये जो खुशी है अपन लोगों की, तो तुम क्या चाह रहे, फट से टूट जाए।
1: अरे तो कुल मिला के तुम कहो क्या चाह रहे थे, 2 महीना पहले तुम हमारी रास्ता काय देख रहे थे।
0: वही तो हम बता रहे तुम्हें, 2 महीना से हम तुम्हारी रास्ता देख रहे थे। काय के लाने
1: की
0: यार, भैया ने अपने को समय पे काम करो। अच्छा कोई ने समय पे काम करो है तो बताओ का काम रहे दूसरे।
1: भाई तुम भी समय पे अपने
0: दे दुआ के, अब हमें तो टाइम नहीं मिल पाओ।
1: हाँ हाँ,
0: मगर अब तुम आ गए, हम तुमसे मिल गए।
1: अरे तो मिल गए ना यार, घंटा भर होगा।
0: अरे तो कितनी खुशी हो गई।
1: हाँ तो बोलो ना,
0: खुशी हो गई
1: तो तुम क्या बोलो चाहे,
0: खुशी हो गई।
1: हाँ तो खुशी,
0: आत्मा बिल्कुल कैसे हो गई।
1: अरे आत्मा आत्मा, तुम हमारी आत्मा की तो चिंता करो यार, तुम अपनी आत्मा गिनवा रहे। कुल मिला के तुम क्या बताने वाले हो 2000 रुपया के बारे में?
0: यही बताने वाले रहे कि जैसे तुम 2 महीना पहले हमको मिल जाते तो हम तुमको जता देते।
1: अरे तो समझ गए ना, नहीं मिल पाए, तुम्हारे पास टाइम नहीं रहो, अपन नहीं मिले। कोई बात नहीं, आज तो टाइम है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया,
1: तो बताओ ना फिर।
0: अजय हम 6 महीने और नहीं देंगे बस।
1: अच्छा अच्छा, अब अगर हम पूछें काय नहीं दोगे तो तुम
0: का
1: बोलोगे टाइम नहीं है।
0: जी जी मतलब
1: का जी मतलब,
0: आप देख रहे फसल की क्या हालत हो गई।
1: हाँ
0: बिल्कुल,
1: तुम हमें बता रहे फसल के क्या हाल हो। हम रहते हैं शहर में,
0: हो
1: अब हम तुम्हारी बात बोले, फसल की तरह देखने को हमारे पास टाइम नहीं है।
0: नहीं अब तुम लोग शहर में रहते हो, तुम लोगों को फसल से क्या मतलब
1: है?
0: तुम्हें तो खावे से मतलब, बस
1: कैसी बात कर रहे
0: हो, खावे में लग जाए और सारी।
1: नहीं हमारा मतलब ये है, तुम अब वो तो ठीक है, अपन बचपन के दोस्त है तो हम तुम्हें समझते हैं। आज नहीं कल मिल जाए हैं, देखी जाए है। पर तुम्हारी ये जो बड़बड़ावे की आदत है ना, ये बहुत खराब है।
0: अच्छा,
1: अरे अच्छा ले, एक और नोट।
0: अरे वाह,
1: क्या बात, ये बात कोई हम तुमसे पहली बार कह रहे हैं का?
0: अच्छा तो
1: बचपन से लेकर अभी तक कितनी बार हम तुमको समझा चुके कि तुम अपनी आदत बदलो, तुम अपनी आदत बदलो।
0: अच्छा
1: है,
0: और
1: तुमने की अपनी आदत नहीं बदली।
0: हाँ मतलब तुम्हारा जो है कि हमारी आदत खराब है।
1: बिल्कुल खराब है,
0: हमको अपनी आदत बदलना चाहिए। नहीं
1: बदलना चाहिए,
0: ये तुम हमें कब से कह रहे है?
1: अरे कब से कह रहे है? मतलब कोई एक दो दिन हो गए का? बचपन से लेकर अभी तक कह रहा है,
0: बचपन से लेकर अभी तक कह रहे है।
1: और का
0: हमने अभी अपनी आदत नहीं बदली।
1: नहीं बदली,
0: फिर भी तुम कह जा रहे
1: है। आ, हम तो कह रहे
0: तो बताओ कौन की आदत खराब है। एक बोलने की बात है भैया वगैरह।
1: अरे क्या बोलने की बात है यार, तुम
0: आज तुम हमको बता रहे हैं तुम्हारी आदत खराब है।
1: नहीं कुल मिला के हमारा मतलब जो है कि ये बहुत अच्छी आदत नहीं है।
0: अरे
1: है नहीं,
0: कौन सी आदत? तो
1: आप का हो जो है अभी तक तो ठीक है, बात तुम्हारे हमारे बीच में रही, अब हम तुम हम बात कर रहे हैं तो ये बात 4 लोग सुन रहे हैं।
0: अरे 4 लोग सुन रहे हैं तो 4 लोगों को बताना है। बताओ उनको 4 लोगों को
1: क्या बताना
0: कि हमने इनको 2000 रुपया दिए हैं, देखे कोई 4 में से लौट आता है क्या।

0: तुमको।
1: अरे बेकाय को लौटाएंगे?
0: अरे तो बताने से क्या मतलब है उनको?
1: रुपया तुम ले और लोग बाग लौटा।
0: अरे तो तुमसे उधार लिए, कोई तुमने दान में नहीं दाए हमको रुपया।
1: वो कह रहा हूँ दान में दाए भैया।
0: अरे तुमसे उधार लो, तुम्हारी चार बातें सुनो, जो गजब का काम है यार तुम।
1: और तो तुम लौटा काहे नहीं रहे?
0: अरे गजब का तुमको बताओ ना, हमें टाइम नहीं मिल पाओ।
1: तुम्हारे टाइम के मारे पर?
0: अरे हमें टाइम मिल जाता तो हम तो लौटा देते। रुपया कौन सी बड़ी बात? अरे रुपया तो जय समझो कि मतलब ये समझो रुपया। अरे हम क्या बताएं तुम्हें?
1: सही बात है, तुम क्या बताओगे? सही बात है, तुम बता ही नहीं सकते।
0: वही तो
1: क्या थे कि बतावे के लाने तुम्हारे पास टेम नहीं है।
0: टेम? अरे हमारी बात
1: है नहीं, टेम नहीं है।
0: नहीं ऐसी बात नहीं है हमारे, मतलब हम तुम्हारे रुपया देंगे, आपकी फसल आ जाए, हमारी फसल आ जाए।
1: अच्छा, तुम्हारो फसल को क्या मामला है?
0: अरे
1: कोई ने तो हमें बताई कि तुम्हारी तो कोई जमीन अमीन है ही नहीं।
0: तो हमारी कहाँ जमीन है?
1: हाँ फिर?
0: हमने आज तक अपनी जमीन पे खेती नहीं करी।
1: कैसे कह रहे?
0: अपनी जमीन पे हमने खेती नहीं करी आज तक।
1: हाँ फिर कौन के जमीन पे करी?
0: अरे कभी उनके बाबू साहब के खेती में कर लाई, कभी धनी राम के कर लाई, कभी गणेश राम के कर लाई। हाँ। ये उनके खेत में काम करते रहे।
1: अरे वाह वाह वाह वाह। अच्छा, और फिर एक बाद भी ये जो सरकारी योजनाएं हैं, कृषि के लिए कर्ज मिलेगा फलाना ढिकाना, तो जे कर्ज भी लेते जाते हो?
0: जरा लेके देखो ना तुम। तुम लेके देखो, माने तुम्हें पता पड़ जाए।
1: अरे तो हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। तुम
0: कहाँ हमारी बात कर रहे हैं? कहाँ बात कर रहे
1: हैं? हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम कह रहे हैं हमने अपने जमीन पे खेती नहीं करी। मतलब तुम तो कहा है भूमिहीन किसान।
0: और कहा
1: तो फिर जो खेती कैसे होने लगी?
0: तो कर्जा कौन को मिलता है?
1: कौन को मिलता है?
0: जमीन वाले को। अब हमारी जमीन ही नहीं है तो कर्जा कहाँ को मिले?
1: हाँ तो फिर
0: अब फिर का उनके से खेती करो। अब उनने हमसे कही कि तुम चलो तुम हमारी खेती पे खेती कर लो।
1: हाँ।
0: तो हमने उनके खेती पे खेती करी। जब फसल आ गई तो वे कहने लगे वो हमारी है, बता खेती हमने करी और फसल उनकी हो गई।
1: अरे
0: हाँ।
1: ये तो
0: ऐसे दूर तो हो गए।
1: हाँ।
0: ठाकुर के इसे नौकर रहो ना।
1: हाँ।
0: यहाँ से दूर तो था करी।
1: कैसी दूर?
0: भाई जैसे इनने हमसे कहा कि भाई तुम खेती कर लो।
1: हाँ।
0: तो हम समझे कि भाई फसल आएगी तो हमको मिलेगी।
1: हाँ वे तो है,
0: है?
1: अरे आशा पे हर आदमी जिंदा, और ना तो मेहनत काय को करे।
0: मगर जी ऐसे दूर से निकले कि जब हमारी फसल तैयार हो गई, कट गई, तो कहने लगे नहीं जी फसल हमारी।
1: मतलब?
0: हाँ।
1: तो ठाकुर साहब को कब?
0: ठाकुर के नौकर गई से ही दूर से रहो।
1: हमारी समझ में नहीं आई है, तुम ढंग से बताओ।
0: एक बार का हो
1: मतलब
0: एक...
1: वो नौकर दूर तो रहो जे या कह रहे थे?
0: हाँ, जो बाबू राम खाए।
1: कैसे?
0: जैसे इनने हमसे कही खेती करो।
1: हाँ, हाँ।
0: अब फसल जग गई।
1: हाँ।
0: अब फसल जगी तो हमको लगो कि हमको मिले।
1: अरे हो।
0: मगर इनने कही कि हमारी हो गई।
1: हाँ हम समझ गए,
0: तो धुर बन गए।
1: हाँ तो
0: ऐसे ही ठाकुर धुर बन गए।
1: कैसे?
0: नौकर गए।
1: क्या
0: वो नौकर रहो ठाकुर को? तुम सुना थो ना या बीच में टोंक दे दे।
1: हाँ बोलो ना, बोलो तुम। एक बात फसल आ गई हो वो हम समझ गए ना, तुम तो वो नौकर वाली बात बताओ, क्या बता रहा है?
0: एक ठाकुर के यहाँ मेहमान आए रहे।
1: अच्छा,
0: तो वो ठाकुर का कहने लगो कि ए बुधुआ इधर आओ।
1: अच्छा,
0: जो मेहमान बैठे।
1: बुधुआ मतलब वो नौकर,
0: उनके नौकर को।
1: अच्छा,
0: कहने इधर आओ, जो मेहमान बैठे पान ले आओ। फट से नीचे उतरो, पान ले चलो।
1: नहीं नहीं, गांव देहात में तो ये बात है।
0: ठाकुर कह लगो,
1: एक बात बताएं, गांव देहात में जे छोटी छोटी बातें जो व्यवहार की कह रहे
0: हो,
1: भाई कोई आदमी अपने इतने आओ है, पानी है, चाय है, पान है, जे तो स्वागत सत्कार बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: तुम हमारे शहर में आके देखो।
0: हाँ ऐसा ही हो, ऐसा ही होते।
1: ऐसो हो तो हम तुम्हें काय को बताते।
0: अच्छा, हो
1: और बल्कि हमारे शहर में क्या होते है।
0: हाँ।
1: जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुम कर रहे थे, मतलब जैसे हाँ। मान लो शहर में तुम हमारे पास आए।
0: हाँ।
1: है ना।
0: हाँ।
1: हमने ना तुमसे कही कि आओ बैठो।
0: हाँ।
1: नहीं। आओ पानी आनी पी लो। नहीं।
0: अच्छा,
1: चाय पिलाओ तो दूर होगा वो। और अगर सामने वालों कहूँ ज्यादा ही बिल्कुल स्पष्ट बोलवे वालों है, उन्हें अगर कहीं कह दे कि यार काज ये व्यवहारिकता है यार।
0: है।
1: हम तुम्हारे घर आए तो ना हमें बैठवे को कही, ना चाय पानी को पूछी।
0: है,
1: तो वो शहर वालों कह दे नहीं नहीं यार बुराई ना मानने, हम तो पूछने वाले रहे।
0: है।
1: जैसे तुम कह रहे थे हमने सोची रही है नहीं, वो फट से बोल देते हैं हमने सोच

0: रही कि पूछे तुम्हें चाय आए कि वो पानी आने की मनो टेम नहीं रहो। अच्छा फिर वो नौकर का करण लगो।
1: नौकर का ठाकुर ने कही ए बुजुआ पान ले आओ, नो मेहमान बैठ वो निकल गाओ।
0: अच्छा
1: जैसे निकलो और बाड़ी पे पहुंचो तो ठाकुर कहने लगा ए दुकान दूर धरी घंटा बल लगा दोगे, साइकिल ले जाओ।
0: हाँ और क्या,
1: अब वो साइकिल ले गा। फिर भी होके 15-20 मिनट के ऊपर ही लग गए।
0: अच्छा
1: तो ठाकुर बहुत गड़मा गए।
0: हाँ
1: हाँ। कहने को है रे उते हर प्रसाद देखो वो बुजुर्ग कामर का अभी तक पान नहीं लाओ। जैसे ही हर प्रसाद निकले बुजुर्ग साइकिल लेके आए
0: आ गया
1: और बाड़ी से टिका दे।
0: अच्छा
1: अजय ठाकुर इतने से चिल्लाओ काय रे साइकिल ले गए फिर भी आधा घंटा लगा दो। वो कह लो कई हजूर हमको चला दे कहा वंशी है कही। ठाकुर फिर ले कहा को कह दे कही आप ही ने तो कह दी कि साइकिल ले जाओ करके।
0: अच्छी बात है। देखो हम यही से बड़े ध्यान से तुम्हारी बात को सुन रहे थे। नहीं हम समझे ऐसी बातचीत ही है पर नहीं है काम की बात।
1: अरे बिल्कुल
0: अब हमें वो भी याद आ गया कि तुम कह रहे थे कि नहीं बैठने ही थे पर हंसने नहीं।
1: हाँ
0: कैसे कि ठाकुर साहब बैठे हैं
1: तो
0: हंसना मना है। ये बात तो हम तुम्हारी हम मान गए
1: मगर समझ जाओ।
0: हाँ तो समझना तो मना नहीं है।

Hasanamadare. Hasanamadare. Hasanamadare. हंसना मना है भाग दो। अभी आप सुन रहे थे ये धारावाहिक। आलेख हेमंत कुलकर्णी का, परिकल्पना विमल कांत येंडे, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर बैजनाथ गौतम। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आपको बताना चाहेंगे रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुभाष दीक्षित का वायलन पर बजाया राग केदार। तबले पर संगत की है इफ्तिखार हुसैन खान ने। रात 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। रात 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी, लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है।

या 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे सुभाष दीक्षित का वायलन पर बजाया राग केदार। तबले पर संगत की है इफ्तिखार हुसैन खान ने। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम।

पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

एक दूजे के लिए। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत, आवाज़ थी लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल। इस गीत के लिए हमें आप सभी ने फरमाइश भेजी थी। पोलीपाथर लालकुआ जबलपुर से दिलीप रजक, सुमन रजक, सागर रजक और बेबी परी रजक। नेपे टाउन से आराधना चौक से सीमा, मधु, आरती, दशाक। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, बहराज जहां। इसी गीत को सुनना चाहता राजपुर मध्य प्रदेश से घिसु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, स्मिता, सौरभ और कुणाल ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीना बिरक ने। लीजिए सुनिए मनभावन कार्यक्रम का आपकी फरमाइश का अगला गीत। फिल्म है हिंदुस्तान की कसम, आवाज़ लता मंगेशकर की, बोल लिखे हैं कैफी आज़मी ने, धुन तैयार की है मदन मोहन ने। और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन। अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा से श्री शुभम सिंह ठाकुर। पिंडरई जिला मंडला से सुमत कुमार जैन, कबीर जैन, वरुण जैन और समस्त जैन परिवार। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती सेतिया और तनीश सेतिया। लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर हिंदुस्तान की कसम फिल्म से ये गीत।

आप सुन रहे हैं मन भावन, और लीजिए अभी सुनिए एक सूचना। क्या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी असाधारण प्रतिभा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है? भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लेकर आया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। ये पुरस्कार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला, संस्कृति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग बच्चों की छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का यह एक बेहतरीन अवसर है। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल award.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। देर न करें, आज ही अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। और लीजिए अब सुनिए हीरो फिल्म का गीत। आवाज है रेशमा की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहा है खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू, प्रतीक साहू। छत्तीसगढ़ भाटापारा से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। शिक्षक नगर दुर्ग से राजेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा। गंज डुंडवारा से मुनव्वर लल्ला भाई, मिर्जा नसरीन बेगम, अरबाज खान, शहबाज खान, पप्पू बिजली वाले, अफसाना बेगम, महजबी शेख, बादाम अली, किशमिश जहां बेगम। लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर हीरो फिल्म का ये गीत।

और लीजिए आप सुनिए ही राजा फिल्म का गीत, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार कैफी आज़मी, संगीतकार मदन मोहन। इस गीत को सुनने के लिए हमें आप सभी ने पत्र भेजे हैं। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया। बठिंडा रोड डव्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। गांव भड़भूजी मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, रीना मालवीय, सुषमा मालवीय, परी, दुर्गा, आयुष, मधुबाला, मिलन और ओम प्रकाश। इनके साथ हैं सुषमा कपूर और सुभाष कपूर। ज़िला रायसेन खापड़खेरा से इसी गीत को सुनना चाहा है तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू, आरती, ममता और गोमती ने। दत्रेकी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिघारपुर से सालेक पुजारी। लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर ही रांझा फिल्म का ये गीत।

और लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ही गाइड फिल्म का गीत। गीतकार हैं शैलेंद्र। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। ज़िला खंडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा और नीतू वैद्य। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर गाइड फिल्म का ये गीत।

गाइड फिल्म के इसी गीत के साथ मनभावन फरमाइशी फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं। अब से कुछ ही पलों बाद हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।